मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की श्रावण मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 अगस्त 2026, 5:56:39 हुए हैं। आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, हिंदी समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की

0: पीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। NTA ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

देवों के देव महादेव, जिनके मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा और कंठ में विष है, जिनके हाथ में त्रिशूल और हृदय में समस्त सृष्टि के लिए करुणा है। वे केवल भगवान नहीं बल्कि त्याग, तपस्या, प्रेम और शक्ति के अद्भुत संगम हैं।

भोलेनाथ का स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्ची महानता आडंबर में नहीं बल्कि सरलता में है। वे इतने भोले हैं कि भक्त के सच्चे मन से पुकारने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं।

समुद्र मंथन से निकले विष को स्वयं पीकर महादेव ने संसार की रक्षा की और नीलकंठ कहलाए। उनके मस्तक से बहती गंगा जीवन और शांति का संदेश।

महादेव के लिए ना कोई बड़ा है ना छोटा, देव हो या दानव, राजा हो या साधारण भक्त, जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, भोलेनाथ उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं।

माता रानी शक्ति, करुणा और ममता की सजीव प्रतीक हैं। वे संसार की हर नारी में, हर जीव में शक्ति का रूप बनकर विराजमान हैं। कहा जाता है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ माता स्वयं उपस्थित होती हैं।

भगवान श्री राम मर्यादा, धर्म और आदर्श जीवन के प्रतीक हैं। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में सत्य, त्याग और कर्तव्य का पालन किया।

श्री राम ने राजा होकर भी वनवास स्वीकार किया, पुत्र होकर पिता की आज्ञा का पालन किया, पति होकर सीता जी के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान दिखाया और मित्र होकर सुग्रीव व विभीषण जैसे लोगों को अपनाया। उनका जीवन सिखाता है कि सत्ता नहीं बल्कि संस्कार और चरित्र ही मनुष्य की असली पहचान है।

0: अब आज की आराधना संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम गांधी चर्चा।

स्वदेशी व्रत इस युग का महाव्रत है। जो वस्तु आत्मा का धर्म है, लेकिन अज्ञान या अन्य कारणों से आत्मा को जिसका भान नहीं रहा, उसके पालन के लिए व्रत लेने की ज़रूरत पड़ती है। जो स्वभावतः निरामिषाहारी है, उसे आमिषाहार न करने का व्रत नहीं लेना रहता। आमिष उसके लिए प्रलोभन की चीज नहीं होती, बल्कि आमिष देखकर उसे उल्टी आवेगी। स्वदेशी आत्मा का धर्म है, पर वो बिसर गया है, इससे उसके विषय में व्रत लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। आत्मा के लिए स्वदेशी का अंतिम अर्थ सारे स्थूल संबंधों से आत्यंतिक मुक्ति है। देह भी उसके लिए परदेशी है, क्योंकि देह अन्य आत्माओं के साथ एकता स्थापित करने में बाधक होती है, उसके मार्ग में विघ्न रूप है। जीवन मात्र के साथ ऐक्य साधते हुए स्वदेशी धर्म को जानने और पालने वाला देह का भी त्याग करता है। ये अर्थ सत्य हो तो हम अनायास समझ सकते हैं कि अपने पास रहने वालों की सेवा में ओतप्रोत हुए रहना स्वदेशी धर्म है। यह सेवा करते हुए ऐसा आभासित होना संभव है कि दूर वाले बाकी रह जाते हैं अथवा उनको हानि होती है, पर वह केवल आभास ही होगा। स्वदेशी की शुद्ध सेवा करने में परदेशी की भी शुद्ध सेवा होती ही है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसके विरुद्ध दूर की सेवा करने का मोह रखने में वह हो नहीं पाती और पड़ोसी की सेवा छूट जाती है। यों इधर उधर दोनों बिगड़ते हैं। मुझ पर आधार रखने वाले कुटुंबी जन अथवा ग्रामवासियों को मैंने छोड़ा तो मुझ पर उनका जो आधार था वो चला गया। दूर वालों की सेवा करने में जाने में उनकी सेवा करने का जिसका धर्म है वह उसे भूलता है। वहाँ का वातावरण बिगड़ा और अपना तो बिगड़ कर चला ही था। यों हर तरह से उसने नुकसान ही किया। ऐसे अनगिनत हिसाब सामने रखकर स्वदेशी धर्म सिद्ध किया जा सकता है। इसी से स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह वाक्य की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ इस प्रकार अवश्य किया जा सकता है कि स्वदेशी पालते हुए मौत हो तो भी अच्छा है, परदेशी तो भय

0: भयानक ही है स्वधर्म अर्थात स्वदेशी। स्वदेशी को समझ न पाने से ही गड़बड़ी होती है। कुटुंब पर मोह रखकर मैं उसे पोसूं, उसके लिए धन चुराऊं, दूसरे प्रपंच रचूं, तो यह स्वदेशी नहीं है। मुझे तो उनके प्रति मेरा जो धर्म है उसे पालना है। उस धर्म की खोज करते और पालते हुए मुझे सर्वव्यापी धर्म मिल जाता है। स्वधर्म के पालन से परधर्मी को या परधर्म को कभी हानि नहीं पहुंचती, न पहुंचनी चाहिए। पहुंचे तो माना हुआ धर्म स्वधर्म नहीं बल्कि स्वाभिमान है, अतः वह त्याज्य है।
1: प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गांधी जी का एक पत्र विद्यार्थी के नाम। इस पत्र में उन्होंने खादी और पठन पाठन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।
1: शुद्ध खादी संबंधी शिकायत बहुत पुरानी है। मोटी खादी को लेकर जो असुविधा होती है वो स्वराज्य की खातिर अथवा कहें कि भूखों मरते भाई बहनों की खातिर सहन की जानी चाहिए। मोटी खादी का घुटने तक का जांघिया या एड़ी तक पाजामा पहना जाए तो कपड़े की भी बचत हो और धोने में भी आसानी हो। धोती मद्रासी ढंग से अर्थात काछड़ी बिना पहनने से आधा कपड़ा बच जाता है। किसी गुजराती को अपने मन में ऐसा भ्रम अथवा द्वेष अथवा अभिमान नहीं करना चाहिए कि वो मद्रासी ढंग से धोती नहीं पहन सकता। और फिर यदि विद्यार्थी ये महसूस करता है कि उसे मजबूरन मोटी खादी पहनना पड़ता है तो इसमें उसी का दोष है। क्या वो अपने लिए महीन सूत नहीं काट सकता? यदि वो ऐसा करे तो रुई और बुनाई की मजदूरों की एवज में उसे महीन धोती मिले और खुद मेहनत करने से जो आत्मसंतोष होता है सो अलग हो। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी ये न कहें कि उसे पठन पाठन से कातने का समय ही नहीं मिल पाता। अनुभव से वो देखेगा कि उसका ज़्यादा समय आलस्य में अथवा व्यर्थ के काम में चला जाता है। उसमें से वो थोड़ा समय निकाल ले और काते, इतना ही काफ़ी है। एक अंग्रेजी कहावत है जिसका मतलब है जहाँ चाह वहाँ राह। और हमारे यहाँ कहावत है कि नाचना न चाहे तो आंगन टेढ़ा। शुद्ध खादी का प्रयोग न करने के लिए सैकड़ों बहाने मिल जाएंगे। जिन्हें खादी के प्रति श्रद्धा है उनके आगे एक भी मुश्किल नहीं आती।
0: चरखा राष्ट्र की समृद्धि और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह वाणिज्यिक युद्ध का नहीं बल्कि वाणिज्यिक शांति का प्रतीक है। यह पृथ्वी के राष्ट्रों के प्रति दुर्भावना का संदेश नहीं देता है बल्कि सद्भावना और स्वसहायता का संदेश देता है। इसका पहिया हर क्रांति शांति सद्भावना और प्रेम की तरह घूमता है सबके साथ। अगर हमारे अंदर खादी की भावना है तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सादगी के साथ खुद को घेर लेंगे। खादी भावना का अर्थ है असीम धैर्य। जो लोग खादी के उत्पादन के बारे में कुछ भी जानते हैं वे जानते हैं कि बुनकरों को अपने व्यापार में कितनी

धैर्य से मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ तक कि स्वराज का धागा बुनते समय हमें भी धैर्य रखना चाहिए। खादी भावना का अर्थ है समान रूप से असीमित विश्वास। खादी भावना का अर्थ है पृथ्वी पर हर इंसान के साथ सहभावना। इसका अर्थ हर उस चीज का पूर्ण त्याग करना जो हमारे साथी प्राणियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना है। मैं अपने भारत को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो कैसे इसका प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। खादी केवल महंगी प्रतीत होती है, पर महंगी नहीं है। ये तो मेहनत के धागों से बनाया हुआ हमारा बल है। बापू का कहना था, मुझे विश्वास है कि हाथ की कताई और हाथ की बुनाई का पुनरुद्धार भारत के आर्थिक और नैतिक उत्थान में सबसे बड़ा योगदान देगा। कताई वर्षों पहले कुटीर उद्योग था। अगर हमें अपने आप को भुखमरी से बचाना है, स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें अपने घरों में कताई को फिर से शुरू कर देना चाहिए। गांव को अपने बुनकरों को फिर से हासिल करना होगा।

0: इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर विश्वनाथ से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत, रजनीगंधा की वैज्ञानिक खेती।
1: किसान भाई, हमके देखा आज कृषि विविधीकरण के समय बाटे, सिर्फ अनाज के उत्पादन से ही देखा आज खेती किसानी काम नहीं चला, तो की खातिर और तरह के भी खेती बाड़ी अपनावा जाता है। कहीं देखा कुछ किसान भाई हैं फूल की भी खेती करते हैं, देखा एक रजनीगंधा के खेती भी देखा बहुत महत्वपूर्ण बाटे। एकर खेती कैसे कीन जाए, आज एके बिना जानकारी दे के खातिर हमारे बीच में डॉक्टर विश्वनाथ जी हैं। आप विभाग अध्यक्ष उद्यान विभाग कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज में हैं, आप यह विषय के जानकार हैं, आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। सबसे पहले हम जानना चाहब कि जो रजनीगंधा के खेती बाटे एका कैसे कीन जाए और एक लिए किस तरह की मिट्टी उपयोगी बाटे।
2: भाई, रजनीगंधा एक महत्वपूर्ण सफ़ेद रंग का मनमोहक कंदी पुष्प है। सुंदर आकर्षक फूलों तथा भीनी सुगंध के कारण भारत में इसकी अधिक मांग है। इसके फूलों का उपयोग बुके तथा माला बनाने में, साज सज्जा में तथा बटन होल के रूप में किया जाता है। डंडियों सहित कर्तित फूल के रूप में मेज पर सजाने के लिए यह बेजोड़ है। इसकी सुगंधित पंखुड़ियों से तेल तथा इत्र प्राप्त किया जाता है, जो काफ़ी महंगा होता है। यह 3 माह का फूल देने वाला पौधा है तथा फूल 15 से 20 दिन तक तरोताज़ा बना रहता है। इसकी खेती बहुत ही लाभकारी है, किसान भाई इसकी खेती करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यह उपोष्ण तथा समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान में इसकी अच्छी खेती होती है। 10 से कम तथा 40 से ऊपर तापमान होने पर इसकी उपज प्रभावित होने लगती है। जाड़े को दिनों में इसका पौधा सुसुप्तावस्था में चला जाता है। दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में हो, इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। कार्बनिक पोषक तत्वों से भरपूर उचित जल निकास वाली भूमियों में इसकी खेती अच्छी होती है।
1: हम एक विषय जानने चाहब कि जैसे एक बुआई के बटे तो बहुत से फसल देखा कंद लागत है, कुछ में देखा बीज के बुआई होते हैं, तो रजनीगंधा में का बीज के बुआई की जाए, कंद के बुआई की जाता, तो एक का विधि बटे ओके बारे में
2: भाई। देखिए, मैं पहले ये बता दूं कि इसकी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पंखुड़ियों के आधार पर इसकी 2 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सिंगल पंखुड़ी वाली प्रजातियों में कलकत्ता सिंगल, हैदराबाद सिंगल, पुणे सिंगल, फूले रजनी, श्रीनगर तथा प्रज्वल प्रमुख हैं। तथा डबल पंखुड़ियों वाली किस्मों में कलकत्ता डबल, हैदराबाद डबल, सुवासिनी, वैभव आदि प्रमुख हैं। इसमें प्रज्वल तथा वैभव ऐसी 2 प्रजातियाँ हैं जिनमें सुगंध अधिक पाई जाती है तथा इसकी खेती अधिक क्षेत्रफल में की जाती है। अब किसान भाई ये जान लें कि इसके प्रसारण के लिए या बीज के रूप में अनेक पौधे तैयार करने या बुआई के लिए इसका कंद, जिसको अंग्रेजी में बल्ब कहते हैं, का उपयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और विषाणु मुक्त बल्ब प्राप्त करने के लिए

0: अब टिश्यू कल्चर की तकनीक भी अपनाई जा रही है। किसान भाई ये विशेष रूप से जान लें कि 1.5 से 2 सेंटीमीटर मोटाई या व्यास का मात्र बल्ब जो 250 से 300 ग्राम का क्लंप बनाता है, जिसमें 6 से 8 डाटर यानी पुत्री कंद प्राप्त होते हैं और तथा 10 से 12 छोटे कंद प्राप्त होते हैं, और बुआई के लगभग 7 माह बाद इन कंदों का खुदाई कर ली जाती है और इन्हीं कंदों का हम आगे बुआई में प्रयोग करते हैं।
1: बिल्कुल, हम कहीं देखा है एक बुआई का तरीका बताएं, निश्चय रूप से किसान भाई का लाभान्वित नहीं, हम कहीं हमारा समय समय पर कई तरह के खाद और उर्वरक की आवश्यकता बाटे जिससे इसके बढ़त अच्छी मिले, पुष्प अच्छा मिले, उसके बारे में बताऊँ।
0: भाई देखिए, कंदों से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए 10 से 15 टन सड़े गोबर की खाद बुआई के 10 से 15 दिन पहले खेत में मिला देते हैं। इसके 50-150 ग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटैश प्रति हेक्टेयर से खेत में दे देते हैं। ध्यान रहे नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस तथा पोटैश की पूरी मात्रा की तैयारी के समय, खेत की तैयारी के समय दे देते हैं, और शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा को 3 बराबर भागों में बाँट करके जो 3 वर्षीय फसल होती है तो प्रत्येक निराई के बाद दे देते हैं। इसके बाद हम कंदों की बुआई के बारे में आपको बता दें, कंद की बुआई अप्रैल से जून तक की जाती है। अच्छी तरह तैयार खेत में 25×25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4-6 सेंटीमीटर की गहराई पर लंबवत रखते हुए कंदों की बुआई की जाती है। ध्यान रहे बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि कंद का अंकुरण आसानी से हो सके। यदि खेत में नमी कम हो तो सिंचाई करने के उपरांत ही बुआई करें।
1: एक सिंचाई कब कब करें हमारे किसान भाई जो है कि देखा अल्प समय की जैसे खेती हो थे कर तो हम का ध्यान दे जरूरत बाटे।
0: जब कंद की बुआई कर दी गई है तो जब तक कंद अंकुरित न हो जाए तब तक कोई सिंचाई नहीं करनी चाहिए, और अगर सिंचाई कर दी जाती है तो फिर कंद सड़ने लगते हैं। पुष्प आते समय भी अधिक नमी खेत में नहीं होनी चाहिए क्योंकि अधिक नमी के कारण डंडियों की वृद्धि तथा पुष्पन प्रभावित होता है। शुष्क मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल पर तथा मई जून में साप्ताहिक अंतराल की सिंचाई करनी चाहिए।
1: तो बढ़िया बताऊँ कि देखा तमाम तरह के देखा रोग बीमारी यहाँ खरपतवार भी बटे, तो जैसे हमें कोनो तरह के रोग लग जाता है खरपतवार बटे तो उसका नियंत्रण कैसे करें हैं फसल में?
0: फसल की शुरुआत में ही हाथ से खरपतवार को निकाल देते हैं और सामान्यतः प्रत्येक सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई की जाती है। कुछ रासायनिक विधियों के द्वारा भी खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। इसके लिए 3 किलोग्राम स्टाम्प प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर भूमि में डालते हैं और इससे खरपतवार नहीं उगते हैं। और इसमें जो रोग की आप बात कर रहे हैं तो इसमें प्रमुख रूप से स्टेम रॉट, ब्लाइट, फ्लावर बड रॉट प्रमुख रोग हैं, और इसकी रोकथाम के लिए उचित भंडारण करना आवश्यक है तथा बुआई से पहले कार्बेंडाजिम नामक कवकनाशी से कंदों को शोधित किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: प्रमुख कीटों में ग्रास हॉपर, एफिड, थ्रिप्स तथा माइट्स होते हैं। इनकी रोकथाम के लिए समय समय पर समुचित मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करते रहना चाहिए।
1: क्योंकि एक कटाई और पैकेजिंग के जो है का एक व्यवस्था बटे उसके बारे में बताऊँ का का ध्यान दे जरूरत बटे।
0: रजनीगंधा देखिए भैया, ये 90 से 110 दिन की फसल है जो कट फ्लावर के रूप में समूची डंडियों को काट लिया जाता है, और डंडियों को काटते समय कम से कम 2 पत्तियां लगी रहनी चाहिए। ठीक है, नीचे से पहला जोड़ा फूल खिलने के बाद डंडियों को तेज चाकू से काट कर तुरंत पानी भरे बर्तन में रख दिया जाता है, और जब माला बनाने हैं तो डंडियों से फूलों को अलग अलग चुन लिया जाता है, इसमें डंडियां नहीं काटी जाती। डंडियों को ठंडे वातावरण में पैक किया जाता है। 100-100 की संख्या में डंडियों का बंडल बना करके टिश्यू पेपर या पॉलीथीन में लपेट कर कार्डबोर्ड के बॉक्स में रख कर दूर की बाजार में भेज दिया जाता है। खुले फूलों को बांस की टोकरियों में 15 से 20 किलोग्राम प्रति टोकरी की दर से पैक करके स्थानीय बाजार में भेजा जाता है।
1: अच्छा अच्छा, इसमें पुष्प कंद का उपज होता है, एक के बारे में बताऊं।
0: हाँ, किसान भाई अक्सर ये होता है कि इसकी खेती में सबसे महंगा जो पड़ता है वो कंदों का दाम ही पड़ता है।

0: खरीदते समय किसान को सबसे ज्यादा पैसा इसी पर खर्च किया करना पड़ता है। तो रजनीगंधा के फूलों की जो औसत उपज है वो 5.5 से 5.5 टन होती है, लेकिन जो पुत्री कंद होती है जिसका डाटर बल्ब्स कहते हैं, जिनकी खुदाई 7 माह के बाद करते हैं, वो उस समय करते हैं जब पौधों में फूल आना बंद हो जाए, पत्तियां सूख जाएं तथा पौधे सुसुप्त अवस्था में चले जाएं। बल्ब की खुदाई के पहले सिंचाई को रोक देते हैं तथा ऊपरी भाग काटकर हटा दिया जाता है। अब 1 हेक्टेयर से लगभग 80 कुंटल डाटर बल्ब प्राप्त होते हैं और खुदाई के बाद कंदों को 4 से 7 सप्ताह तक भंडारित करना आवश्यक है। पुष्प छायादार ऊंचे स्थान पर भंडारित करने से इनमें अंकुरण तथा पुष्प उपज बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल, हम सही कहें, जो भी जानकारी दे हैं निश्चय रूप से हमारे किसान भाई से लाभान्वित हुए हैं। आप इतनी बढ़िया जानकारी दे हैं, जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रजनीगंधा की वैज्ञानिक खेती, इस विषय पर अभी आपने डॉक्टर विश्वनाथ से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत सुनी। आज का कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में दीजिए सुनिए डॉक्टर अपराजिता चौधरी की वार्ता, बच्चों की आंखों पर मोबाइल स्क्रीन का दुष्प्रभाव।
1: आज के समय हम एक डिजिटल युग में रह रहे हैं। जब भी हर व्यक्ति, जनरली अगर बाहर देखा जाए तो हर व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन ज़रूर होता है, और आजकल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी हमारे जीवन शैली का हिस्सा हो चुके हैं। हम शायद 18 घंटे जगते हैं तो उसमें से 16 घंटे जो है हम लोग कुछ ना कुछ मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या टीवी का प्रयोग करते हैं। तो आँखों में ये जो लगातार जो टीवी या लैपटॉप का जो स्क्रीन देखते रहने से आँखों में बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं, इसलिए ये हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम आँखों की देखभाल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप, टीवी देखते हैं, पढ़ाई के लिए भी और खेलने के लिए भी, लेकिन ज़्यादा देर तक स्क्रीन देखने से उनकी आँखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अब क्या क्या मोबाइल या ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने से क्या क्या समस्याएँ हो सकती हैं? सबसे ज़्यादा एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, डिजिटल आई स्ट्रेन। अगर बच्चा लगातार स्क्रीन देखता रहता है तो उसकी आँखें जलने लगती हैं, सिर दर्द हो जाता है और सब कुछ धुंधला सा दिखने लेता है। ऐसे में बच्चा बहुत चिड़चिड़ा भी हो जाता है लेकिन अपना फ़ोन नहीं छोड़ता, अपना स्क्रीन टाइम नहीं छोड़ता। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पहले तो फ़ोन ना दें, और अगर देना हो तो उसका समय निश्चित कर लें कि बच्चे को हमें आधे घंटे के लिए फ़ोन देना है या एक घंटे के लिए फ़ोन देना है। दूसरा, जो बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन या मोबाइल स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाने की वजह से जो उसमें से ब्लू रेज निकलती हैं वो दिमाग में रात में सोने के लिए सही संकेत नहीं देती हैं। इससे बच्चों को नींद नहीं आती या नींद बहुत देर से आती है, तो इससे बच्चों में जो इंसोम्निया की परेशानी भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। बहुत ज़्यादा पास की चीज़ें देखने से, कम लाइट में या धूप में ना खेलने से विटामिन डी डिफिशेंसी तो बहुत कॉमन है ही, साथ में लगातार कॉन्टिन्यूसली पास की चीज़ें देखने से बच्चों को एक बीमारी मायोपिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। इसमें बच्चे को पास की चीज़ें देखने में दिक्कत होती है और इसमें चश्मा लग जाता है, बच्चों को दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती हैं। डिजिटल आई सिंड्रोम ये एक ऐसा मिला जुला प्रभाव है जो ज़्यादा स्क्रीन से जुड़ी कई समस्याओं को एक साथ दिखाता है। इसके लक्षण होते हैं जैसे आंखों में बहुत थकान रहती है, आंख लाल हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, नींद नहीं आ पाती, बच्चा चिड़चिड़ा रहता है। दूसरा, कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन देखने से एक और बीमारी होती जिसे कि हम ड्राइनेस कहते हैं, आंखों का सूखापन कहते हैं। मोबाइल स्क्रीन देखने के दौरान बच्चों की पलक कम झपकती है और उस रेस की वजह से जो मोबाइल स्क्रीन से निकलती है या जो स्क्रीन से निकलती है उससे आंखों में ड्राइनेस की समस्या भी बहुत कॉमन हो गई है। स्क्रीन की तेज रोशनी से लगातार देखने से आंखों में बहुत ज़्यादा पानी निकलने की समस्या भी है। कॉन्टिन्यूसली बच्चा पलक कम झपकाता है, बहुत तेज़ लाइट देखता रहता है, इससे भी आंखों में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ रही है। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, बच्चों के थकान के कारण बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं और अपना किसी भी कार्य में उनका ध्यान नहीं लगता है। तेज रोशनी से या सूरज की रोशनी आंखों में चुभने लगती है। इसके अलावा हम ऐसे

0: स्वस्थ रखें। कुछ आसान से उपाय हैं। एक नियम है 20-20-20, इसमें ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति को 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 20 फीट की दूरी पर 20 सेकंड तक अगर देखते हैं तो इससे आंखों को काफ़ी आराम मिलता है। अगर किसी भी व्यक्ति का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो उसको इस नियम का ज़रूर पालन करना चाहिए, हर 20 मिनट पर 20 फीट की दूरी पर 20 सेकंड के लिए देखें। स्क्रीन टाइम को कंट्रोल रखें। 5 साल से छोटे बच्चों को कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन ना दें जिससे कि उनकी आदत ना लगे, और अगर बड़े बच्चे हैं तो उनका एक टाइम फिक्स कर दें, 1 घंटे से 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन नहीं देखने देना चाहिए, या जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। बच्चों को बाहर धूप में खेलने के लिए भेजें। दिन में कम से कम बच्चा 1 से 2 घंटे धूप में खेले, इससे आँखें तो मजबूत होती हैं, मायोपिया की परेशानी भी कम होती है और चश्मा लगने का खतरा भी कम हो जाता है। साथ ही साथ विटामिन डी डिफिशेंसी, जो कि बहुत कॉमन हो गई है, स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चा बाहर नहीं जाता है, वो भी कंट्रोल किया जा सकता है। ब्लू लाइट फिल्टर या नाइट मोड में मोबाइल को ऑन करें ताकि आंखों पर कम दबाव पड़े। हर 6 से 12 महीने में बच्चों की आंखों की जांच कराएं, खासकर अगर वो बहुत सारा समय तक स्क्रीन के सामने रहता है। सही लाइटिंग सिस्टम का उपयोग करें। बहुत तेज या बहुत कम रोशनी में स्क्रीन देखने में आंखों पर जोर पड़ता है। स्क्रीन के पीछे या कमरे के पीछे प्राकृतिक या सौम्य लाइट रखें। धन्यवाद।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अपराजिता चौधरी की वार्ता, बच्चों की आंखों पर मोबाइल स्क्रीन का दुष्प्रभाव। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद 7:10 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मों से ली गई कुछ भक्ति रचनाएं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:31 पर सुनिए कमल कुमार का बांसुरी वादन। शास्त्रीय संगीत के एक दूसरे कार्यक्रम में दिन में 12:15 पर हम आपको सुनवाएंगे राम शंकर का ख्याल गायन। और शास्त्रीय संगीत के रात्रिकालीन कार्यक्रम में 10:30 पर सुनिएगा पंडित उमा शंकर मिश्र का सितार वादन। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 8:45 पर। 9 बजे आने दीजिएगा फिल्म संगीत का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर आप सुन सकेंगे किरण वाजपेयी की गाई कुछ भक्ति रचनाएं। सुगम संगीत के एक दूसरे कार्यक्रम में शाम 7:45 पर आनंद लीजिएगा कीर्ति चौधरी की गाई कुछ भक्ति रचनाओं का। दस बजकर 5 मिनट पर वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रयागराज के प्रधान महाप्रबंधक आनंद भूषण सरन से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत का तीसरा भाग। सुबह 10:30 पर लोकगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगे विष्णु राजा प्रभा सिंह विभव शंकर और साथी। एक ही कलाकार कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 11 बजे। युवाओं का पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस 11:30 से सुना जा सकता है। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश 12:30 पर। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी निखार के अंतर्गत।

उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने पांचों वाण छोड़े, जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ, गायन स्वर लक्ष्मी शंकर और राम कृष्ण चंदीसरी का था, संगीत निर्देशन था सतीश वाटिया का। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्मों से ली गई कुछ भक्ति रचनाएं। यह है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, हरिहरन के स्वर में चार धाम फिल्म से दी गई ये भक्ति रचना।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अनजान की लिखी एक भक्ति रचना। नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत रचना, फिल्म का नाम ईश्वर

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से ली गई कुछ भक्ति रचनाएं। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अगले प्रसारण की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समाज कल्याण विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा। 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित करने के दिए निर्देश। प्रदेश दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य सरकार का निवेश सम्मेलन आज। साझेदारी के विस्तार और निवेश प्रोत्साहन पर होगा व्यापक संवाद। और रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, आज भी कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। अब समाचार विस्तार से। पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल समाज कल्याण विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में सुव्यवस्थित संचालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुस्पष्ट नियमावली तैयार करने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा एक सोसायटी के गठन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए आवेदन पोर्टल तत्काल खोला जाए और 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित कर दी जाए। एक रिपोर्ट।
2: लखनऊ में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की उपस्थिति में विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराते हुए यथाशीघ्र उन्हें पेंशन से लाभान्वित कराया जाए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने, साथ ही योजना की पहुँच और प्रभावशीलता को और बढ़ाने पर जोर दिया। योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 163 केंद्रों के माध्यम से संचालित है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि आईटीआई को अधिक से अधिक उद्योगों से जोड़ा जाए। उन्होंने उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विकसित करने के साथ ही अप्रेंटिसशिप तथा ऑन जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास को रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि आईटीआई और उद्योगों के बीच निरंतर संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग केंद्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली केंद्रों का संचालन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।

0: समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन तक कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को इजाजत दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने कल जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में जापानी प्रतिनिधिमंडल प्रदेश दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में जापान के उद्योग जगत के 200 से अधिक उद्यमी और अधिकारी शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश दौरे का आज तीसरा दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश के दौरे पर आया जापानी प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा। राज्य सरकार की तरफ से जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निवेश सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान निवेश, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, MSME और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में व्यापक संवाद होगा। राज्य सरकार की तरफ से विश्वास व्यक्त किया गया है कि यह संवाद परक सम्मेलन जापान के साथ साझेदारी के विस्तार और निवेश प्रोत्साहन को नई ऊंचाई देगा। समाचार कक्ष से रितेश।
1: श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र कल अयोध्या में समिति की बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के अंदर निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा संभाला जा रहा ऑडिटोरियम और म्यूजियम का निर्माण कार्य जारी रहेगा और इसके मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री मिश्र ने बताया कि बाउंड्री वॉल का निर्माण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और सिक्योरिटी सिस्टम लगाने में अतिरिक्त 2 महीने लगेंगे।
3: इमर्सिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 7 नंबर गैलरी में मंदिर का दिव्य दर्शन वहां पर पूर्ण कराया जाएगा। इसी प्रकार गैलरी नंबर 17 है, जो अपने में चुनौती है, इसलिए है कि वहां भगवान राम जी जो नदियों से यात्रा की उन्होंने वन गमन में, तो उन नदियों को और उन नदियों पे उन्होंने किस प्रकार का संदेश दिया, इसको भी प्रयास किया जाएगा।
1: गोरखपुर के बाघागाड़ा के पास वाराणसी हाईवे पर ट्रॉलर और रोडवेज बस की टक्कर में वाराणसी के रहने वाले बस चालक की मौत हो गई। कल देर रात हुए इस हादसे में 14 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली तथा घायलों का बेहतर इलाज कराने का निर्देश दिए। राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा नदी, बाराबंकी, अयोध्या और तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रदेश में बाढ़ और जलभराव की स्थिति के बीच सरकार ने प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। अयोध्या में कल 283 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत किट वितरित की गई। बारिश के चलते चित्रकूट में कल 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहे। जिला प्रशासन ने यहां आज भी कई स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। प्रयागराज में बीते 2 दिनों में हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर पानी भर जाने के कारण ट्रेनों के परिचालन पर भी प्रभाव पड़ा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समाज कल्याण विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा। 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित करने के दिए निर्देश। प्रदेश दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य सरकार का निवेश सम्मेलन आज। साझेदारी के विस्तार और निवेश प्रोत्साहन पर होगा व्यापक संवाद और रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जा

0: आने के कारण कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, आज भी कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग बैरागी भैरव में गाया ख्याल, क्षमा कीजिएगा, राग बैरागी भैरव में बांसुरी वादन, वादक कलाकार कमल कुमार।

राग बैरागी भैरव में बांसुरी वादन अभी आपने सुना। वादक कलाकार थे श्री कमल कुमार। आपके साथ तबले पर संगत की श्री पूरन कुमार मिश्र ने। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अभी आप सुन रहे थे वाद्य वृंद रचना। समाचार प्रभात की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
2: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का

0: समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाय के साथ सुरेखा जोशी।
1: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
4: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले एमवी लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले

0: सिबू एक टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, एक तुर्की नागरिक, एक जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग टी की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शूशियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
1: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे। वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातृ

0: मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only two stanzas of Vande Mataram instead of full

0: पहुंचे। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग के रुकने पार्लियामेंट राजू बिस्ता और सियाहत के वजीर शंकर घोष और दीगर ने बागडोगरा हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जनाब, अमित शाह आज सिलीगुड़ी में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो सशस्त्र सीमा बल के हेडक्वार्टर पर कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब अमित शाह सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है, दो मीटिंगों में भी शरीक होंगे। दोपहर में वजीर दाखला कवाखाली ग्राउंड पर भारतीय न्याय संहिता पर एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी और दीगर रियासती वुजरा उनके हमराह होंगे। इस नुमाइश में नए फौजदारी कानून के बारे में बेदारी पैदा करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी और ये इस महीने की 26 तारीख तक जारी रहेगी। शाम में जनाब अमित शाह पार्टी लीडरों और वर्करों से मुलाकात करेंगे। पहाड़ी इलाकों और दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात पर कल दो जायजा मीटिंगें भी होंगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: भारत आज पुणे में मवासलात के वुजरा की 12वीं ब्रिक्स मीटिंग की मेजबानी करेगा। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मीटिंग की सदारत करेंगे। इसमें ब्रिक्स रुक ममालिक के मवासलात के वुजरा और सीनियर नुमाइंदे शिरकत करेंगे और इत्तलाती मवासलाती टेक्नोलॉजी, डिजिटल तब्दीली, इख्तरा और पायदार डिजिटल बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग का मौजू है एक पायदार मुस्तकबिल के लिए इख्तरा, इश्तराक और तब्दीली। वहीं ब्रिक्स की सदारत में, भारत की ब्रिक्स की सदारत में 2026 के तहत आज जयपुर में सियाहत के वुजरा की ब्रिक्स मीटिंग का आगाज होगा। ब्रिक्स रुकन ममालिक से सियाहत के वुजरा और सीनियर ओहदेदारान इस दो रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें सियाहत के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस मीटिंग में जिन अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा उनमें पायदार और जिम्मेदार सियाहत, हुनरमंदी के फरोग, बिला रुकावट सफर और सियाहत में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी एनटीए ने कहा है कि आंसर की चैलेंज का निज़ाम इस तरह बनाया गया है कि सभी तलबा को इससे यकसां फायदा हो। एजेंसी ने इसके महंगा होने पर तशवीश को मुस्तरद कर दिया है। एनटीए का आंसर की चैलेंज एक ऐसा ऑनलाइन अमल है जहां जेईई मेन और नीट या यूजीसी नेट जैसे इम्तिहान में बैठने वाले उम्मीदवार उबूरी आंसर की में गलतियों पर एतराजात दाखिल कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एनटीए ने कहा कि अगर एक उम्मीदवार भी किसी सवाल को चैलेंज करता है तो मुतालिका माहिरीन उस चैलेंज को कबूल करते हैं और नजरसानी शुदा आंसर की का इतलाक इम्तिहान देने वाले हर उम्मीदवार पर होता है। उसने कहा कि गैर संजीदा चैलेंजों की हौसला शिकनी की खातिर जवाब को चैलेंज करने के लिए फीस ली जाती है और चैलेंज के दुरुस्त पाए जाने पर यह फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने कहा कि एक सवाल पर वसूल किए गए 200 रुपए की फीस मुतालिका चैलेंज के दुरुस्त ठहराए जाने पर उस उम्मीदवार को वापस कर दी जाती है। एजेंसी ने कहा कि हकीकी उम्मीदवारों से मुनाफा हासिल करने के लिए फीस नहीं ली जाती, बल्कि फिजूल के चैलेंजों की हौसला शिकनी के लिए यह फीस रखी गई है। उसने यह भी कहा कि किसी भी उम्मीदवार की तरफ से दाखिल किए गए सही चैलेंज से दीगर लाखों उम्मीदवारों का रिकॉर्ड दुरुस्त किया जा सकता है। ट्रंप इंतजामिया ने हिजबुल्ला ग्रुप पर नई पाबंदियां आयद की हैं और उसे ईरान का एक दरपर्दा ग्रुप करार दिया है। अमरीका के महकमा खजाना ने हिजबुल्ला को नकद रकम मुंतकिल करने के लिए जिम्मेदार एक नेटवर्क से मुबैन तौर पर वाबस्ता 10 अफराद पर पाबंदियों का ऐलान भी किया है। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक रकम की मुंतकली के लिए मस्कूरा नेटवर्क ने लेबनान, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान कमर्शियल एयरलाइन परवाजों में सफर करने वाले कुरियर्स का इस्तेमाल किया ताकि गैर मुल्की करेंसी हासिल करने और पाबंदियों से बचने के लिए हिजबुल्ला को बाजाब्ता माली निजाम के बाहर एक रास्ता फराहम किया जा सके। हिजबुल्ला को ईरान का एक दरपर्दा ग्रुप करार देने का मकसद इस बात को उजागर करना है कि मस्कूरा ग्रुप ईरान के सिपाही पासदाराने इनकलाब इस्लामी की ईमा पर काम करता है और वो कोई अलहदा तंजीम नहीं है। हिजबुल्ला और ईरान के पासदार इनकलाब दोनों को अमरीका आलमी दहशतगर्द करार दे चुका है। हिजबुल्ला लबनान की एक सियासी पार्टी होने के साथ साथ मुसल्ला ग्रुप भी है। सोमालिया के कज़ाकों ने

0: गुज़श्ता 4 दिन में 2 बहरी जहाजों को अगवा किया है। इन वाकयात से इस तशवीश में इजाफा हो गया है कि बढ़ते हुए इलाकाई अदम इस्तेहकाम के तनाजुर में सोमालिया और यमन के नज़दीक समंदर में कज़ाकी के वाकयात में फिर से तेजी आ रही है। सोमालिया के पंटलैंड साहिल के नज़दीक इस हफ्ते कज़ाकों ने कैमरून के परचम बंदार जिस कार्गो बहरी जहाज को अगवा किया है उसमें सवार अमले के 10 अहलकारों में 6 भारतीय भी शामिल हैं। इस बहरी जहाज में तुर्की के हथियार थे जिन्हें मवासलाती और सटलाई साजो सामान के साथ मोगदीशु में फौजी तरबियत के एक मरकज ले जाया जा रहा था। अमले के अहलकारों में 6 भारतीय शहरी, तुर्की का 1 शहरी, जॉर्जिया का 1 और सर्बिया के 2 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मध्य प्रदेश में बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने आज उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, जीली हिमालयाई मगरबी बंगाल और शुमाल मशरक़ी हिस्सों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में मौसमियात के महकमे ने आज आमतौर पर मतला अबरालूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई की है। केरलम के कई साहिली इलाकों में आज ऊंची ऊंची लहरें उठने के तनाजुर में समंदर में उथल पुथल रहने का इम्कान है। समंदरी उलूम की खिदमात से मुतालिक कौमी सेंटर के मुताबिक तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुजा, एर्नाकुलम, मल्लापुरम, कोझिकोड और कासरगोड के साहिल के नज़दीक समंदर में 1 से लेकर 1.5 मीटर ऊंचाई तक लहरें उठने की वार्निंग जारी की गई है। हॉकी में आज एम्स्टर्डम में FIH आलमी कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मुकाबले में भारतीय खवातीन टीम नीदरलैंड्स का सामना करेगी। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। इससे कबल भारतीय टीम कल पूल डी के अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ मैच बराबरी पर खत्म करने के बाद दूसरे दौर में पहुंची। इस मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। दोनों ही टीमें गोल का मौका बना पाईं लेकिन गोल करने में नाकाम रहीं। भारत ने दूसरे हाफ में इंग्लैंड के कई पेनल्टी कॉर्नर रोके। बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में BWF आलमी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मर्द खवातीन के डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की डबल्स की भारतीय जोड़ी चीन के तीसरे दर्जे की जोड़ी का सामना करेगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ है फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की सुर्खी है, भारत जापान दिफाई ताउन बढ़ाएंगे, बहरी सलामती के माहदे पर दस्तखत। अखबार ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को नुमाया किया है कि वंदे मातरम पर कांग्रेस का फैसला मुल्क मुखालिफ और कानून की खुली खिलाफ वर्जी। अखबारात ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को भी अहमियत दी है कि हुकूमत लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच कायम करेगी। झारखंड में कामयाब उम्मीदवारों को राहत, इम्तिहानात मनसूख करने के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक, यह खबर इनकलाब में सफ़े अव्वल पर है। अखबारात ने मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम के बांग्लादेश के नए सदर मुंतखब होने की खबर को भी अहमियत दी है। अखबारात की दीगर अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं, ट्रंप का ईरान के खिलाफ गैर मामूली और तबाहकुन माशी कार्रवाई का ऐलान।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम ने बंदिशें और रुकावटें दूर करके मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तवील मुद्दती नजरिया अख्तियार किए जाने पर जोर दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय कौमी गीत के सिर्फ 2 अंतरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। भारत आज पुणे में ब्रिक्स मुल्कों के मवासलात महकमे के वजीरों की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा जबकि ब्रिक्स के सेहत महकमे के वजीरों की मीटिंग जयपुर में होगी। और हॉकी में आज एम्स्टर्डम में FIH वर्ल्ड कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। और

मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेजबान उज्जवल सिन्हा। आज का दिन उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, हमारी गलतियों पर डांटा भी और गिरने पर संभाला भी। जिनकी झुर्रियां दरअसल वक्त की लिखी हुई खूबसूरत इबारत हैं। आज है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। जिनके साये में जिंदगी को मिली पहचान, जिनसे सीखा हमने रिश्तों का मान, उन बुजुर्गों को दिल से सलाम, जिनकी दुआओं से रोशन है हमारा जहान। उम्र बढ़ना जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि अनुभवों की उस किताब का अगला अध्याय है जिसके हर पन्ने पर एक कहानी लिखी होती है। हमारे वरिष्ठ नागरिक केवल हमारे परिवार के बुजुर्ग नहीं हैं, वे हमारी स्मृतियों, संस्कारों और अनुभवों के जीवंत दस्तावेज हैं। उन्होंने वो दौर देखा है जब चिट्ठियां लिखी जाती थीं, जब रिश्तों में मुलाकातों की गर्माहट थी, जब पड़ोस सिर्फ पड़ोस नहीं परिवार का हिस्सा हुआ करता था। आज हमारे पास स्मार्टफोन है, लेकिन उनके पास जीवन को समझने का स्मार्ट अनुभव है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारे पास काम के लिए समय है, मोबाइल के लिए समय है, सोशल मीडिया के लिए समय है, लेकिन क्या हमारे माता पिता और दादा दादी के लिए हमारे पास कुछ मिनट हैं? कभी उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए आपका दिन कैसा रहा, शायद उन्हें किसी बड़ी चीज की जरूरत ना हो। कभी कभी उन्हें सिर्फ हमारा साथ चाहिए होता है। याद रखिए, दवाइयां शरीर को स्वस्थ रख सकती हैं, लेकिन अपनापन दिल को स्वस्थ रखता है। नई पीढ़ी के पास तकनीक है, वरिष्ठ पीढ़ी के पास अनुभव। नई पीढ़ी के पास गति है, वरिष्ठ पीढ़ी के पास दिशा। नई पीढ़ी भविष्य बनाना चाहती है, वरिष्ठ पीढ़ी हमें बताती है कि भविष्य बनाते समय किन गलतियों से बचना चाहिए। इसलिए पीढ़ियों के बीच दूरी नहीं, संवाद होना चाहिए। एक छोटा सा संकल्प लें, हम अपने घर के किसी वरिष्ठ नागरिक के साथ रोज कम से कम 15 मिनट बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी राय पूछेंगे, उनकी पुरानी यादों को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां शायद उन आवाजों को किताबों में तलाशेंगी।

दादी की कहानी, दादा की डांट, नानी के हाथ का खाना, नाना के किस्से, बचपन में ये सब सामान्य लगता था। लेकिन जब वही आवाज़ें घर में सुनाई देना बंद हो जाती हैं,

तब समझ आता है कि ये आवाज़ें कितनी अनमोल थी। घर में बुजुर्ग रहें तो घर घर लगता है, उनकी हंसी से हर आंगन बेहतर लगता है। दौलत से नहीं मिलती ये दौलत दुनिया में, बुजुर्गों का होना ही सबसे बड़ा गहना लगता है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: नमस्कार।

21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में इसे स्थापित किया था। 2026 की थीम है हीलिंग थ्रू मेमोरी, यानी स्मृतियों के माध्यम से उपचार।

कभी कभी एक धमाका सिर्फ एक पल को नहीं बदलता, वो कई जिंदगियों की पूरी कहानी बदल देता है। किसी घर का चिराग बुझ जाता है, किसी माँ की आंखों का इंतजार ठहर जाता है, किसी बच्चे के बचपन से पिता का साया छिन जाता है और किसी परिवार की खुशियों पर हमेशा के लिए एक खामोशी उतर जाती है। कुछ जख्म दिखाई नहीं देते मगर उम्र भर दर्द सुनाते हैं। कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं मगर यादों में हमेशा मुस्कुराते हैं।

आतंक की आवाज़ से बड़ी आवाज़ इंसानियत की है, नफरत से बड़ी ताकत प्रेम की है, और हिंसा से बड़ी शक्ति शांति की है।

आप सुन रहे हैं इंदिवर की गीत रचना कल्याण जी आनंद जी का संगीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें। फिल्म का नाम कुर्बानी।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: UP 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
6: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
5: UP 112 की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
6: शहर या देहात, दिन हो या रात, UP 112 है आपके साथ।
5: UP 112 नंबर एक, सेवाएं अनेक।
7: कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं योगेश की गीत रचना, RD बर्मन संगीत, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम शौकीन।

साहिर की गीत रचना खय्याम का संगीत येसुदास, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें, फिल्म त्रिशूल का गीत है ये।

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, अगले प्रसारण की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अमरोहा और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा।

0: और जिले की हलचल, आलेख और स्वर है मरकूब हुसैन का।
1: अमरोहा में जिले की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने विभागवार जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली और हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा,
2: मासिक समीक्षा बैठक की गई है जिसमें सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभाग के संबंध में यहाँ पर जो कुछ बताया है वो संतोषजनक है और दिन पर दिन कार्य प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। जिलाधिकारी के नेतृत्व

0: की गई है, जिसमें सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभाग के संबंध में यहाँ पर जो कुछ बताया है वो संतोषजनक है और दिन पर दिन कार्य प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में विकास के कार्य हो रहे हैं, कप्तान साहब के नेतृत्व में यहाँ शांति व्यवस्था अच्छी प्रकार से चल रही है। जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं उस तरीके से हमारे अधिकारी सब कार्य में लगे।
1: उन्होंने कहा कि अलंकार योजना के अंतर्गत माध्यमिक स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। सरकार द्वारा कैशलेस चिकित्सा योजना के माध्यम से शिक्षकों के स्वास्थ्य के साथ उनके परिवारजनों का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ द्वारा कलेक्ट्रेट में, जबकि पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान का गायन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर गौड़ ने कहा कि मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक है, तभी हमारा देश अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकेगा और आगे बढ़कर विकसित भारत बन सकेगा। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण के उपरांत सभी उपस्थित पुलिस कर्मियों को राष्ट्र की सुरक्षा एवं अखंडता के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के विस्तार के अंतर्गत अमरोहा के मंगरौला से हरिद्वार तक बनने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण की राह अब आसान हो गई है। इसके दायरे में आने वाले अमरोहा के किसानों की सर्किल रेट बढ़ाने की मांग मान ली गई है। एक्सप्रेसवे के निर्माण और हरिद्वार तक इसके विस्तार को गति देने के लिए अमरोहा जिला प्रशासन ने जमीनों के नए सर्किल रेट निर्धारित कर दिए हैं। यह एक्सप्रेसवे जिले के 52 गांवों से होकर गुजरेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि इन गांवों के किसानों की लंबे समय से चली आ रही मुआवजे की मांग को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों में सर्किल रेट में सर्वाधिक 48% तक की वृद्धि की गई है।
2: जो सर्किल रेट रिवाइज की गई है, इसका सीधा सीधा लाभ 2.5 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को पहुंचेगा। इसमें जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स अपनाए गए हैं वो ये कि स्टैंप एक्ट का इसमें पालन हो, सुसंगत जीओस का पालन हो, और इसके अलावा एक गाँव के पास अगर दूसरा गांव लगता है उनमें जो सर्कुलेट में विषमता है उसको काटा जाए।
1: इस अहम फैसले से न सिर्फ किसानों को उनकी जमीन का बाजार के अनुरूप उचित मूल्य मिलेगा बल्कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आने वाली अड़चनें भी दूर होंगी। केंद्र सरकार की विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी योजना के प्रचार प्रसार के लिए अमरोहा कलेक्ट्रेट सभागार में 12 अगस्त को पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने की। सम्मेलन में VBG राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, रोजगार सृजन और गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि VBG राम जी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ विकास कार्यों को गति देने वाली महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए तथा पात्र श्रमिकों को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 10 अगस्त को अमरोहा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिव्यांगजन विभाग, सेवायोजन कार्यालय, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 के अंतर्गत रोजगार मेले का आयोजन विकास भवन में किया गया। मेले में कुल 8 कंपनियों द्वारा 89 उपस्थित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें 56 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अमरोहा के गंगाधाम तिगरी व हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में हर वर्ष लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले में कुंभ मेले की तर्ज पर पेंटून पुल की संभावनाओं को लेकर DM अमरोहा डॉक्टर नितिन गौड़ और DM हापुड़ कविता मीणा ने तकनीकी टीम के साथ 17 अगस्त को तिगरी में मंथन किया।
3: अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
4: गौतम बुद्ध नगर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप शामिल हुए। ध्वजारोहण के बाद मंत्री ने पौधारोपण करते हुए कहा कि स्वच्छ एवं हरा भरा पर्यावरण भावी पीढ़ियों के लिए हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह आजादी हमें असंख्य महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान के बाद प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं बल्कि उन महान वीरों के बलिदान को स्मरण करने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संकल्प लेने का दिन है। वहीं जिला मुख्यालय पर जिला

0: अधिकारी मेधा रूपम ने झंडा फहराकर जिला मुख्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और उत्कृष्ट सेवा करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने व बाढ़ सुरक्षा एवं बचाव तैयारियों की समीक्षा को लेकर लोक निर्माण राज्य व प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए सभी विभाग तैयारियों के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहें तथा आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने विशेष रूप से तीनों प्राधिकरणों एवं पुलिस विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों की तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इंडिया बायो एनर्जी एवं टेक एक्सपो 2026 11 से 13 अगस्त तक इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ। एक्सपो में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश राजपूत ने हिस्सा लिया। एक्सपो में देश विदेश से आए प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञों और बड़ी संख्या में उद्यमियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सीबीजी इंडस्ट्री में किसानों को समृद्ध बनाने की बहुत ताकत है।
1: इस सेक्टर में कितनी ताकत है हमारे किसानों को समृद्ध बनाने की, इसमें कितनी ताकत है हमारे गोपालकों को, पशुपालकों को समृद्ध बनाने की। खेती करने वाले किसान को तो समृद्ध बनाना ही है, उसका कचरा जो निकल जा रहा है उस कचरे का वो कंचन बनाते हुए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं गोल्ड बनाते हुए, हम उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं और किसान की आमदनी को तो हम बेहतर बनाएंगे। साथ में एनवायरमेंट का भी फायदा होगा, साथ में हमारी इंडस्ट्री चलेगी और हमारे नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में उनको नौकरी का अवसर मिलेगा।
0: वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य है और यहां सबसे अधिक कृषि अपशिष्ट उपलब्ध है। इस अपशिष्ट को नवाचार के माध्यम से ऊर्जा में बदला जा सकता है।
2: उत्तर प्रदेश के पास ये अकूत संसाधन जिनका सदुपयोग करके हम कैसे ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ सके, बायो एनर्जी और आपके इस टेक एक्सपो के माध्यम से। अभी तक हमारे पास समस्या थी पराली जलाने की, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप सबके आगमन ने हमें उसके उपयोग की संभावनाओं को खड़ा कर दिया है।
0: सीबीएसई नॉर्थ जोन 1 लॉन टेनिस एवं शूटिंग बालिका वर्ग प्रतियोगिता का आयोजन जेपी पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 772 शूटिंग खिलाड़ी, 742 लॉन टेनिस खिलाड़ी सहित 1400 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि
3: फिट इंडिया मूवमेंट का भी आह्वान करें, देश के युवाओं को जोड़ने का प्रयास आधार करें, देश पदक जीत रहा, खेलों में आगे बढ़ रहा, युवाओं को खेल के प्रति जुड़ाव हो रहा। और उसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और आह्वान किया, बड़ा सांसद खेल कूद प्रतियोगिता के माध्यम से भी प्रतिभा को तलाशने और तराशने का काम बहुत तेजी के साथ देश में प्रारंभ हो गया।
0: उत्तर प्रदेश की सृजनशील प्रतिभा नवाचारकर्ताओं, समाज सेवियों एवं परिवर्तन के वाहकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से नमस्कार फाउंडेशन द्वारा ग्रेटर नोएडा में नमस्कार उत्तर प्रदेश राज्य सृजनकर्ता सम्मान 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज प्रतिभा, नवाचार और युवा शक्ति का अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। ऐसे सम्मान समारोह युवाओं की सृजनात्मक क्षमता को नई दिशा प्रदान करते हैं तथा उन्हें समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए प्रेरित करते हैं।
4: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनते हैं देशकान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वरों में देशगान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

वो दास्तान जिसमें हर दरवेश अपने साथ एक नई दुनिया, एक नया राज और एक नई आजमाइश लिए हमारे सामने आता है। तीन दरवेश अपनी अपनी दास्तानें सुना चुके थे, अब बारी थी चौथे दरवेश की। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर एक गहरी सांस ली और बोला, किस्सा हमारी बेसरो सामानी का अब सुनो, तू कब ना ध्यान

ऐ मुर्शिदे मन, कभी मैं भी चीन के बादशाह का बेटा था, नाजो नेमत में पला, शहाना जिंदगी गुजारी और यही समझता रहा कि आसाइशें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। मेरे वालिद सख्त बीमार हुए, वफात से पहले उन्होंने मेरे चचा को बुलाया और वसीयत की, मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, शहजादा अभी कमसिन है, जब तक वो सल्तनत संभालने के काबिल ना हो जाए तुम उसकी नियाबत करना, और जब वो बालिग हो जाए तो तख्त ताज उसे वापस कर देना। नेज़ मेरी ख्वाहिश है कि उसका निकाह तुम्हारी बेटी से कर दिया जाए। ये वसीयत करके बादशाह दुनिया से रुखसत हो गए और चौथे दरवेश के चचा तख्त नशीन हो गए। शहजादा यानी चौथा दरवेश, उसको महल में ही रखा गया। एक वफादार खादिम मुबारक हमेशा उसके साथ रहता। वक्त गुजरता गया, एक दिन महल की गुलाम बादी ने शहजादे को थप्पड़ मार दिया। वो रोता बिलखता मुबारक के पास पहुंचा। मुबारक उसे उसके चचा के दरबार में ले गया और अर्ज़ किया, हुजूर, शहजादा अब जवान हो चुका है, उनकी शादी का भी वक्त आ पहुंचा है। चचा ने नजूमी बुलवाए और शादी की तारीख दरियाफ्त की। नजूमियों ने सितारे देखे और कहा, क़िबला आलम, ये साल नहस है, शादी अगले साल करना बेहतर होगा। लेकिन चंद ही दिन के बाद मुबारक का चेहरा जर्द हो गया और उसने शहजादे पर एक ख़तरनाक राज आया किया। शहजादे, तुम्हारे चचा ने तुम्हें कत्ल करने का हुक्म दिया है। शहजादा ये सुनते ही हवास बाख्ता हो गया और घबरा कर बोला, मुझे सल्तनत नहीं चाहिए दादा, तख्त नहीं चाहिए, बस मेरी जान बचा लो। मुबारक ने कहा, घबराओ नहीं, एक तदबीर मेरे जहन में आई है, शायद खुदा तुम्हें तुम्हारा हक भी वापस दिला दे। मुबारक उसे महल के एक पोशीदा हिस्से में ले गया, जहाँ फर्श के नीचे एक तहखाना था। वहाँ सोने के घड़े, अशरफियाँ और कीमती जवाहरात मौजूद थे। हर घड़े पर जवाहरात से बना एक बंदर रखा हुआ था। शहजादे ने तजस्सुस से पूछा, दादा ये सब क्या राज है? मुबारक ने जवाब दिया, ये तुम्हारे वालिद का राज है बेटा, उनके पास 39 तिलस्मी बंदर जमा थे, सिर्फ एक की कमी रह गई थी। जब 40 बंदर मुकम्मल होंगे तो उनकी असल ताकत जाहिर होगी। तो शहजादे ने इस पर कहा, तो अब क्या किया जाए? फिर मुबारक ने कहा, हम मलिक सादिक के पास जाएंगे, शायद वो 40 बंदर दे दे और तुम्हारी मदद करे।

मुबारक ने बड़ी तदबीर के साथ उसके चचा से कहा कि वो उसे जंगल ले जाकर कत्ल कर देगा, जिससे उसके दामन पर कोई छींटाकशी भी नहीं होगी और चचा के रास्ते का कांटा भी दूर हो जाएगा। ये सुनते ही चचा बेहद खुश हो गया और मुबारक से बोला, जल्द इस तदबीर को अमल में ले आओ। और यूं वो दोनों सफ़र पर रवाना हो गए। वो सफ़र जिसको शहजादे की मौत का सफ़र समझा जा रहा था, वो उसकी नई जिंदगी का आगाज़ बन गया। दोनों रातों रात निकल गए। कई हफ्तों के सफ़र के बाद मुबारक ने शहजादे की आंखों में सुलेमानी सुरमा लगाया, जिसके लगाते ही अचानक एक ऐसी दुनिया उसके सामने आ गई जहां जिनों के लश्कर और शाही खेमे सब उसे नज़र आने लगे। फिर दोनों मलिक सादिक के दरबार में पहुंचे। मलिक सादिक जो जिनों का बादशाह था, जहां पहुंचकर मुबारक ने कहा, हुजूर ये वही शहजादा है जिसके वालिद से आपकी देरीना दोस्ती थी, उसके चचा ने उसका हक छीन लिया है, अब आप ही कुछ मदद फरमाएं।

मलिक सादिक ने कहा, तुम्हारे वालिद के हम पर बहुत हुकूक हैं, लेकिन पहले शहजादे को एक इम्तिहान देना होगा। ये कहकर उसने एक कागज़ शहजादे के हाथ में दिया, जिस पर एक नहायत हसीन औरत की तस्वीर थी। उस तस्वीर वाली औरत को दुनिया के किसी भी कोने से तलाश करके मेरे पास लाओ। अगर कामयाब हुए तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। मलिक सादिक ने शहजादे से ये बात कही। फिर उस तस्वीर को लेकर मुबारक और शहजादा दोनों 7 बरस तक शहर शहर, मुल्क मुल्क, बस्ती बस्ती भटकते रहे।

आखिर एक शहर में एक नाबीना फकीर मिला। शहजादे ने उसे एक अशर्फी दे दी। नाबीना बेहद खुश हुआ और उसे अपने घर ले गया। अचानक अंदर से एक निस्वानी आवाज आई, ए बाबा, आज इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? शहजादे ने जैसे ही उस लड़की को देखा, उसके हाथ में मौजूद तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर और उस नाज़नीन में कोई फर्क न था। उसकी खुशी का तो ठिकाना न रहा। उसने फौरन पीर मर्द से उसकी बेटी का हाथ मांगा, लेकिन पीर मर्द ने बड़ी मायूसी के साथ जवाब दिया, ए शहजादे, मेरी बेटी एक ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार है कि कोई बशर उससे निकाह करके जिंदा नहीं रह सकता। इस पर शहजादा ताज्जुब से बोला, आप मुझे पूरी दास्तान सुनाइए, आखिर ऐसा क्या मामला है? पीर मर्द ने कहना शुरू किया, मैं इस शहर के मुअज्जज लोगों में शुमार होता था। मेरी बेटी के हुस्न के चर्चे दूर दूर तक थे। शहर का शहजादा उसे देखे बगैर ही उस पर आशिक हो गया। बादशाह ने मुझसे उसका रिश्ता मांगा और मैंने कबूल कर लिया। निकाह हुआ। रात को जब शहजादा दुल्हन के करीब आया तो अचानक खौफनाक चीखों पुकार सुनाई देने लगी। दरवाज़ा तोड़ा गया तो शहजादा खून में लथपथ मुर्दा पड़ा था और मेरी बेटी वहीं बेहोश पड़ी हुई थी। बादशाह ने जब ये देखा, मेरी बेटी को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। मगर उसी लम्हे एक पुरइसरार आवाज़ गूंजी, ए बादशाह, इस नाज़नीन के मामले में ना पड़। अगर इसे सताया तो तेरा अंजाम भी तेरे बेटे जैसा होगा। बादशाह खौफजदा हो गया और हमें छोड़ दिया। मैंने अपनी बेटी से पूछा भी कि उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था, तो मेरी बेटी ने बताया, अब्बा जान, मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मेरे शौहर मेरे करीब आए तो छत फट गई। एक मुरस्सा तख्त नमुदार हुआ, उस पर एक हसीन नौजवान बैठा था। उसके साथ कई और लोग भी थे। वो सब मेरे शौहर की तरफ बढ़े। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे मगर पांव बकरियों जैसे। तब से हम दोनों इस उजड़े मकान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई हमारी मदद नहीं करता बेटा। ये सुनकर शहजादे ने कहा, बाबा, आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दीजिए। जो मेरी किस्मत में होगा वो होकर रहेगा। पीर मर्द ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। इस पर शहजादे ने बड़ी आजिज़ी से कहा, महबूब का विसाल ही मेरी ज़िंदगी है। मैं मरने जीने की परवाह नहीं करता।

इसके बाद शहजादा तकरीबन एक माह तक उसे मनाता रहा। इसी दौरान वो पीर मर्द बीमार भी हो गया, लेकिन शहजादे ने भी बड़ी दिल से उसकी खिदमत की। आखिरकार उसकी खिदमत से मुतासिर होकर पीर मर्द राजी हो गया और बोला, अच्छा मैं अपनी बेटी से तुम्हारा जिक्र करूँगा, अगर वो राजी हुई तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। आखिर उसने इजाज़त दे दी, लेकिन कुछ ही दिन के बाद वो पीर मर्द इस दुनिया से रुखसत हो गया। बाद तदफीन उस नाजनीन को अपने साथ लेकर मलिक सादिक की तरफ

दोनों रवाना हुए। रास्ते में शहजादा को खबरदार करते हुए मुबारक ने कहा, ये मलिक सादिक की अमानत है, खबरदार इसमें खयानत न करना। शहजादे ने उतावलेपन के साथ जवाब दिया, मैं इतने बरस इसके लिए भटका हूँ, अब चंद लम्हे उसके साथ गुजारने की भी ख्वाहिश है। मुबारक ने कहा, लड़कपन ना करो, हमें उसे सही सलामत मलिक सादिक तक पहुँचाना है। फिर दोनों रवाना हुए। रात हो चुकी थी। शहजादा भी अपने दिल का अहवाल कहने के लिए उस नाजनीन के करीब आ बैठा और बोला, जिस दिन से तुम्हारी सूरत देखी है मैंने खुद पर आराम हराम कर लिया है, आज तुम मेरे सामने हो। नाजनीन बोली, तुमने मेरी खातिर जो मुसीबतें उठाई उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरा दिल भी तुम्हारी तरफ मायल है। मुबारक ने दोनों को बात करते हुए देख लिया और हमदर्दी से बोला, मेरे पास एक तदबीर है, एक खास किस्म का रोगन मैं तुम दोनों को दूंगा, जिसे तुम नाजनीन के जिस्म पर लगा देना, जिसकी महक से शायद मलिक सादिक का दिल उसकी तरफ मायल ना हो और फिर तुम अपनी मुराद को पहुंचो। तीनों मलिक सादिक के दरबार में पहुंचे। मलिक सादिक ने बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल किया और कहने लगा, तुम्हारे वालिद की खातिर मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूंगा। इतने में नाजनीन दरबार में आई। रोगन की खुशबू फैलते ही मलिक सादिक बेचैन होकर बाहर निकल गया। फिर उसने शहजादा और मुबारक को तलब किया, वाह मुबारक, तुमने क्या खूब शर्त निभाई। मुबारक घबराते हुए बोला, बादशाह सलामत, मैंने पूरी अमानतदारी से अपना फर्ज अदा किया है। इतना सुनकर मलिक सादिक ने गजबनाक तरीके से शहजादे की तरफ देखा, तो ये सब तेरा किया धरा है। शहजादे को जब यकीन हो गया कि अब उसकी जान नहीं बचने वाली, उसने मुबारक की कमर से खंजर निकाला और मलिक सादिक पर हमला कर दिया। लेकिन वो कोई आम इंसान न था, वो जमीन पर गिरा, फिर एक गेंद की तरह गोल हुआ और आसमान की तरफ बुलंद हो गया और बिजली की मानिंद वापस आया और एक जोरदार वार शहजादे पर किया। शहजादा वहीं बेहोश हो गया। आंख खुली तो देखा एक खौफनाक जंगल में पड़ा हुआ है। मायूसी में भटकता भटकता एक पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। अपनी जान खत्म करने का इरादा उसने किया ही था कि उसी वक्त एक बुर्का पोश सवार उसके सामने नमुदार हुए और बोले, ए जवान, अपनी जान क्यों जाया करते हो, तुम्हारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। रोम की तरफ जाओ, वहां तीन शख्स तुमसे पहले पहुंच चुके हैं, उनसे मुलाकात करो और वहां के सुल्तान से मिलो, तुम पांचों की मंजिल एक ही जगह पूरी होगी। इतना कहकर वो नकाब पोश गायब हो गए। चौथे दरवेश ने अपना किस्सा यूं इस तरह इस मकाम पर मुकम्मल किया। तभी एक खादिम दौड़ता हुआ आया और बादशाह आजाद बख्श से बोला, जहां पनाह मुबारक हो, आपके यहाँ एक शहजादा पैदा हुआ है। आजाद बख्श खुशी से बेकरार हो गए और चारों दरवेश को मुखातिब करते हुए कहने लगे, ये आप लोगों के कदमों की बरकत है, अगर इजाजत हो तो मैं अपने बेटे को दिखाऊं। दरवेशों ने एक साथ कहा, बिस्मिल्लाह। बादशाह ने शहजादे को गोद में उठाया। महल में जश्न का आलम हो गया, चारों तरफ जश्न शुरू हो गया। लेकिन तभी महल की एक खवास चीखती चिल्लाती आई और बोली, हुजूर कयामत हो गई, शहजादा गायब हो गया। जब दाई ने शहजादे को नहला धुला कर गोद में लिया, एक बादल का टुकड़ा आया और उसने घेर लिया और दाई वहीं बेहोश हो गई और शहजादा गायब हो गया। पूरे मुल्क में कोहराम मच गया। मगर दो दिन बाद वही बादल वापस आया और एक जड़ाऊ पिंगोला यानी झूला महल में रखकर गायब हो गया। उसमें शहजादा सही सलामत मौजूद था। ये सिलसिला हर महीने जारी रहता। बादल आता, शहजादे को ले जाता और दो दिन बाद वापस ले आता। इस तरह से 7 बरस गुजर गए। एक दिन आजाद बख्श ने दरवेशों से कहा, ये राज मेरी समझ से बाहर है, आखिर मेरे शहजादे को कौन ले जाता है। दरवेशों ने मशवरा दिया, एक रुक्का शहजादे के गहवारे में रख दीजिए और उस नामालूम मोहसिन से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कीजिए। बादशाह ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अगली मर्तबा शहजादे के साथ एक जवाब आया, हमें भी अपना मुश्ताक जानिए, आपके लिए सवारी का तख्त भेजा जाएगा, तशरीफ लाइए, मुलाकात होगी। आजाद बख्श चारों दरवेशों को साथ लेकर रवाना हो गया। हवा में उड़ता हुआ तख्त एक अजीम शान मकाम पर उतरा। अचानक उनकी आंखों में सुलेमानी सुरमा लगाया गया और सामने एक ऐसी दुनिया नमुदार हुई जो इंसानों ने कभी न देखी थी। हजारों परीजाद इस्तकबाल के लिए खड़े थे।

0: जिन्होंने कभी सोचा भी ना था कि उनकी जिंदगी में खुशी का दिन आएगा, वो भी आखिरकार अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचे। इलाही, जिस तरह तूने इन चारों दरवेशों और आज़ाद बख्त की मुरादें पूरी फरमाईं, इसी तरह हर बेकरार दिल की जायज़ आरज़ू को अपने कर्म फजल से पूरी फरमा। आमीन। ये थी दास्तान किस्सा चार दरवेश, एक ऐसी दास्तान जहां आजमाइश तवील ज़रूर थी मगर उम्मीद ने आखिरकार हर अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। इसी दुआ के साथ कि हम सब के दिलों का अंधेरा दूर हो जाए और हमारा खालिक उसे पुरनूर रोशनी से भर दे, अपनी मेज़बान शाज़िया ख़ान को इजाज़त दीजिए। आदाब।
1: अभी समय समाप्त फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश थी। मीडियम वेव 400
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम

में हम आपको सुनवाएंगे किरण वाजपेयी की गाई कुछ भक्ति रचनाएं। इनके स्वर में पहले प्रस्तुत है सूरदास जी की लिखी ये भक्ति रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तुलसीदास जी की लिखी भक्ति रचना, जिसे गाया है एक बार फिर किरण वाजपेयी ने।

इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना और संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों, शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान

0: प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया। भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटीए ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमरीका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कूरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंता बढ़ रही है। हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले एमवी लुतूप जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सीबू-1 टैंकर का अपहरण शामिल है। और खेलों में हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं दिल्ली में आज हल्की वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रयागराज के प्रधान महाप्रबंधक आनंद भूषण सरन से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी के बातचीत की तीसरी कड़ी।

0: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ प्रयाग कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आनंद भूषण सरन जी। आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर हैं और आपसे हमने दो एपिसोड में बहुत कुछ जाना समझा, प्रशासनिक कुशलता के बारे में, सिग्नलिंग के बारे में और वर्क फोर्स के बारे में। अब इस एपिसोड में हम जानना चाहते हैं कि आपने खुद को कैसे तैयार किया। तो पढ़ाई लिखाई से बातचीत शुरू की जाए।
1: तो हम जानना चाहेंगे सर आपके बचपन के बारे में
0: जी।
1: आपने कहाँ से पढ़ाई की और कब आपको लगा कि इंडियन रेलवे में जाना है? क्या आपने पहले सोचा था या तैयारी करते करते मतलब बाय एक्सीडेंट आप इंडियन रेलवे के साथ काम करने पहुँच गए?
2: मेरी पढ़ाई जो है हाई स्कूल तक प्रयागराज में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स हायर सेकेंडरी स्कूल जो चैतन लाइन में वहाँ से हुई है। उसके बाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज साउथ मलाका में मैंने 12th तक प्रयागराज से किया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग मेरे जीबी पंत यूनिवर्सिटी, उस समय नैनीताल था, आजकल उधम सिंह नगर है, वहाँ से हुई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। वहाँ पे एक हवा चली थी
0: नैनीताल में जी,
2: इंजीनियरिंग सर्विसेज करने की तैयारी। तो हमारे सीनियर बैच के 7 लोग निकले थे उस पर, काफ़ी उससे हम लोग इंस्पायर हुए। तो ये हुआ कि इंजीनियरिंग तो कर ली, एक साल रिस्क ले लेते हैं
0: जी।
2: तो उसके लिए क्या किया था हम लोग ने, क्योंकि हम लोग की फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छी नहीं रहती थी।
0: अच्छा, उस समय भी लोग कहते थे बड़े इजीली सब हो जाता था।
2: नहीं, मेरे मतलब हम, मेरी तो नहीं अच्छी थी उतनी
0: जी।
2: तो हमने क्या किया था, एक एग्जाम होता है गेट एमटेक के लिए
0: जी,
2: तो उसमें हमने क्वालिफाई किया था। तो फिर यहाँ जेके इंस्टीट्यूट से एमटेक ज्वाइन कर लिया था। वो फाइनेंशियल उससे क्या होता है, स्कॉलरशिप मिलती थी
0: जी।
2: उसके बाद तैयारी की, फिर इंजीनियरिंग सर्विस 96 बैच में सिलेक्शन।
0: अच्छा,
2: हो गया आपको?
0: वाह, सो गुड। मतलब ऐसा नहीं था कि कर रहे हैं
2: नहीं
0: हो रहा है,
2: खाली नहीं बैठा था।
0: फिर हाँ, वो रणनीति कैसे बनाई थी आपने पढ़ने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की?
2: रणनीति कोई थी नहीं, बट ये था कि अब घर वालों पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े फाइनेंशियली, तो उसके लिए अपना वो करना था। तो उस समय हम लोग को 1800 स्टाइपेंड मिलता था गेट में, तो मोर देन सफिशियंट था।
0: कितने घंटे कुल पढ़ाई करते थे आनंद जी आप उस समय?
2: देखिए एवरेज निकालने तो लगभग 4-4.5 घंटे एवरेज है, क्योंकि कभी बाहर गए, कभी गए, कभी 6 घंटा हो गई, कभी 8 घंटा हो गई, कभी नहीं हुई, ऐसा भी होता था किसी नहीं हुई
0: जी।
2: लेकिन एवरेज आप निकालें 4-4.5 घंटा आता था।
0: नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर करते रहे थे उस समय?
2: मैं नोट्स नहीं प्रिपेयर करता था,
0: तो फिर
2: मैथ्स भी ऐसे पढ़ता था।
0: अच्छा, हर किसी की टेक्निक अलग है भाईजी, है ना, कोई नोट्स बनाता है, कोई बिना नोट्स के ही। लेकिन बिना नोट्स के भी चीजें कैसे याद रहती थी एग्जाम में? पिक्चर जैसे कहते हैं कि विजुअलाइज करिए तो आपको चीजें याद रहती हैं, तो आपकी क्या टेक्निक रही?
2: बेसिकली मेरे पास काफी रफ कागज रहते थे, पढ़ते थे, जो चीज नहीं समझ में आती थी लगता था इसको करना है, एक तरह से मुझे आलसी बोल सकते हैं आप, तो जो चीज़ समझ में नहीं आती उसी को मैं रफ कागज पे छोटा छोटा छोटा करके अपने समझने के लिए कर लेता था। मतलब नोट्स नहीं बनाता था, मतलब समझ लीजिए 50 पेज मेरा चल जाता था 2 साल तक।
0: दिमाग में न जाने कितने पेजेस आनंद जी ने अभी भी बना रखे।
2: नहीं, इसको आप अच्छी बात नहीं समझिए, इसको समझिए मैं आलसी था।
0: तो अभी के जो स्टूडेंट्स हैं जो रेलवेज में आना चाहते हैं या किसी भी नौकरी में, उनको किस अभ्यास पे बहुत जोर देना चाहिए ताकि उनकी जो नौकरी की इच्छा है वो भी पूर्ण हो सके और उनका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर हो?
2: इसमें मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि देखिए, जो मैंने बोला कि 50 पेज 2 साल चल जाते थे, लेकिन वो ठीक है, टेक्निक नहीं है। आपको तो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करनी चाहिए, कि सिलेबस देखना चाहिए, उसके बाद हर एक जो पिछले पेपर्स आते हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो आपके शुरू से पढ़ाए गए बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, उसमें कोई समझौता नहीं करना है। फंडामेंटल्स आप समझ लीजिए तो सब हो जाएगा, और फंडामेंटल नहीं समझा तो आप जितना घंटे लगा लीजिए कुछ नहीं होना।
0: लोगों का अभ्यासी मन भी बहुत भागता है ना, जब वो 12वीं में या फिर तैयारी कर रहे होते हैं, कोई कहता है ये बुक पढ़ लो जी, कोई कहता है जी वो बुक पढ़ लो, उस सर के पास चले जाओ। तो ऐसे में बिल्कुल स्थायी होकर ये समझना कि नहीं, फंडामेंटल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे एक जाई एकाग्र करें कोई?
2: इसमें ज़्यादा किताबों की और ज़्यादा ट्यूटोरियल की ओर ना भागें, एक सब्जेक्ट की एक किताब पकड़ें, सब में फंडामेंटल्स वही रहते हैं, उसको ध्यान से पढ़ें और ट्यूटोरियल्स वगैरह लगाएं वो प्रैक्टिस के लिए, उस फंडामेंटल कितना आपको याद है उसके लिए, और सिस्टमेटिक वे में करें, क्योंकि आपके फंडामेंटल ट्यूटोरियल्स में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे और उसके आप

0: जब फंडामेंटल के आप अलग से लगाओगे तो आपका दिमाग क्लियर होगा, आपको गलती पता लगेगी। तो बेसिकली प्रैक्टिस भी जरूरी है, और कंपटीशन अब बहुत टफ हो चुका है, तो मेरे ख्याल से रेगुलर पेन पेपर का यूज़ करना जरूरी है।
1: जी, मैं खुद तो
0: केवल
1: नहीं किया लेकिन लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि आप पेन पेपर जरूर यूज कीजिए।
2: समय
1: आनंद
2: बदला
1: भूषण जी, पढ़ाई की बात तो काफ़ी हो गई,
2: जी
1: कि
2: जी
1: पढ़ाई से जब आप थक जाते हैं, मन बोर हो जाता है,
2: हाँ
1: तो हम कुछ और करना चाहते हैं कि हम खुद को रिफ्रेश कर सकें। तो आनंद भूषण जी, पढ़ाई के अलावा क्या करते थे? क्या उनको कविताएं लिखने का शौक था? क्या वो क्रिकेट खेलते थे? बाकी वो क्या करते थे?
0: देखिए, मुझे खेलने का बहुत शौक है। मैं क्रिकेट खेलता था,
2: जी
0: और क्रिकेट और चेस तो मुझे बहुत पसंद है। अब मैं टीटी भी खेलता हूँ, लेकिन क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है। स्कूल डेज से मैं खेला हूँ। 3 बजे आके मैं हल्का फुल्का नाश्ता करके खेलने निकल जाता था, और 6 बजे के पहले वापस नहीं आता था।
2: तो आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन रहा है जिसको बहुत अच्छा लगता है आपको देखने में खेलते हुए?
0: मुझे राहुल द्रविड़,
2: राहुल द्रविड़ जी क्यों अच्छे लगते हैं वो आपको? अच्छा,
0: टेक्निक बहुत अच्छी है उनकी,
2: उनको वॉल कहा जाता है
0: द
2: ना,
0: वॉल। बिल्कुल,
2: द वॉल, कि वो टिकेंगे तो कोई हिला नहीं पाएगा।
1: आप खुद भी एक इंजीनियर हैं और आप टेक्निक को बहुत महत्व देते हैं, तो इसके अलावा आप फिल्में भी देखते थे, जैसा कि आपने बताया कि आप थिएटर में जाते थे, किसी को बोल रखते थे मैं इस सीट पे बैठा हूँ। तो कौन सी फिल्में आपको पसंद आई और कौन से एक्टर थे जो आपके फेवरेट थे?
0: मेरे फेवरेट एक्टर्स में मेल में तो ये गुरुदत्त और अमिताभ बच्चन है।
2: गुरुदत्त साहब,
0: नहीं,
2: ओह, उनका कोई डायलॉग याद है या कोई? और अच्छा, कौन
0: नहीं,
2: सी फिल्म उनकी पसंद है?
0: साहब, बीबी और गुलाम।
2: कोई गीत आपको याद है उस फिल्म का?
1: अगर हमारे लिए 2 लाइंस गुनगुना
2: हाँ,
1: दे,
2: गुनगुना दें तो फिर
0: जरूरी है इसी का गुनगुनाऊं?
1: किसी का भी गुनगुना दीजिए।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
2: बहुत सुंदर है। इसी गीत की एक लाइन जो कितनी अच्छी लग रही है, भेजी, जो नहीं मिल सका उसको भुला ही देना, वो था ही नहीं। शायद ये प्रेशर को भी डील करने का, और जिंदगी को बड़ा हल्का फुल्का नहीं, और अपने आप को सफल भी मान लेना, ये मान लेना भी बड़ा अच्छा कि नहीं भाई, जितना जिया वो भाई अच्छा जिया, कोई पछतावा नहीं, फिक्र में उड़ाया वो जो जो चीज भूली बिसरी बातें हटा ही लेना, बढ़िया।
1: भैया जी, अब म्यूजिकल ब्रेक का समय हो रहा है, आइए सुनते हैं गीत।

0: आपको मैडम का साथ इतना मिला क्योंकि आपको तो टाइम थोड़ा कम मिलता रहा होगा बच्चों के पालन पोषण में। कभी कहा सुनी हुई कि आप टाइम कम देते हैं?
1: हाँ, ये तो बोला ही गया, लेकिन ये है कि बैकग्राउंड में वो भी समझती हैं,
0: जी
1: जॉब का प्रेशर समझती हैं, लेकिन ये तो अब पत्नी है तो बोलेंगी, लेकिन उनका साथ बहुत मिला, उन्होंने बहुत मदद की।
0: जी
1: और एक्सीडेंट में हम लोग जाते हैं, 3-3 दिन बाहर रहते हैं, तो कभी कोई बीच में नहीं परेशान करना या कि ये कमी हो गई वो कमी, अपने से मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, बच्चों का ध्यान रखना, तो साथ मिला।
0: ये जो रिश्ते की गहराई है, अभी हम वर्तमान सिनेरियो को देखें तो लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि पहले जो रिश्ते की गहराई होती थी अब वो नहीं है, तो आपको कारण क्या लगता है?
1: इसका कारण एक तो जो हमारी एक न्यूक्लियर फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है, मेनली वही है। पहले क्या होता था, जैसे हम भी जॉइंट फैमिली में रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम कोई गलती करते थे तो हमारे पिताजी तो नहीं, हमारे चाचा अगर आँख खोल देते थे तो हम लोग एक कोने में खड़े हो जाते थे। उस वजह से क्या था कि रिस्पेक्ट बहुत थी। अब वो अलग रहने से क्या हो गया है कि न्यूक्लियर फैमिली में सब अपने अपने में वो हो गए हैं। और दूसरा, अब हम लोग थोड़े ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं अपने बच्चों के लिए, पेरेंटल केयर ज़्यादा हो गई है, जो एक्चुअली बच्चों के विकास में बाधक है, उनको छोड़ देना चाहिए, कुछ चीज़ें डिसीजन उनको अपने से लेने देने चाहिए, क्योंकि आपको सरवाइव करने के लिए उनको छोड़ना पड़ेगा।
0: लेकिन वो जो एक डर होता है माता पिता का, वो शायद केयर इसीलिए करते हैं कि भाई कुछ हो ना जाए। मैंने भी देखा है कि मेरे माता पिता एकदम रफ एंड टफ, करोगी तो अच्छा तुम्हारा, नहीं करोगी तो तुम्हारा, मतलब इससे उनका कोई सबका नहीं।
1: नहीं, उसका कारण भी ये न्यूक्लियर फैमिली है, क्योंकि अब आपके लिए
0: हाँ
1: केवल बच्चा और वो है, पहले
0: जी
1: इतने लोग रहते थे तो उनको मालूम था पेरेंट्स को कि हम नहीं देख रहे, मेरा भाई देख रहा है, मेरे पिताजी बाबा देख रहे हैं, उसके कोई ना कोई देख रहा है, तो सब इसी तरह सोचते थे, तो लड़का भी थोड़ा फ्री रहता था, कभी किसी दिक्कत हुई तो किसी से भी बोल दिया। अब केवल पिताजी और बेटे हैं, माँ हैं, बेटे हैं, तो अब क्या होता है, जैसे पहले स्कूल में जब हम लोग को मार पड़ती थी तो हम लोग बताते नहीं थे घर पे,
0: क्यों नहीं बताते थे?
1: सही मारा हमको, गलती की, टीचर क्यों मारेगा फालतू में, सही मारा उसने मेरे को क्योंकि मैंने गलती की। अब घर में बोलेंगे तो कहीं गलती की होगी, मार खाए होगी, तो इसलिए हम घर में नहीं बताते
0: नहीं
1: थे,
0: तो और मार पड़ेगी।
1: और मार पड़ेगी, घर से पड़ेगी।
0: अच्छा, ये जो अभी आप कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा पेरेंटल केयर है, उससे क्या हिम्मत भी कम होती है? और हिम्मत एक ऐसा गुण या भाव है कि जो अचानक से अपने ऊंचाई पर नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है बच्चे के
1: देखिए,
0: अंदर।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, एक्स्ट्रा केयर जो है हमेशा हार्मफुल है। बच्चा भी एक उम्र के बाद आपसे इरिटेट होने लगता है, कहता है कि मेरे को बच्चा ही समझ रखा है अभी तक, इसलिए हमको एक उम्र के बाद उसको कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंट करने देनी चाहिए, जाने देना चाहिए, उसको मार्केट जाना चाहिए उसको। मेरी
0: जी
1: बेटी है वो 12th तक इतनी केयर की, मतलब अब मैं भी उसका जिम्मेदार हूँ, तो कि वो सड़क क्रॉस नहीं कर पाती थी आफ्टर 12th, तो उसके बाद मैंने उसको अगेंस्ट द सर्कमस्टांसेस मैंने उसको ज़बरदस्ती हॉस्टल में रखा, तो हॉस्टल में 1 साल के बाद जब वो आई तो एकदम चेंज थी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, सब कुछ अपने से करना, कोई वो नहीं। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब तक आप छोड़ोगे नहीं उसके कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, और 1 साल के बाद अब तो एकदम परफेक्ट हो गई है दुनिया में रहने के लिए।
0: मतलब हर माता पिता यही चाहते हैं
1: सही बात है,
0: भेजीरे कि सब कुछ बढ़िया हो, बच्चे अच्छा करें, तभी देश अच्छा करता है,
1: बिल्कुल।
0: समाज अच्छा करता है।
2: आनंद भूषण जी, अब समय हो गया है एक म्यूजिकल ब्रेक का, तो इस बार आप कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं?
1: एक गाना है सिकंदरे आजम का, जहां डाल डाल पे
2: सोने की
0: चिड़िया
2: चिड़िया
0: करती है
2: चली बसे,
0: बसेरा, वो
2: वो
0: भारत
2: भारत देश
0: देश है मेरा।
2: मेरा।
0: जी
2: तो श्रोताओं आइए सुनते हैं गीत।
3: जहां डाल

0: तो श्रोताओं, अब समय समाप्त हो रहा है, लेकिन हम चलते चलते बस एक मिनट में आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहें,
1: जी
0: जो बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मेरी दो तीन ही बातें हैं। सबसे पहले तो आप अपने पेरेंट्स का आदर करिए, उनकी बात मानिए, और कभी भी वो आपका बुरा नहीं चाहते। आप उनको फॉलो करेंगे तो हमेशा सफल रहेंगे। दूसरा, जो भी काम करिए ईमानदारी से करिए और मन लगा के करिए। ईमानदारी से काम करने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको सफल ना बनाए। और तीसरा, मैं यही कहूँगा, आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं उस लाइन को आप डिसाइड जल्दी कर लें तो अच्छा है। 10th के बाद कर लें तो अच्छा है, अगर 8th के बाद करते हैं तो बहुत अच्छा है। और उस लाइन को फिर अगर सोच लिया तो उसको पाना है, ईमानदारी से काम करना।
1: बहुत सुंदर है कि डिसीजन लेना सीखें आप,
2: बिल्कुल,
1: वो डिले नहीं करें।
2: डिले नहीं करना,
1: आप जितना डिले
2: डिले इज
1: करेंगे
2: ऑलवेज
1: तैयारी
2: रॉन्ग।
1: उतनी डिले होगी, है ना?
0: सही बात है, क्योंकि लक्ष्य का निर्धारण ही पहला स्टेप है। तो आनंद भूषण जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, हमारे श्रोतागण जरूर लाभान्वित होंगे इससे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और हम कहते हैं
2: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रयागराज के प्रधान महाप्रबंधक आनंद भूषण सरन से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत की तीसरी कड़ी।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए लोकगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं विष्णु राजा का गाया एक पचरा।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

नमस्कार श्रोताओं, आज का हमारा ये खास कार्यक्रम समर्पित है भारतीय संगीत के एक ऐसे महारथी को जिन्होंने अपनी सुरीली धुनों से हर दिल में एक खास जगह बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर संगीतकार उत्तम सिंह की। फिल्म दिल तो पागल है के रोमांस से लेकर फिल्म गदर के देशभक्ति और लोक संगीत के रंगों तक उत्तम सिंह जी की रचनाओं में गहराई, ताजगी और भारतीय मिट्टी की खुशबू साफ झलकती है।

श्रोताओं, प्यार का अपना एक अलग ही संगीत होता है, और जब 90 के दशक में रोमांस को एक नया सुर मिला तो उसके पीछे उत्तम सिंह जी का जादू ही था। फिल्म दिल तो पागल है के संगीत ने केवल चार्ट बस्टर्स नहीं दिए बल्कि पूरे भारत को झूमने पर मजबूर कर दिया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का वो खूबसूरत गीत जो आज भी हर आशिक की जुबां पर है।

श्रोताओं, उत्तम सिंह जी सिर्फ वेस्टर्न और पॉप बीच तक सीमित नहीं रहे। जब बात आई देश की मिट्टी, भावना और अटूट प्यार की, तो उन्होंने ऐसा संगीत रचा जिसने इतिहास रच दिया। फिल्म गदर एक प्रेम कथा का संगीत हर भारतीय के दिल से जुड़ा है। चलिए सुनते हैं वो नगमा जो प्यार और दर्द की अनकही कहानी कहता है।

श्रोताओं, उत्तम सिंह जी ने लंबे समय तक बतौर वॉयलिन वादक और अरेंजर काम किया। फिर जब वो मुख्य संगीतकार बने तो उन्होंने साबित किया कि प्रतिभा कभी छुपती नहीं है। फिल्म दुश्मन का चिट्ठी ना कोई संदेश आज भी जब बजता है तो आंखें नम हो जाती हैं। संगीत की यही तो ताकत है, जो शब्द ना कह पाए वो सुर कह देते हैं।

श्रोताओं, आज एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप संगीतकार उत्तम सिंह की फिल्मों के गीत सुन रहे थे। और इसी के साथ वंदना श्रीवास्तव को कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस।
1: हेलो हेलो, सो हैप्पी टू हैव यू ट्यून्ड इन। वेलकम टू अनदर फन राइड विद यूथ एक्सप्रेस। गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेल, टेक्निकली मॉर्निंग का ये लास्ट फेज चल रहा है, बट ऑनेस्टली 11:30 इज स्टिल मॉर्निंग वाइब्स। ओके, सो वॉट एवर योर मूड, वॉट एवर योर वाइब, ट्रस्ट मी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। लेट्स मेक दीज नेक्स्ट फ्यू मोमेंट काउंट। आई एम योर फ्रेंड सेजल एंड यू आर ट्यून्ड टू FM 100.3 MHz। वेलकम टू यूथ एक्सप्रेस। वैसे एक चीज़ नोटिस की आपने, आजकल हमारी लाइफ में वेट वर्ड थोड़ा रेयर्स हो गया है, तो क्यों ना आपको वेट कराते हैं एक सॉन्ग के साथ।

सो आफ्टर दिस सॉन्ग वेलकम टू यूथ एक्सप्रेस. वैसे हम बात कर रहे थे वीट वर्ड की. आपकी लाइफ में आजकल वीट वर्ड थोड़ा रेयर सा हो गया है ना? और कभी कभी तो कुछ ऑर्डर किया नहीं कि ट्रैकिंग स्टार्ट. वेयर इज माई ऑर्डर? कहीं जाना है तो कैबिन मिनट्स, कुछ देखना है स्ट्रीमिंग इंस्टेंटली, किसी से भाई बात करनी है तो मैसेज. और फिर मन में एक ही थॉट आता है, रिप्लाई अभी तक क्यों नहीं आया. और कोई चीज़ लोड होने में थोड़ा टाइम ले ले तो कहते हैं ना कि नेटवर्क को क्या हो गया. मतलब लिटरली लाइफ हैज़ बिकम अ टैप क्लिक एंड गेट इट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. और ऑनेस्टली ये कन्वीनियंट भी है, टाइम भी बचता है, एफर्ट्स भी कम होते हैं. लेकिन कभी कभी एक इंटरेस्टिंग थॉट ये आता है ना, क्या हम इंस्टेंट चीज़ों के इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि अब थोड़ा सा वेट भी हमें इरिटेटिंग सा लगने लगता है. क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस भी इसी स्पीड से चलने लगी है कि अगर अभी नहीं मिली है तो कुछ प्रॉब्लम है. और ये सिर्फ शॉपिंग या डिलीवरी की बात नहीं है, चाहे रिप्लाईज हो, हमारे रिजल्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, और इवन इन्फॉर्मेशन में भी रिस्पॉन्स हमें जल्दी चाहिए होता है. और अपना ज़रा रिवाइंड करते हैं आज से काफ़ी साल पहले, जब ना स्मार्टफोन थे, ना इंस्टेंट मैसेजिंग, ना ही फूड डिलीवरी ऐप्स थे. और किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बुक्स, टीचर्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करना पड़ता था. लेकिन आज हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए. फ्रेंड्स, वी वॉन्ट एवरी थिंग एंड वी वॉन्ट इट राइट नाउ. और इसी राइट नाउ वाली दुनिया के बारे में आज यूथ एक्सप्रेस में हम थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं. तो अब एक क्वेश्चन है आपसे, हैव यू एवर नोटिस्ड

हाउ मच ऑफ आवर लाइफ हैपेंस इंस्टेंटली नाउ. आज की दुनिया में स्पीड सिर्फ कन्वीनियंस नहीं रही, स्पीड हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल. और इसी को हम कह सकते हैं ना, द कल्चर ऑफ इंस्टेंट एवरीथिंग. लेकिन इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? आसान भाषा में समझें तो जब हम किसी चीज़ को क्विकली, इमिडिएटली या विद मिनिमम वेटिंग पाने के लिए इतने यूज टू हो जाते हैं ना, तो हमें डीले जो है ना वो थोड़ा अनयूजुअल सा लगने लगता है. एंड दैट्स वेयर इंस्टेंट कल्चर कम्स इन. और ये कल्चर सिर्फ एक ऐप हो या टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं बना, इसके पीछे है हमारे स्मार्टफोन, हाई स्पीड इंटरनेट, ऑन डिमांड सर्विसेज, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन शॉपिंग एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. और ये सब मिलकर हमारी एक्सपेक्टेशंस को रीशेप कर रहे हैं. आज भाई इंफॉर्मेशन चाहिए सर्च, एंटरटेनमेंट चाहिए स्ट्रीम, शॉपिंग करनी है ऑनलाइन. मतलब एक्सेस की स्पीड इनक्रेडिबल हो गई है. और ऑनेस्टली इसके बहुत पॉजिटिव साइड्स भी हैं. जैसे टेक्नोलॉजी ने टाइम किया है, एसेसिबिलिटी भी इम्प्रूव की है, इन्फॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज किया है और डेली टास्क को काफ़ी कन्वीनियंट बनाया. लेकिन जब चीज़ें फास्ट होती हैं तो क्या हम भी ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाते हैं? और यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है. क्योंकि फ्रेंड्स, इंस्टेंट कल्चर सिर्फ ये नहीं बदलता कि हमें चीज़ें कितनी जल्दी मिलती हैं, इट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस हाउ क्विकली वी एक्सपेक्ट थिंग्स टू हैपन. सो चलिए एक छोटा सा रियलिटी चेक करते हैं. सपोज आप किसी वेबसाइट पर हो और पेज लोड होने में 10 सेकेंड्स लग रहे हैं. हाँ, 10 सेकेंड्स. टेक्निकली 10 सेकेंड्स कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट हम यार इतना टाइम क्यों लग रहा है? और यही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का. इसका मतलब सिंपल है कि हमें रिवॉर्ड्स हो या रिजल्ट अभी चाहिए, बाद में नहीं. और आज मॉडर्न टाइम में इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स इजीली मिल जाते हैं. हमारी डेली लाइफ के रूटीन्स में भी ये हमें देखने को मिलता है कि हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए. तो फ्रेंड्स, इंस्टेंट एक्सपीरियंस कोई हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि कोई किसी भी चीज़ का अगर एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है, लेकिन इतना हार्मफुल नहीं है. लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी किसी अननेसेसरी वेट को रिमूव कर रही है तो इट्स मीन्स दैट्स प्रोग्रेस. लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम तो तब है जब वेटिंग इटसेल्फ बिकम्स अनकम्फर्टेबल, यानी जब हमसे इंतज़ार ही नहीं होता है किसी चीज़ का. तो भाई, क्योंकि कुछ चीज़ें नेचुरली भी तो टाइम लेती हैं. अब ले लीजिए, लर्निंग टेक्स टाइम. कुछ चीज़ें सीखनी है तो उसके लिए हमें टाइम तो देना पड़ेगा, वो इंस्टेंट नहीं हो सकता. स्किल डेवलप होने में भी थोड़ा सा समय तो लगता है. और अगर हमें कोई चीज़ प्रॉपरली सीखनी है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, तो उसके लिए भी तो थोड़ा पेशेंस चाहिए. तो क्वेश्चन ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी गुड है या बैड, क्वेश्चन ये है कि टेक्नोलॉजी ने हमारी हर चीज़ फास्ट ज़रूर कर दिया, लेकिन हर फास्ट चीज़ को मतलब बेटर होना भी तो ज़रूरी नहीं है ना. हर स्लो चीज़ का मतलब आउटडेटेड भी नहीं है. तो टेक्नोलॉजी को विलेन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम है कि जब कन्वीनियंस हमारी हैबिट बन जाए तो पेशेंस वीकनेस हो जाती है. और इंस्टेंट कल्चर को अगर सिंपली गुड या बैड बोलना भी थोड़ा सा फेयर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन है कि व्हेन डस कन्वीनियंस बिकम एक्सपेक्टेशन. जब फास्ट सर्विस मिलती रहेगी तो हम भी तो फास्ट सर्विस ही एक्सपेक्ट करेंगे, और जब इन्फॉर्मेशन हमें तुरंत मिल जाए तो हम इंस्टेंट आंसर भी तो एक्सपेक्ट करते हैं. और इंटरटेनमेंट ऑलवेज अवेलेबल है तो बोर्डम भी टॉलरेट नहीं होता है. और फिर बोर्डम अगर बोर होते हैं तो फिर वो बोर होना भी थोड़ा डिफिकल्ट से लगने लगता है ना. और यही धीरे धीरे हमारी लाइफ जो है वो नॉर्मल से चेंज होने लगती है. और शायद इसीलिए इंस्टेंट कल्चर को समझने के लिए हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी को नहीं, अपनी डेली रूटीन्स को भी देखना होगा. हम क्या चूज़ करते हैं, कितनी जल्दी किसी से मूव ऑन करते हैं, और कितनी देर किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं. एंड दीज लिटिल थिंग्स टेल्स अस अ लॉट. वैसे भी इंस्टेंट वाली दुनिया में तो सब कुछ फास्ट हो सकता है, लेकिन एक अच्छे म्यूजिक के लिए तो हम थोड़ा सा रुक ही सकते हैं ना. तो चलिए सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक.

वेलकम टू यूथ एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, अब बात सिर्फ ये नहीं कि हम इंस्टेंट कल्चर में जी रहे हैं, इंटरेस्टिंग ये है कि क्या हम इस कल्चर को थोड़ा बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यस। सबसे पहले, हर चीज़ का इंस्टेंट आंसर ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी किसी मैसेज का रिप्लाई थोड़ा लेट आए, किसी रिजल्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़े, या स्किल को सीखने में टाइम लगे, तो उसे फेलियर मत समझना। एक सिंपल सा रूल ट्राई कर सकते हैं, अब पॉज बिफोर यू रश। कुछ भी इंस्टेंटली चेक करने का मानो तो बस कुछ मिनट्स का पॉज ले लेना। हर नोटिफिकेशन को इमीडिएटली चेक करने की नीड नहीं है। फ्री मिनट को स्क्रीन से फिल करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड देन सेकेंड पॉइंट इज कि प्रोसेस को एंजॉय करना सीखिए, बिकॉज अचीवमेंट का कोई तो कोई स्क्रीनशॉट नहीं होता, वो एक सेकेंड में नहीं मिल जाता है, लेकिन हमें उस तक पहुंचने की जर्नी हमें एक्चुअल स्टोरी से रूबरू कराती है। एंड थर्ड इज, थोड़ा स्लो टाइम इंटेंशनली क्रिएट करो। कभी फ़ोन साइड में रखकर म्यूज़िक सुनो, तो कभी बिना मल्टीटास्किंग के काम कंप्लीट करो, और कभी किसी चीज़ को बस इसलिए करो क्योंकि उसे करने में मज़ा आता है और उसका रिजल्ट तुरंत मिलना ज़रूरी नहीं है। एंड

इम्पॉर्टेंट कि टेक्नोलॉजी को अपनी स्पीड डिसाइड मत करने दो. टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करने के लिए है, हम टेक्नोलॉजी के पीस पर कॉन्स्टेंटली रन करने के लिए नहीं. तो डियर लिसनर्स, इंस्टेंट कल्चर को कम्प्लीटली रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बैलेंस बनाना है. कन्वीनियंस भी रहे, पेशेंस भी, स्पीड भी रहे, प्रेजेंस भी. और अब इतनी सीरियस बातों के बीच अब तो मूड रिफ्रेशमेंट भी बनता है. वैसे इस जर्नी को, वैसे आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है yovvnialt@gmail.com. सो अपने वॉल्यूम को बढ़ाइए और इन्जॉय कीजिए सॉन्ग.

तो आज की इस जर्नी में हमने एक चीज तो समझ ली ना कि इंस्टेंट होना बैड थिंग नहीं है, बट हर चीज को इंस्टेंट एक्सपेक्ट करना मे भी थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो सकता है। टेक्नोलॉजी हमें स्पीड दे सकती है, शॉर्टकट्स दे सकती है, बट पेशेंस वो तो डाउनलोड ही नहीं होता है। तो दोस्तों वो स्लोली स्लोली आता है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई रिप्लाई लेट आए, कोई रिजल्ट थोड़ा टाइम ले, या लाइफ आपके अकॉर्डिंग लोडिंग दिखाए, तो पैनिक मत करिएगा। बस सिंपल करना है और कहना है रिलैक्स ब्रो, बफरिंग भी लाइफ का एक पार्ट है। क्योंकि लाइफ कोई वन क्लिक डिलीवरी नहीं है कि कुछ मोमेंट्स को टाइम लगता है, कुछ ड्रीम्स को पेशेंस चाहिए और कुछ आंसर्स को भाई थोड़ा सा वेट तो करना पड़ता है। एंड मे बी दैट्स वॉट मेक्स देम वर्थ इट। तो स्पीड को इंजॉय करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में जो चीज़ें एक्चुअल में हमें इंजॉय करनी चाहिए ना, उसे हम भूल जाते हैं। क्योंकि हर चीज़ हमें इंस्टेंट मिल जाती है, घर में फूड डिलीवर हो जाता है, कैब मिनट्स में आ जाती है, तो फिर हम वो जो एक्चुअल जर्नी है ना उसको हम रिमाइंड ही नहीं करते। तो कभी अगर इंस्टेंट में ये चीज़ें हों तो इंस्टेंट ठीक है, लेकिन उसे एक बार बैठ करके ना सोचिए।

पूछा ज़रूर कि आपने आज दिन भर किया क्या, लेकिन अपनी पेस, अपनी लाइफ का पेस ना खुद डिसाइड करना चाहिए। स्क्रॉल भी करो लेकिन थोड़ा सा रुकना भी चाहिए, फास्ट भी चलना ठीक है पर ज़रूरत पड़े तो कभी स्लो भी हो जाना चाहिए। इंस्टेंट भी इंजॉय करना चाहिए लेकिन वेटिंग को भी हमें विलन नहीं बनाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाइफ का बेस्ट पार्ट राइट नाउ नहीं होता, कभी कभी राइट टाइम होता है। और भाई हमारे यूथ एक्सप्रेस में हम एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। 23 अगस्त, होप यू रिमाइंड इट, नहीं है तो मैं बताती हूँ कि 23 अगस्त एक ऐसी डेट है जो इंडियन स्पेस हिस्ट्री का में फॉरएवर स्पेशल हो गई है। इसी दिन चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोलर रीजन के पास सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और दोस्तों ये सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट का मून पर पहुंचना नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि अगर क्यूरियोसिटी को करेज मिल जाए तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। और इसी अचीवमेंट की याद में 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और एंड दैट्स वेयर वी ब्रिंग आर टुडेज यूथ एक्सप्रेस टू आर क्लोज। लेकिन जाने से पहले आपको एक गाना और सुनवाती हूँ

0: तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम तो हम बात कर रहे थे इंस्टेंट कल्चर की, यानी कि जब हमें कोई भी चीज़ चाहिए ना तो वो चीज़ इंस्टेंटली चाहिए, और ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन चुकी है कि अभी चाहिए, राइट नाउ, और एक क्लिक में चाहे शॉपिंग हो, चाहे फूड हो, एनीथिंग। तो हमारी दुनिया भी डेफिनेटली थोड़ी सी फास्टर हो गई है, लेकिन शायद इस स्पीड में हमने एक चीज़ थोड़ी पीछे छोड़ दी, द आर्ट ऑफ वेटिंग। हर लेट रिप्लाई का मतलब इग्नोरेंस नहीं होता है, हर स्लो प्रोग्रेस मीन्स फेलियर नहीं होता है, हर ड्रीम के लिए भी रिजल्ट हमें तुरंत नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें इंस्टेंट होती हैं और कुछ चीज़ें ब्यूटीफुल भी होती हैं, क्योंकि इट टेक्स टाइम। तो अगली बार जब लाइफ थोड़ी स्लो लगे ना तो उसे स्किप मत करिएगा, शायद वही स्लो मोमेंट आपको वो सिखा रहा हो जो इंस्टेंट नोटिफिकेशन भी कभी नहीं सिखा सकता, है ना। तो कीप द कन्वीनियंस बट कीप द टेक्नोलॉजी, एंड डू नॉट लूज योर पेशेंस, क्योंकि चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो लाइफ का, वो तभी अच्छी लगती है जब हम उसकी जर्नी को इंजॉय कर पाते हैं। मानती हूँ कि हम अपने लेक्चर्स जो होते हैं ना वो 2x स्पीड पर देखते हैं, लेकिन लाइफ का ये रूल नहीं है भाई, हमें उसको 1x पर ही फील करना होगा, तभी हम लाइफ को इंजॉय कर पाएंगे। और बेसिकली हमें लाइफ को इंजॉय करना है, चाहे वो किसी भी फेज में हो, चाहे वो हमारे स्कूल टाइम हो, चाहे वो कॉलेज टाइम हो, या घर बैठे हो। तो हमें इंस्टेंट कॉफ़ी भी की तरह, जैसे इंस्टेंट कॉफ़ी हमें मिल जाती है ना, तो उस तरीके की सक्सेस नहीं होती है। मैसेज इंस्टेंट हो सकते हैं बट हमारा कनेक्शन नहीं, और इंस्टेंट रिजल्ट भी नहीं हो सकता। तो इसी थॉट के साथ मैं आई होप यू एंजॉय टुडेज शो, तो मैं सेजल लेती हूँ आपसे इजाज़त। वी विल मीट अगेन विद अनदर एपिसोड, सो कीप स्माइलिंग, कीप डूइंग योर थिंग्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डू नॉट Let the rush of life makes you forget to enjoy the little moments. Till then, take care. Bye-bye.
1: अभी युवा श्रोता यूथ एक्सप्रेस प्रोग्राम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने को है, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और

पाकिस्तान से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615, जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। शाकिरा खान सूचित करती हैं कि श्रीमती अवतारी देवी दिनांक 11 जुलाई सन 2026 से लापता हैं। अवतारी देवी की आयु लगभग 65 वर्ष, कद 5 फीट है। वो सफेद रंग की साड़ी पहने हुए हैं। श्रीमती अवतारी देवी के मिलने की सूचना कृपया इस पते पर दें। शाकिरा खान पत्नी अब्दुल लतीफ निवासी ग्राम मिर्जापुर चौहारी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़। पता एक बार फिर सुन लीजिए। शाकिरा खान पत्नी अब्दुल लतीफ ग्राम मिर्जापुर चौहारी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़। एक और खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। विजय यादव सूचित करते हैं कि आर्यन यादव दिनांक 17 जुलाई सन 2026 से लापता हैं। आर्यन यादव की आयु लगभग 16 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग सांवला और चेहरा गोल है। आर्यन यादव के मिलने की सूचना कृपया इस पते पर दें। श्रीमती अमरावती देवी पति विजय यादव निवासी ग्राम मगई कपूरवा ढिंगवास थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़। मोबाइल नंबर है 8960684032। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8960684032। अभी आप खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुन रहे थे।

आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए रामशंकर का ख्याल गायन। प्रस्तुत है राग शुद्ध सारंग में ख्याल। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्रवण कुमार भट्ट।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप रामशंकर से राग शुद्ध सारंग में ख्याल सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्रवण कुमार भट्ट। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है प्रोग्राम हेलो फरमाइश। पेश कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: संगम नगरी प्रयागराज मेवी कला बंटुगरा से पवन निषाद बोल रहे हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार पवन जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आदमी खिलौना।
0: आदमी खिलौना है फिल्म का, कौन सा गाना है?
1: यही टाइटल सॉन्ग।
0: टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो ठीक है पवन जी, आपकी इस पसंद को हम सुनवाने जा रहे हैं।
1: समय में हम गंगा गंगा समल भदोही जा रहे हैं नाव लेके।
0: अच्छा अच्छा, नाव लेके भदोही की तरफ जा रहे हैं, तो कितना समय लग जाता है भदोही में जाने में?
1: दो दिन।
0: दो दिन लग जाते हैं?
1: हाँ हाँ, दो दिन।
0: तो धीरे धीरे नाव खेते हुए आप चले जाते हैं?
1: जी मैम।
0: तो रात होने पर आपको नहीं लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आँख लग जाए?
1: कोई दिक्कत नहीं,
0: आराम से निकल जाते हैं।
1: हाँ हाँ, आराम से।
0: तो आप अकेले जा रहे हैं कि आपके संग और लोग भी हैं?
1: एक हमारा भांजा है।
0: अच्छा अच्छा, तो मतलब आधे समय वो देखेंगे नाव और आधे समय आप?
1: हाँ हाँ जी।
0: चलिए तो अब हम आपको
1: वही
0: मैंने इसीलिए पूछा आपसे कि गंगा में बहाव तो तेज है इस समय।
1: हाँ जी मैम, बहुत तेज है।
0: तो आपको थोड़ा सा लगता नहीं है कि भैया गंगा मैया जो है जरा कृपा बनाए रखें अपनी, रात को अभी सफर रहता है?
1: हाँ हाँ, गंगा मैया हम लोग की कृपा में ऐसे बना, कोई दिक्कत नहीं गंगा लोग के।
0: चलिए ठीक है, तो अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: परम माननीय मधु दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से आपको करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे
1: दीदी। आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है बंधन
0: जी,
1: और इसका शीर्षक गीत आप बहुत ही प्यारा सुंदर लगता है। आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि शीर्षक गीत सुना दीजिए बंधन पिक्चर का।
0: तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है बंधन।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
0: मध्य प्रदेश से हारून जी ने हमें कॉल की है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। तो हारून जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है आशिक शहंशाह।
0: जी, गाने के बोल बताइए।
1: पूछा भी चला देना, कुमार सानू का गाया हुआ गीत।
0: अच्छा, कुमार शानू का आपको गीत सुना है, आज के शहंशाह फिल्म है, लेकिन बोल नहीं आपको याद है। तो चलिए हम आपको सुनवा देते हैं ये।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश। और मैं हूँ मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
1: मैडम नमस्ते, मैं नगरी प्रयागराज हवेलिया झूसी से महेंद्रनाथ कुशवाहा बोल रहा हूँ।
0: जी नमस्कार महेंद्र जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम है राम और श्याम, गाने के बोल हैं, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, कल तेरी महफिल से दीवाना चला जाए।
0: मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये गाना है, महेंद्र जी सुनना चाहते हैं।
1: हाँ मैडम, नाम भी थोड़ा ले लें।
0: हाँ ले लीजिए।
1: शुभम कुशवाहा, शिवम कुशवाहा, सत्यम कुशवाहा, दीपिका कुशवाहा, रिया मौर्या और सुनीता कुशवाहा।
0: तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: इस दुनिया में अगर रेडियो न होता है तो चैन सुकून किस अदाओं से होता है। राजेंद्र कुमार नाम है इनका। प्यार से लोग मुझे कहते हैं कि विविध भारती के श्रोता।
0: विविध भारती के श्रोता राजे

0: राजेंद्र जी ने कॉल की है, तो राजेंद्र जी को कौन सा गाना सुनना है?
1: सावन की महीना चल रहा मैम, तो इसी सावन पे ध्यान देते हुए आज के हमने अपनी फरमाइश भी फिल्म मिलन से लिया, जिस गीत के बोल हैं सावन का महीना पावन करे शोर, जियारा रिझूम ऐसे
0: जैसे बनवा नाचे मोर। तो आपकी पसंद का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, आइए सुनते हैं।

0: पवन करे शोर।
1: शोर।
0: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: अभी आप हेलो फरमाइश प्रोग्राम सुन रहे थे। पेश कर रही थी मधु कुमार।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। एक बजने को है, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्ष में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे उस फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया है, जिसमें 20,000 रुपए का नकद इनाम देने का दावा कर लोगों से उनकी निजी जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण फर्जी है। इसके जरिए लोगों को फंसाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनः समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी।

0: भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में है। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,538 जबकि निफ्टी 24,231 पर था। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अम्स्टरडैम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी The news read by Valsa Williams. India and Brazil have signed a memorandum of understanding to deepen cooperation in telecommunications and information and communication technologies ICTs on the sidelines of the BRICS ICT track meeting. Union Minister Sindhia said in a post that the MOU would deepen bilateral collaboration on universal connectivity, cybersecurity, digital public infrastructure, emerging technologies, capacity building and exchange of best practices. He called the agreement a strong step forward in bolstering India-Brazil collaboration for a secure and inclusive digital future. The MOU was signed on the sidelines of the 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune by Union Minister of Communications Jyotiraditya Sindhia and Mr. Frederico de Siqueira Filho, Minister of Communications, Brazil. The 12th BRICS Communications Ministers meeting chaired by Union Communications Minister Jyotiraditya Sindhia is underway in Pune. It brings together communications ministers and senior representatives from BRICS member countries to deliberate on strengthening cooperation in information and communication technologies, digital transformation, innovation and resilient digital infrastructure. The theme of the meeting is Innovate, Cooperate and Transform for a Resilient Future. The event provides a platform for BRICS member countries to exchange views on emerging technologies, digital public infrastructure, future networks, cybersecurity, capacity building, and inclusive digital connectivity. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has underlined India's commitment to deepening economic partnership with Singapore and expanding business partnerships across Asia with greater emphasis on business-to-business collaboration. Addressing the non-profit business school INSEAD alumni and students, Singaporean entrepreneurs and Indian businesses at the India-Singapore Business Forum, the minister highlighted India's strong growth trajectory, investment opportunities and the government's efforts under the leadership of Prime Minister Narendra Modi to enhance the ease of doing business. The Union Minister further joined Finance Minister Nirmala Sitharaman, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Minister of State for Commerce and Industry Jitin Prasada in engaging with their Singaporean counterparts at the 4th India-Singapore

0: अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जापान और हिंदुस्तान के तलबा से मुलाकात की और बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की रूहानी सियाहत का मरकज है। उन्होंने अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और सारनाथ की सकाफती अहमियत का जिक्र किया। वज़ीर आला ने इसे दो रवायात की मुलाकात करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि ये दौरा दोनों ममालिक के वर्क कल्चर और जिंदगी के फलसफे के बारे में जानने का मौका फराहम करता है।
1: यह केवल छात्रों का मीट नहीं, यह दो संस्कृतियों का, दो परंपराओं का और दो देशों के युवा पीढ़ियों की मुलाकात भी है। और जो अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उन संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के फ्यूचर एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर वहाँ की युवा पीढ़ी बैठी हुई है और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं।
0: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल महकमे समाजी बहबूद के कामों और मंसूबों का जायजा लिया। जायजे के दौरान उन्होंने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के काम को आसानी से चलाने के लिए जरूरी रहनुमा खतूत फराहम किए हैं। उन्होंने कहा कि कवायद का वाज़ह सेट तैयार करने, खाली तदरीसी ओहदों का इंतखाब के अमल को आगे बढ़ाने और एक सोसाइटी के क्याम के लिए जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से महरूम तलबा के लिए दरख्वास्त पोर्टल को फौरी तौर पर खोला जाए और स्कॉलरशिप के फंड 2 अक्टूबर तक मुंतकिल किए जाएं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लखनऊ में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की उपस्थिति में विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराते हुए यथाशीघ्र उन्हें पेंशन से लाभान्वित कराया जाए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने, साथ ही योजना की पहुँच और प्रभावशीलता को और बढ़ाने पर जोर दिया। योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 163 केंद्रों के से संचालित है। समाचार कच्छ से ओम अवस्थी।
0: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ महकमे पेशावराना तालीम, हुनरमंदी की तरक्की और सनअतकारी के एक्शन प्लान का जायजा लेते हुए ITI को ज्यादा से ज्यादा सनअतों से मुंसलिक करने पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत दी कि निसाब और तरबियत को सनअत की जरूरियात की बुनियाद पर तैयार किया जाए, साथ ही अप्रेंटिसशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग

0: दोपहर की इस खिलखिलाती धूप में एक छांव सुरम में चुराते हैं, दौड़ती भागती इस जिंदगी को जरा ठहरना सिखाते हैं। घड़ी की सुइयां गवाह है कि दिन का आधा सफर हुआ पूरा। आइए बची हुई इस कारवां को बातों और सुरों से सजाते हैं। सची तो है, वक्त के इस चक्र को देखिए। सुबह की वो तेज रफ्तार आपाधापी और दौड़ भाग अब थककर शांत हो चुकी है। सूरज आसमान के बीचों बीच तशरीफ रखकर मानो पूरी कायनात को एक पल के लिए ठहरने का पैगाम दे रहा है। यह दिन का वो पहर है जहां कुदरत भी एक गहरी और ठंडी सांस लेती है।
1: जब घड़ी की सुइयां बजाती हैं दिन के सवा एक, तो सिर्फ वक्त नहीं बदलता बल्कि हमारे आसपास का पूरा माहौल बदल जाता है। पेड़ों की पत्तियां खामोश हो जाती हैं और हवाओं में एक मध्यम सा संगीत घुल जाता है और हमारे भीतर का शोर भी धीरे धीरे एक शांत नदी की तरह बहने लगता है।
0: सच कहूं संगीता, तो दोपहर का ये जो समय है बड़ा अनोखा होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि दोपहर आलस से भरी होती है, सुस्ती से भरी होती है या थका देने वाली होती है, लेकिन भाई हमारा मानना है कि दोपहर तो वो कोरी और साफ स्लेट है जिस पर हम और आप मिलकर अपनी यादों की सुंदर स्याही

0: आने वाले कल की फिक्र दोनों ही शांत होकर इस वक्त को और अधिक गहरा और आत्मीय बना देता है। यानी दोपहर हमसे यह कह रही है कि बहुत दौड़ लिए, अब जरा थक कर
1: खुद को सुनिए। और इसी खूबसूरत खामोशी को, इसी सुहाने ठहराव को अनमोल बनाने के लिए, वक्त के इस अनमोल पन्ने पर सुरों और बातों की नई इबारत लिखने के लिए हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो हमसफर निकहत,
0: और मैं संगीता। स्वीकार के लिए हमारा नमस्कार। तो आज इस कार्यक्रम में जायका सेगमेंट में के अंतर्गत हम पारंपरिक मिठाइयों की बात करेंगे और निखार सेगमेंट में बात करेंगे चिपचिपी त्वचा के लिए घरेलू उपाय।
1: और जो खास सेगमेंट भी है संगीता, उसके बारे में बता दो,
0: वो है शब्द बातें और गीत।
1: हाँ, तो इसमें हम बात करेंगे उस मौसम की जिसके आने से हवाओं में एक खनक और बादलों में रूहानी सी कशिश छा जाती है।
0: ये महीना उस जज्बात को आवाज देता है जो कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में खामोश पड़े थे। ये मौसम है हम
1: झूमने का, मुस्कुराने का और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का।
0: जी हाँ।
1: आज हमारे इस खास सेगमेंट यानी शब्द बातें और गीत में बात होगी खूबसूरत मौसम सावन की। जी हाँ, सावन के इस मौसम में जब अचानक से बादल काले हो जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है और रिमझिम फुहारे शुरू हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने हमारी जिंदगी के बैकग्राउंड में कोई सुपरहिट फिल्मी गाना बजा दिया हो। सावन का ये मौसम किसी सिनेमा से कम नहीं है, जहाँ हर बूंद एक नया सीन लिखती है और हर ठंडी हवा का झोंका एक नया डायलॉग बन जाता है। इस मौसम में पैर अपने आप थिरकने लगते हैं और गुनगुनाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होती है।
0: बिल्कुल।
1: और जब फिजाओं में ऐसा सुरीला जादू बिखरा हो संगीता, तो रेडियो की दुनिया भी संगीत और शब्दों के नए रंग समेटने के लिए तैयार हो जाती है। ये मौसम सिर्फ छाता खोलने का नहीं बल्कि दिल के दरवाजे खोलने का है। तो आइए कार्यक्रम रूपी इस कैनवास पर बिखेरते हैं सबसे पहले इस खूबसूरत गीत के रंग का जादू।

0: रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। पता है
1: हम्म,
0: संगीता,
1: हाँ
0: इस
1: हाँ
0: खूबसूरत गीत को मैं सुन रही थी ना, तो मेरे मन में भी कुछ लाइनें सुलग रही हैं। अगर तुम
1: ओहो
0: कहो तो सुनाओ।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सुनाइए शाद।
0: भाई सुनो।
1: हाँ
0: लो सावन आया है बूंदों पर है खुमार, लो सावन आया है बूंदों पर है खुमार, बागों में मेले हैं फूलों के ठेले
1: क्या
0: हैं,
1: बात है।
0: झूलों के मौसम में साथी अलबेले हैं,
1: हम्म,
0: कलियों पर है उभार, भंवरा भी चहक रहा है, ऋतुएं जो झांक रही, मौसम को जो आंक रही, धरती की चूनर पर गोटे वो टाक रही, कोयलिया टेर रही, बादलों को हेर रही, विरहन की आंखों को आशाएं घेर रही, लो सावन आया है बूंदों पर है खुमार, लो सावन आया है बूंदों पर है खुमार। कैसी लगी भाई ये
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत
0: लाइनें? तो
1: निखर।
0: बस यही कहूंगी संगीता इस पंक्तियों के बाद कि सावन सिर्फ एक मौसम नहीं है, एक एहसास है, कुदरत की मोहब्बत का इकरार है। जब तपती हुई धरती को सांत्वना देने खुद आसमान बरस पड़ता है, पत्तों पर थिरकती बूंदें, हवा में घुली वो ठंडी सी खनक, भुजूलों की कहानी, मेहंदी की खुशबू, त्योहारों की बहार, यानी सावन अपने साथ ढेरों सौगातें लेकर आता है।
1: हाँ
0: पेड़ों की डालियों पर झूलती उम्मीदें, मिट्टी से उठती सोंधी खुशबू और मन के किसी कोने में बजती पायल की झनकार, यही तो है सावन का असल व्याकरण, है ना?
1: बिल्कुल निखत। और सावन एक ऐसा मौसम है जिसमें हमारी संस्कृति घुल मिली होती है, और इस मौसम में हम जहाँ भी नज़र उठाकर देखें तो प्रकृति साफ सुथरी, धुली निखरी नज़र आती है। जगह जगह बिखरे पानी, नदी और तालाबों में भरा हुआ पानी, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अपने अल्हड़पन की कहानी
0: कहानी
1: सुना
0: सुना
1: रहे
0: रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही
1: हों।
0: कह रही हो। और देखो हरियाली की चादर जब प्रकृति ओढ़ती है तो ये जो दृश्य होता है कितना मनोरम होता है ना। सूखी शाखें हरी पत्तियों से सज जाती हैं, खेतों में नई जान आ जाती है, बादलों की ओर से छनती धूप, हल्की फुहार, चिड़ियों का चहचहाना, ये सारी चीजें मिलकर ऐसा माहौल बना देती हैं कि हर कोई बस इसमें डूब जाना चाहता है। और संगीता सच तो ये है कि जीवन उत्सव बन जाता है इन दिनों। काले बादलों को साल भर बाद धरती से मिलते हुए जब देखते हैं तो ऐसे नजारों को देखकर जो गायक होते हैं उनके सुर रस घोलने लगते हैं, चित्रकारों की कूची रंगों से खेलने को मचल उठती है, कवि की नई रचना जन्म लेती है और कलाकारों की नृत्य भंगिमाएं थिरकने को मजबूर कर देती हैं।
1: बिल्कुल। और वैसे मिट्टी की खुशबू और सावन का रिश्ता बहुत ही सदियों पुराना है।
0: बिल्कुल
1: जब बारिश की पानी, बारिश का जो बूंद होता है ना,
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: जमीन पर गिरता है तो सिर्फ मिट्टी ही नहीं महकती बल्कि इंसान का आजाद बचपन भी महक उठता है। वो स्कूल की छुट्टी की उम्मीद, छत पर दौड़ते हुए वो छोटे छोटे कदम और माँ की वो डांट कि सर्दी लग जाएगी।
0: बिल्कुल
1: कितना हसीन था वो वक्त। और सच तो ये है कि जब पहली बूंद धरती पर गिरती है तो सिर्फ मिट्टी ही नहीं भीगती बल्कि हमारे भीतर के वो जो कोने होते हैं ना, वो भी भीग जाते हैं जिन्हें हम सालों छुपा कर रखते हैं।
0: बिल्कुल। और संगीता बचपन की वो कश्तियां याद है, कागज की जो नाव होती थी, किस तरह से हम पानी में बहाते थे
1: बनाते
0: और ये सोचते थे कि भाई ये जो है ये सात समंदर पार चली जाएगी।
1: वही तो
0: ऐसा ही
1: बचपन होता
0: सोचते
1: है
0: थे
1: ना।
0: ना। और देखो दोस्त का हाथ और स्कूल में ना जाने की जो मासूम सी उम्मीद होती है ना, होती थी। सच सावन कोई मौसम नहीं है, ये एक बुलावा है अपने आप से मिलने का, किसी पुरानी बात को याद करने का। और देखो जो पुरानी बात को याद करने की बात मैं कह रही हूँ ना, तो एक बात भी हमें जरूर याद आती है कि जब जब भी हम सावन आता है तो हमें पीहर की याद जरूर आती
1: बिल्कुल।
0: है ना। पेड़ों पर अमराई के जो पेड़ों पर झूले में पींगे भरना और सखियों के साथ चहलकदमी करना, हंसी ठिठोली करना, जैसे गुनगुनी धूप की तरह हमारे मन को बहला जाती हैं। तो
1: बिल्कुल
0: झूलों की भाई ये कहानी की जो बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये।

0: तो इस खूबसूरत से गीत से पहले संगीता मैंने कहा था ना कि भाई झूलों की जो कहानी है उसकी भी बात होगी,
1: तो भी सावन की जो बात हो रही थी, और झूले की बात ना हो निकह तो ऐसा तो हो ही
0: नहीं सकता बिल्कुल।
1: तो जब हम सावन और झूले की बात करते हैं तो हमारा जो ध्यान है सीधा पहुंच जाता है वहां जहां इस परंपरा की नींव रखी गई थी,
0: यानी ब्रिज की पावन भूमि पर, है ना।
1: बिल्कुल।

0: कुल ऐसा कहा जाता है निकहत कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को सावन में झूला झुलाया था और तब से यही परंपरा चली आ रही है। और ये भी कहा जाता है कि जो लोग सावन के महीने में झूला झूलते हैं उनकी जो मनोकामनाएं होती है ना वो गीतों के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुंचती है और जो उनकी मनोकामना होती है वो पूरी भी होती है।
1: लेकिन संगीता, झूलों का जो ये रूप है सिर्फ भगवान तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी मर्यादा, हमारी त्योहार, चाहे वो हरियाली तीज हो या कजरी हो, इन त्योहारों का एक अटूट हिस्सा बन गया है। झूला सिर्फ एक लकड़ी का पटरा नहीं है बल्कि यह धरती को आसमान से जोड़ने वाला एक अदृश्य पुल है। झूला सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रतीक है।
0: और आगे हमने जो ब्रज की झूले की बात कर रहे हैं, झूले की बात कर रहे हैं, तो जो ब्रज का झूला होता है ना उसको कैसे भूल सकते हैं।
1: और देखो, ब्रज के झूले की बात जो अभी कुछ देर पहले हमने की और उसे आगे पढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान का रुख करते हैं, तो सावन आते ही यहाँ का जो नज़ारा है बिल्कुल बदल जाता है। नीम, आम और बरगद के पेड़ों पर मोटे रस्से लटकाए जाते हैं जिन पर लकड़ी का जो पटरा है वो सिला जाता है। और जो देखो, जब झूलों की हम लोग बात करते हैं तो भाई वो कैसे भूल सकते हैं इस बात को कि जो हमारी नव विवाहित बेटियां हैं, बहनें हैं, अपने मायके लौटती हैं।
0: बिल्कुल,
1: पूरे साल ससुराल की जिम्मेदारियों से बंधी बेटियां जब अपने मायके आकर झूले पर बैठती हैं तो मानो उनके पर निकल आते हैं। क्यों?
0: बिल्कुल। और देखिए, जब झूले की बात हो रही है तो हम
1: उत्तर प्रदेश और बिहार की भी
0: बात करें,
1: कजरी के बिना जो सावन का झूला है वो बेचैन है।
0: बिल्कुल, जब हम झूला झूलते हैं ना, पता है नानी का, जब मैं छोटी थी तो हम लोग गांव जाते थे तो वहां पर झूला डलता था, जो आम का पेड़ था या जामुन का पेड़ है, किसी पे भी हम लोग झूला डालते थे तो कजरी हम गाते थे। और वो जो कजरी होती थी ना, जो महिलाएं होती थी वो सब मिलके इकट्ठा गाती थी और वो जो माहौल होता था ना बहुत ही बढ़िया होता था।
1: और
0: लोगों के जो चेहरे थे ना वो खिल उठते थे, इतनी ऊंचे ऊंचे पेंग हम मारते थे, मतलब हम तो छोटे थे, हमारे जो वहाँ की जो महिलाएं थी वो इतनी ऊंची ऊंची पेंग मारती थी, थोड़ा डर तो लगता था लेकिन हम फिर भी उस झूले पे बैठते थे और उस गाने को सुनते थे और सावन का आनंद उठाते थे।
1: तो जो तुम पेंगे की बात कर रही हो, तो हवा को चीरते हुए और जब वो जो पेंगे हैं आसमान की तरफ जाती हैं तो उसके साथ जो सखियां हैं, जैसे हम लोग भी बात कर रहे थे ना कि जो नवविवाहित बेटियां या बहनें जो अपने मायके आती हैं और जब वो झूले पे बैठती हैं तो उनके पंख निकल आते हैं, तो आसमान की तरफ जब उनकी जाती हैं सखियों की जो खिलखिलाहट है और कजरी के जो सुर है वो भी ऊंचे हो जाते हैं। लेकिन संगीता, वक्त का पहिया घूमा और हम गाँव के उन बड़े बड़े आंगनों से निकलकर शहरों के छोटे छोटे जो फ्लैट्स हैं उन पर आकर सिमट गए हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज कंक्रीट की जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ना वो आम के पेड़ बचे हैं और ना ही वो बरगद की मजबूत डालियां।
0: मैं तो यही कहूंगी कि सावन और झूला सिर्फ एक मौसम या वस्तु नहीं होता है, बल्कि ये हमारी जो आत्मा है,
1: हमारे जो लोक संगीत है, हमारे रिश्तों और हमारे इतिहास का ताना बाना है।
0: बिल्कुल, और ये जीवन की जो फिलॉसफी भी होती है ना,
1: कि जब जीवन में जब भी आप पीछे की ओर जाएं, जैसे झूले की जो पेंगे हैं वो पीछे जाती हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि वो पीछे जाना आपको एक बहुत बड़ी छलांग लगाकर आगे ले जाने की तैयारी होता है।
0: क्योंकि जब देखिए, जब इससे अगर हम डर जाते हैं तो हम उससे आगे की ओर बढ़ भी नहीं पाते हैं और झूला जो होता है ना उस पर हम कभी बैठ भी नहीं पाते हैं। तो भाई देखिए, जो सावन का जो झूला है ना उस पर बैठना तो हम सभी का सपना होता है कि भाई सावन में हम अपनी सखियों के साथ झूला झूलें और उस पेंग को भी बढ़ाएं।
1: तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई इस सावन में दिलों की कड़वाहट को भुलाकर प्रेम के झूले में बैठिए, खुशियां बांटिए। और संगीता, सावन में हम झूले की जो बात कर रहे हैं तो एक बार फिर से मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं।
0: हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए।
1: सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार, उस गली पर जो फैली है आसमान के पार,
0: क्या बात है,
1: उस रस्सी पर कोई ना जिसका पारावार, एक पेंगे से मंगल ग्रह के द्वार और दूसरे से एकदम अंतरिक्ष के पार। और झूलों की बात हो रही है तो ये गीत ना सुना जाए तो कार्यक्रम अधूरा सा लगेगा।
0: बिल्कुल, तो सुनते हैं।

0: तो आया सावन झूम के संगीता, बहुत ही खूबसूरत सा गीत तुमने सुनवाया। और
1: हम्म।
0: सावन जो है झूमकर तो कई दिनों पहले आ चुका है। और जो झूलों की बात तुम कह रही थी ना कि सावन में झूले तुम झूलती थी,
1: हाँ
0: तो अब देखो झूला की बाहर नीचे उतरो, क्योंकि आगे भी तो हमें बात करनी है अपने श्रोताओं
1: बिल्कुल
0: से।
1: बिल्कुल भाई,
0: हाँ
1: उतर आई हूँ मैं झूले से।
0: तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। और देखो जो सावन है वो प्रकृति का उत्सव है, खुशियों का सैलाब है, और इस उत्सव का सबसे खूबसूरत लिबास है हरा रंग, है ना। जब आसमान से बरसती बूंदें सूखी धरती को सराबोर करती हैं, तो चारों तरफ हरियाली की एक मखमली चादर बिछ जाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद का श्रृंगार किया हो। और इसी प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारी परंपराएं भी हरे रंग में रंग जाती हैं। सावन में हरी चूड़ियां और हरे रंग के जो कपड़े पहनने का पीछे भी कुछ खूबसूरत राज छिपे हुए हैं। तो श्रोताओं, इस राज से पर्दा हटाएंगी मेरी साथी संगीता।
1: निकहत सावन के महीने का सीधा संबंध देवाधिदेव महादेव से है। भगवान शिव को प्रकृति के सबसे करीब माना जाता है। शिव आदि हैं, अनंत हैं और प्रकृति का साक्षात रूप है। वो जंगलों, पहाड़ों और खुली नदियों के अधिपति हैं। सावन के आते ही प्रकृति हरी भरी हो जाती है और ये हरा रंग सृजन, नवजीवन और खुशहाली का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को प्रकृति का एक
0: ये जो रूप है,
1: जो रूप है ना, वो
0: हाँ,
1: बहुत ही
0: बहुत
1: पसंद है।
0: पसंद था।
1: और यही वजह है कि जो भक्त हैं इस महीने में हरे रंग के कपड़े पहनकर और प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और महादेव को प्रसन्न करते हैं।
0: और भाई चूड़ियों की अगर बात करें तो सावन के महीने में महिलाओं के हाथों में हरी चूड़ियां खनकने लगती हैं। भारतीय संस्कृति में हरा रंग सौभाग्य समृद्धि का सूचक है। ऐसा माना जाता है कि सावन में हरी चूड़ियां पहनने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और पति पत्नी का जो रिश्ता है प्रकृति की तरह ही हमेशा हरा भरा रहता है। और चूड़ियों की ये खनक न सिर्फ हमारे घर आंगन को गुंजायमान करती है, बल्कि ये त्योहारों की उमंग को भी दोगुना कर देती है। कजरी, तीज और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों में इन हरी चूड़ियों की जो चमक है और बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल निकाह था, लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं ना, उसके पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यताएं ही नहीं है, बल्कि गहरा विज्ञान भी छिपा है। और जो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हरा रंग सीधे तौर पर हमारी आंखों और मस्तिष्क को ठंडक पहुंचाता है। यानी भीषण गर्मी और उमस के बाद जब सावन की रिमझिम फुहारें पड़ती हैं, तो हरे रंग को देखना और उसे धारण करना मानसिक तनाव को दूर करता है। और यहाँ रंग जो होता है ना, ये जो रंग होता है
0: हरा रंग, वो
1: हाँ,
0: सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता
1: हाँ,
0: है
1: और हमारे मूड को जो है वो खुशनुमा बनाता है। और आयुर्वेद का भी ये मानना है कि इस मौसम में हरा रंग के जो संपर्क में जब हम आते हैं, तो वात, पित्त और कफ का जो संतुलन होता है ना, वो बना रहता है। और
0: तो श्रोताओं, सावन का ये जो महीना है हमें सिखाता है कि हम प्रकृति से जुड़ें, उसके रंगों को अपने जीवन में शामिल करें। जब आप हरी परिधान पहनती हैं, हाथों में हरी चूड़ियां खनकती हैं, तो आप प्रकृति के इस उत्सव का हिस्सा बन जाती हैं। तो इस सावन खुद को हरियाली के रंग में रंग लीजिए, क्योंकि ये रंग हमें याद दिलाता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हर पतझड़ के बाद एक नया सावन आता है जो उम्मीदों की नई कोपलें लेकर आता है। तो संगीता, फिलहाल हम अपने श्रोताओं के लिए एक और सावन का गीत लेकर आए हैं, तो क्यों ना उसको हम सुने और अपने श्रोताओं को भी सुनवाएं।
1: बिल्कुल।

0: कुछ कहता।
1: तो भाई सावन कुछ
0: कुछ
1: कहता
0: कहता
1: है,
0: है
1: वाकई में बहुत कुछ सावन कहता है। और
0: कहता है क्या कि इस मौसम में पड़ते हैं कई सारे त्योहार।
1: त्योहार है। लेकिन देखिए, अभी हम लोग शब्द बातें गीत के अंतर्गत जो सावन की बातें कह रहे थे, सावन का लुत्फ उठा रहे थे अपने बातों के जरिए, अपने गीतों के जरिए। और अब इस सेगमेंट से हम आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, वो है जायका। तो देखो संगीता, दोपहर का समय है और इस वक्त क्या होता है कि लंच के बाद खाने का मन होता है कुछ मीठा।

0: तो दिन बन जाता है।
1: बिल्कुल
0: तो देखो, सावन के महीने में हमारे घरों में बनने वाले पकवानों का स्वाद ही अलग होता है। इस मौसम में जब डाइनिंग टेबल पर शुद्ध देसी घी से महकता हुआ जालीदार घेवर हो, तो फिर गर्मा गर्म मालपुए रसमलाई के साथ परोसे जाते हैं, तो दोपहर की सारी जो थकान है वो गायब हो जाती है। हमारे देश की इन पारंपरिक मिठाइयों में जो अपनापन है वो किसी और चीज़ में कहाँ है। तो आज दोपहर के बाद खाना खाने के बाद परिवार के साथ बैठकर किसी पारंपरिक मिठाई का लुत्फ उठाइए। तो संगीता भाई, पारंपरिक मिठाई का लुत्फ उठाने के लिए जरूरी है कि कुछ रेसिपी हम उनको बता दें।
1: बिल्कुल बताएं। तो भाई, हम अपनी सखियों के लिए आज लाए हैं रेसिपी मिठाइयों की। तो आज बता रहे हैं अपनी सखियों को नारियल के लड्डू।
0: अच्छा,
1: तो भाई सबसे पहले इसी को बताते हैं, है ना। कई रेसिपी है लेकिन सबसे पहले इसी की शुरुआत करते हैं।
0: तो हाँ, मीठे से।
1: हाँ, मीठे से। मीठा ही मीठा है मेरे पास। हाँ,
0: क्योंकि बात ही हम कर रहे हैं पारंपरिक मिठाइयों की, तो जाहिर सी बात है आज हमारे सेगमेंट में मीठे की बात होगी।
1: तो सबसे पहले है, आपको सामग्री नोट करें। तो 2 कप कद्दू कस किया हुआ नारियल लेना है, 1 कप दूध, आधा से 3/4 कप चीनी, 3 इलायची कूटी हुई और कुछ कटे हुए बादाम पिस्ता आपको लेना है।
0: मतलब बहुत थोड़ी सी सामग्री की,
1: बहुत थोड़ी सी सामग्री में बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है ये।
0: चलिए ठीक है, नारियल के लड्डू बनाने के लिए इन सारी सामग्री को हमने इकट्ठा कर लिया। अब इसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे।
1: तो
0: कैसे बनाती हूं बताओ।
1: इसको सबसे पहले कढ़ाई में नारियल और दूध डालकर चीनी धीमी आंच पर इसको पकाएं। जब दूध थोड़ा कम हो जाए तो चीनी डालें और लगातार चलाते रहें। जब मिश्रण गाढ़ा होने लगे तो इलायची और मेवे डाल दें और गैस बंद करके मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें। और जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो हाथ से छोटी छोटे लोई बनाएं, घी लगाने उसमें छोटी छोटी लोई बनाएं। हाँ, लड्डू बनाकर इसको तैयार करें। बस ये तैयार है आपके लिए लड्डू।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी भाई। मतलब जितनी थोड़ी सी सामग्री थी संगीता, उतनी ही जल्दी ये झटपट बन भी जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: आज मैं घर जाकर ये रेसिपी जरूर ट्राई करने वाली हूँ। तो
1: और
0: इस मीठे के बाद, इस मीठे के सफर पर हम आगे बढ़ते हैं। और अगली जो मिठाई है वो क्या बता रही हो तुम?
1: वो है रसमलाई।
0: अरे वाह।
1: तो इसके लिए आप सामग्री लीजिए। पनीर आपको लेना है 250 ग्राम, दूध 1 लीटर और चीनी स्वाद अनुसार। अगर आपको
0: मतलब
1: मीठा पसंद है,
0: कुछ चाहिए ज्यादा या कम, कुछ ज्यादा मीठा पसंद करते हैं कुछ कम।
1: और इलायची लेना है, केसर और थोड़े से बादाम पिस्ता लेना है।
0: इसकी भी सामग्री बहुत थोड़ी सी है,
1: बहुत थोड़ी थोड़ी सामग्री है।
0: जो तुमने भी बताया नारियल के लड्डू, उसकी भी सामग्री बहुत थोड़ी सी थी और झटपट बनके तैयार भी हो गया।
1: हाँ।
0: और अब जो तुम रसमलाई की रेसिपी बताने जा रही हो, इसमें भी सामग्री बहुत थोड़ी सी है, क्या ये भी उतनी ही जल्दी झटपट बनकर तैयार होने वाला
1: बिल्कुल,
0: है?
1: बिल्कुल, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाला है।
0: दो?
1: तो सबसे पहले पनीर को अच्छी तरह से मसल कर नरम करें और उसमें छोटे छोटे गोल आकार बनाकर हल्का चपटा कर लें। इन्हें चीनी की हल्की चाशनी में कुछ देर के लिए पकाएं ताकि ये नरम हो जाए। दूसरी ओर दूध को धीमी आंच पर इसको पकाकर थोड़ा गाढ़ा करें। इसमें चीनी, इलायची और केसर डालें। अब चीनी में पनीर की गोलियों को निकाल लें। जो चीनी में जो डाला हुआ था गोलियां, उनको निकाल कर हल्के से दबाएं और इन्हें गाढ़े दूध में डाल दें। ऊपर से बादाम पिस्ता डालकर कुछ देर ठंडा करें। अब ये खाने खिलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और पता है निकहत, भाई बहन के रिश्ते की तरह रस मलाई भी बाहर से सादगी और अंदर से भरपूर मिठास लिए होती है।
0: क्या बात है। तो संगीता, जो तुमने बताई नारियल के लड्डू और रस मलाई की रेसिपी, तो मैं तो अपने श्रोताओं से कहूंगी कि भाई इतनी जल्दी बनने वाली जो ये रेसिपी है, इसको इस बार आप त्योहार के मौसम में जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएंगे।
1: और देखिए भाई निकहत, हम बात कर रहे हैं सावन की, और इस मौसम में वातावरण में मौजूद हवा में जो नमी होती है ना, वो अक्सर त्वचा को चिपचिपा कर देती है।
0: तो
1: नतीजतन स्किन के जो पोर्स होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं।
0: हाँ।
1: जिससे चेहरे पर भारीपन लगना, ब्लैकहेड्स और मुहासों का बढ़ना जैसी परेशानियां झेलनी पड़ती है। ऐसे में अगर आप बाजार से महंगे स्किन प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना चाहते, तो घर पर ही चेहरे की रौनक फिर से लौट सकती है। तो
0: इसके लिए कुछ घरेलू टिप्स हम देते हैं। देखो, बाजार में तो बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट्स मिलते हैं लेकिन उसमें इतने केमिकल होते हैं संगीता, कि अगर हम उसको अप्लाई करें अपने फेस पर तो बहुत सारे नुकसान भी उसके होते हैं। तो इससे बहुत अच्छा है कि हम कुछ घरेलू जो टिप्स है, जो कुछ घरेलू चीजें हैं, उनको हम ट्राई करें घर पर ही।
1: बिल्कुल करना चाहिए। तो इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं फेस पैक, चंदन और कच्चे दूध का फेस पैक है ये, बताती हूँ। तो सखियों, चंदन जहाँ त्वचा को ठंडक देने के साथ ही स्किन से ऑयल हटाने में मदद करती है, वही दूध त्वचा को मुलायम बनाए रखने में के लिए भी स्किन टोनर इवन रखने में मदद करता है। इसे बनाने और लगाने का तरीका है, एक छोटी सी कटोरी में चंदन पाउडर लें, उसमें कच्चा दूध और गुलाब जल डालकर गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लें। इसे चेहरे पर अप्लाई करने के

0: बाद 10 से 15 मिनट तक इसको लगा रहने दें और जब सूख जाए तो हाथों में हल्का सा पानी लें और हल्का हल्का उसको दबाते हुए मसाज करें। इसके बाद सादे पानी से अपनी त्वचा को धुल लें और धुलने के बाद इसको मॉइस्चराइज ज़रूर करें।
1: और कुछ और तुम बता रही थी संगीता?
0: हाँ
1: तो देखो भाई, अब अगली जो बातें हैं हमारी अगले कार्यक्रम में करेंगे और घड़ी की सुई इशारा कर रही है अब इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम दें। लेकिन जाने से पहले हम अपने श्रोताओं को बता देंगे अपना ईमेल आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर, ताकि आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेज सकें। तो नोट कीजिए, हमारा ईमेल आईडी जो है grihlakshmibalsangh123@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो इन नंबर्स पर हमें रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार। और संगीता भाई, अब तो हमारे श्रोताओं के साथ बिताए इन खूबसूरत पलों को यहीं पर समेटने का वक्त हो गया है, तो अगली मुलाकात के वादे के साथ अपने लिसनर्स से हम लेते हैं इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: are flowing above the danger mark. The weather department has issued a heavy rain alert for 16 districts including Niwari, Tikamgarh and Chhatarpur today. These areas may receive 4 to 8 inches of rain in the next 24 hours. Rainfall is likely to gradually move towards central and western Madhya Pradesh over the next 2 to 3 days. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
1: In badminton, India's Teresa Jolly and Gayatri Gopichand have stormed into the women's double semi-finals of the BWF World Championships in New Delhi. The Indian duo displayed remarkable grit and fighting spirit, coming from a game down to overcome fourth seeds Chia Yi Fan and Tang Shu Xian of China, 16-21, 21-15, 21-13. In hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in their opening match of the second pool phase of the FIH World Cup in Amstelveen, the Netherlands, today. The match is scheduled to begin at 9:30 p.m. Indian Standard Time. Under the new format, the top two teams from Pool E will qualify for the semi-finals. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones for several projects of 189 crore rupees at headquarters of Sashastra Seema Bal in Siliguri. India and Brazil sign MOU on sidelines of BRICS ICT meeting in Pune to advance digital innovation and cooperation in emerging technologies. Supreme Court reduces 3-year legal practice to 1 year for entry-level judicial service examinations. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reiterates India's commitment to deepening economic partnership with Singapore, holds meeting with Trade and Industry Minister of Singapore. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
3: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
2: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

0: हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन, दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में

0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
2: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
3: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
1: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से यह फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
4: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष, दीपेंद्र कुमार।
1: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
5: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर

0: दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि यह धमकी अमरीकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
2: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमरीका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
3: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशू शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज

0: अम्स्टरडेम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
1: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममताबाई वर्मा का।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
1: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
2: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गाँव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
1: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा, बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए
2: जी।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग
2: जी।
1: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
2: बिल्कुल।
1: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
2: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं, ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
1: श्रोताओ, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
2: तो करते हैं शुरुआत कहानी की
1: जी।
2: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
1: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया
2: जी।
1: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
2: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता। और जब मुर्गी

0: या कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
1: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
0: जी,
1: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
0: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
1: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
0: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं, इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ, क्या बाज कभी उड़ पाया?
1: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुटकुट करता रहा।
0: जी,
1: पता है उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
0: जी,
1: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
0: जी,
1: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
0: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
1: श्रोताओं, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
0: जी,
1: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो।
0: जी,
1: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओं, होता ये है कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
0: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
1: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
0: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि एक कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
1: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी, श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
0: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
1: तो हम कहना चाहते हैं,
0: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए क्योंकि
1: आप हैं।
0: बिल्कुल,
1: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी। श्रोताओं, यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
0: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
1: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।

0: प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमकी क्यों?
1: वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
3: जी झुमरू जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
4: बंद रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
0: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
5: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
0: हाँ,
6: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
4: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
0: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
6: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: जैसे?
1: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
0: बताओ बताओ।
1: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
0: ठीक,
1: बताओ।
6: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
1: और
6: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
0: हाँ,
1: बहुत अच्छे।
0: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
6: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार
2: तालियां।
0: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
3: मेरे पास बहुत बड़ी पैसे।
0: अरे वाह।
1: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना? बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
3: जल।
0: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
1: आपने तो मेरी मन की बात कह दी।
0: तो,
1: चलिए
0: शुरू हो जाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए।
4: ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
0: हाँ हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चों, अब तुम्हारी बारी है।
6: जीवन सुखद

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
6: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
7: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस। 1875 में कस्बा मोहान, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हजरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशात पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबोरोज गुजारे, उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
8: कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, घरचे सामान शहर का था।

0: ना इफ्तारी का।
1: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे, उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
2: जी आदाब बजा लाता हूँ जनाब, मोहानी की खिदमत में।
3: अरे आप, आदाबर्ज, आइए आइए, तशरीफ रखिए।
2: जी जी, शुक्रिया शुक्रिया।
3: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
2: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
3: जी बस।
2: जी,
1: हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
3: जनाब बस जरा सी देर और, बस यूं समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
2: जी जी, आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं। ये थोड़ा सा अजीब है, लिख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं।
1: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
2: मोहानी साहब
3: जी,
2: ये पर्दे की ओट से निकालकर आप क्या खा लेते हैं, कुछ खादिम को भी आता हो।
3: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
2: क्या मतलब?
1: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
3: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
2: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
3: आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
2: या खुदा,
3: नौश फरमाइए मियां,
2: लाइए
3: खाइए।
4: हम मशकूर हैं उन तमाम शोरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
1: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शोरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
2: लिख दिया,
3: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाएं।
5: इरशाद इरशाद इरशाद ग्रामी।
3: है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी।
2: वाह क्या बात है, है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी।
3: वाह, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी।
2: एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत। क्या क्या
1: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
2: आजना, क्या खूब गजल कहते हैं आप।
6: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
2: आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, ये लिफाफा हमारी तरफ से।
3: जी नहीं नहीं नहीं,
6: मोहानी साहब ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
3: माफ कीजिए,

0: सफर का खर्च नहीं चाहिए। नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
1: क्या
0: जी? एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया। टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
1: अरे भाई साहब,
0: शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब। चंदा शार सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाए।
1: अभिमान साहब, लेकिन मान साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो थी।
0: नहीं नहीं, माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी। मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे?
2: मानी साहब, खामखा खर्च कैसा?
0: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
1: मानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
3: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला, जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
4: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
0: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया। बहुत बहुत
4: शुक्रिया। आपने कुछ खाया ही नहीं?
0: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही?
4: जी, बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
0: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
4: जी, और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
0: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
4: जी, शब्बा खैर।
0: शब्बा खैर।
4: बला की ठंड है,
0: लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए। अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
3: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
0: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का। बरसाना ओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगामे हयात जाविदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
3: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई

0: पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मुहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवार बाग में दफन है।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हसरत मोहानी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप NCERT का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुन रहे थे उमंग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में बच्चे सुने अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद।
1: क्या हाल है हमारी नन्ही दुनिया के प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों? तो तैयार हैं आज कुछ नया जानने और थोड़ी सी मस्ती करने के लिए हमारे साथ?
0: बिल्कुल तैयार हैं दीदी हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त, क्योंकि आज की हमारी पाठशाला में ना ब्लैक बोर्ड है, ना घंटी है और ना ही कोई डांटने वाला टीचर। लेकिन हाँ, आज हमारे साथ दो बहुत खास दोस्त जरूर हैं।
1: पहला दोस्त वो है जो हरा भरा है और हमारे आसपास खड़ा रहता है और हमें छांव देता है, और दूसरा दोस्त हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हमारे हर कदम के साथ रहता है।
0: अरे वाह दीदी, ये तो बड़ी रहस्यमयी बात हो गई। तो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और पहले मिलते हैं अपने हरे भरे दोस्त से, और वो दोस्त है पेड़।
1: पेड़। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि अगर हमारे आसपास एक भी पेड़ ना होता तो कैसा लगता? ना हरी पत्तियाँ, ना ठंडी हवा, ना छांव, ना ही पेड़ों पर चहचहाती चिड़िया होती, तो वातावरण कैसा लगता?
0: बहुत खराब लगता दीदी, क्योंकि पेड़ प्रकृति के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी पेड़ हमारे लिए हवा को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं।
1: और बच्चों, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस को अवशोषित करते हैं और कार्बन को अपने शरीर में संग्रहित करते हैं। इसी कारण पेड़ जल

0: वायु और पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और गर्मी में पेड़ के नीचे बैठना कितना अच्छा लगता है ना दीदी।
1: हाँ दीदी, क्योंकि देखिए पेड़ की छांव और पत्तियों से होने वाला जो वाष्पोत्सर्जन है उसके आसपास वातावरण को ठंडा रखने में मदद करता है। बच्चों, पेड़ इसलिए इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी जरूरी है।
0: हाँ दीदी, क्योंकि पक्षियों के घोंसले, गिलहरियों और उनके छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे जीवों के लिए पेड़ रहने और भोजन पाने की जगह होती है। और बच्चों, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को भी पकड़कर रखती है ना।
1: सही कहा दीदी, जड़ें मिट्टी को बांधने में मदद करती हैं और इस तरह मिट्टी के कटाव को कम करने में योगदान देती हैं। यानी पेड़ बारिश के पानी और मिट्टी के बीच भी एक तरह के रक्षक हैं।
0: बच्चों, पेड़ और वन वर्षा के पानी को रोकने, मिट्टी को में पानी के प्रवेश में मदद करने और जल चक्र प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बच्चों, पेड़ों से हमें फल, खाने की बहुत सारी चीज़ें, लकड़ी और कई दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं। और जिस कॉपी पेंसिल से आप लिखते हो ना, वो कॉपी पेंसिल भी आपको पेड़ से ही मिलती है, और बहुत सारे खिलौने भी।
1: हाँ दीदी, लेकिन बच्चों हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पेड़ हमारे लिए उपयोगी हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। पेड़ की टहनियों को बेवजह ना तोड़े, उन्हें समय समय पर पानी दें, पेड़ पौधों के आसपास कूड़ा ना डालें और पेड़ों की रक्षा करें।
0: और एक जरूरी बात बच्चों, वो ये कि सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं है बल्कि उनकी देखभाल भी करना है, बड़ा करना है उन्हें। क्योंकि पेड़ लगाने की जब आप शुरुआत करते हैं ना, तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी आपकी होती है।
1: बिल्कुल। और दीदी, जैसा कि आपने शुरू में कहा था ना कि हम आज अपने नन्हे दोस्तों को दो दोस्तों से मिलवाएंगे, तो एक दोस्त से तो हमने मिलवा दिया और वो है पेड़, और अब बारी है दूसरे दोस्त से मिलवाने का। तो नन्हे साथियों, पता है वो दूसरा दोस्त कौन है? वो एक छोटी सी नन्ही सी आपकी दोस्त हैं जो दिन में स्टूडियो आई थी, तो मैंने उनसे एक बातचीत रिकॉर्ड की है। तो दीदी, संगीता दीदी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको और अपने जो नन्हे साथी हैं उनको सुनवा दूँ। तो बलो बच्चों, चलिए सुनिए ये बातचीत। नन्हे साथियों, आज नन्ही दुनिया कार्यक्रम में मेरे साथ हैं, मेरे पास बैठी हुई हैं एक बहुत ही छोटी सी, प्यारी सी, क्यूट सी आपकी दोस्त। और आप सोच रहे होंगे कि भाई दीदी जल्दी से उनको इंट्रोड्यूस करें, उनको बताएं कि वो कौन है। तो ये मैं नहीं बताऊंगी, ये बताएंगी आपकी जो दोस्त मेरे बगल में बैठी हुई हैं। क्या नाम है आपका?
2: डोयल।
1: डोयल, वाह, डोयल तो एक प्यारी सी डॉल है। अच्छा डोयल, ये बताइए आप किस क्लास में पढ़ती हैं?
2: जूनियर केजी।
1: जूनियर केजी में। तो पढ़ाई करना आपको कैसा लगता है?
2: बहुत अच्छा।
1: बहुत अच्छा लगता है। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है?
2: हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स।
1: हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है।
2: हाँ।
1: तो ये बताइए, आप घर में आपको पढ़ाता कौन है? मम्मी पढ़ाती हैं, पापा, कौन पढ़ाता है?
2: मम्मी पापा
1: दोनों पढ़ाते हैं।
2: हाँ।
1: अच्छा, घर में कौन कौन है डोयल के?
2: मम्मी, पापा और मैं।
1: और ये बताइए, आप मम्मी को परेशान तो नहीं करती हैं कभी किसी बात के लिए?
2: नहीं,
1: कभी नहीं करती हैं। ये तो बहुत अच्छी बच्ची है डोयल। अच्छा डोयल, ये बताइए कि खाने में आपको क्या पसंद है?
2: पनीर की सब्जी, रोटी, दाल चावल।
1: पनीर की सब्जी, रोटी और दाल चावल। इसके अलावा आप ग्रीन वेजिटेबल खाना पसंद करती हैं?
2: हाँ।
1: कौन सी खाती हैं?
2: पालक।
1: पालक मतलब पनीर और पालक खाना डोयल को बहुत पसंद है। इसके अलावा डोयल को और क्या करना अच्छा लगता है?
2: खेलना।
1: खेलना अच्छा लगता है। अच्छा, आपकी फ्रेंड्स कितनी हैं?
2: 10।
1: 10 फ्रेंड्स हैं। उनके नाम बताएंगी?
2: नित्या, शिवांशी, साक्षिका, मालिका, देव, अभिराम, बस।
1: आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड कौन सी हैं? बेस्ट फ्रेंड कौन है?
2: नित्या, शिवांशी।
1: नित्या और शिवांशी आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं?
2: हाँ।
1: तो इनके साथ आप खेलती हैं?
2: Yes.
1: क्या खेलती हैं?
2: मिलो सिलो सालो।
1: इसके अलावा छुपन छुपाई खेलती हैं?
2: हाँ।
1: मजा आता है खेलने में?
2: हाँ।
1: तो आप अपनी फ्रेंड से लड़ती झगड़ती तो नहीं है?
2: नहीं
1: झगड़ती हैं, प्यार से बातें करती हैं, उनके साथ खेलती हैं।
2: हाँ।
1: और पता है नन्हे साथियों, अभी जब मैं डोयल से बात कर रही थी ना, तो धीरे से ये मुझसे कह रही थी कि दीदी बातें तो आपने की है और आगे भी आप करेंगी, लेकिन एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए। क्यों डोयल, तो कौन सा गाना सुनेंगी?
2: बम बम बोले।
1: बम बम बोले ये गाना सुनेंगी? तो गाना सुनना आपको अच्छा लगता है?
2: हाँ।
1: और गाना गाती भी हैं आप?

0: तो डोयल कैसा लगा ये गाना बम बम बोले?
1: अच्छा।
0: डोयल ये बताइए, आपको बम बम बोले इतना अच्छा सॉन्ग जो आपने कहा था वो तो हमने सुनवा दिया, अब आप क्या सुनाएंगी हमें?
1: एक कौवा प्यासा था।
0: सुनाइए।
1: एक कौवा प्यासा था, खरे में पानी थोड़ा था, कौवा ने डाला कंकर, पानी आ गया ऊपर, कौवा ने पी लिया पानी, खत्म हो गई कहानी।
0: अरे वाह, क्लैपिंग तो बनती है डोयल के लिए। पता है नन्हे साथियों, आपको भी डोयल की जो कहानी है कौवे वाली, ये भी जरूर पसंद आई होगी। इसके अलावा डोयल से हम कुछ और भी सुन लेते हैं। तो डोयल, आप कह रही थी ना कि आप गाना भी गाती हैं?
1: हाँ।
0: तो जल्दी से सुनाइए गाना भी।
1: जेम में हमारे दोहर भैया दुनिया को रखे थे भैया, सुख दुख को खोती पे तांगे, अरे पापा पुण्य चोटी से बांधे।

0: ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया।
1: अरे वाह भाई, हम तो ऐसे हैं भैया। डोयल के लिए तो मैं ही कहूंगी, आप तो बहुत अच्छी हैं भैया। और डोयल, आपको यहाँ पर आके कैसा लगा ये बताइए।
0: अच्छा
1: अच्छा लगा, तो आगे फिर कभी आप अपने दोस्तों से मिलने आएंगी,
0: हाँ,
1: प्रॉमिस? तो
0: प्रॉमिस।
1: भाई अब हम इस प्रॉमिस के साथ डोयल को कहते हैं टाटा बाय बाय, और मैं ज्वाइन करती हूँ फिर से संगीता दीदी को।
2: तो बच्चों अभी आपने सुना निगाहत दीदी से डोयल की बातचीत, तो
1: डोयल से निकह दीदी की बातचीत अभी
2: हाँ।
1: है ना, बच्चों को सुनवा रहे थे।
2: और अब बात करते हैं आओ जाने में घर्षण बल के बारे में।
1: हाँ।
2: तो जानती दीदी, ये एक ऐसा दोस्त है जो दिखाई नहीं देता लेकिन छोटा सा प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? तो चलिए अपना हाथ जो है मेज पर रखिए और उसे थोड़ा सा सरकाइए।
1: हाँ, तो दीदी, संगीता दीदी,
2: हाँ?
1: ये देखिए सरक तो रहा है,
2: हाँ?
1: लेकिन थोड़ा रुकावट महसूस हो रही है।
2: निकह दीदी, यही रुकावट तो हमें ले जाती है घर्षण बल तक।
1: अच्छा,
2: तो बच्चों घर्षण बल होता क्या है ये जानते हैं? पता है बच्चों, दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में होती हैं और उनकी

0: बीच सापेक्ष गति होती है या गति होने की कोशिश होती है, तब एक बल उस गति का विरोध करता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। यानी घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में काम करता है। बच्चों, सामान्यतया संपर्क में मौजूद दो सतहों की सापेक्ष गति या उसके प्रयास का विरोध करता है। इसी वजह से किसी वस्तु को सतह पर सरकाना आसान या मुश्किल होता है। और पता है निकाह दीदी, सोचिए जरा, अगर ये घर्षण बल ना होता तो क्या होता?
1: क्या होता?
0: तो हमारे लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाता।
1: अच्छा?
0: जब हम जमीन पर पैर रखते हैं तो पैर और जमीन के बीच घर्षण हमें पीछे की ओर फिसलने से बचाता है और आगे बढ़ने में मदद करता है।
1: अच्छा?
0: और पता है बच्चों, जो जूते पहनकर खिलाड़ी खेलते हैं, उन खेल के जूतों के तलवे भी अलग अलग डिजाइन के बनाए जाते हैं। उनके तलवे जमीन के साथ अच्छी तरह पकड़ बना लें, ऐसा बनाया जाता है। और दीदी पता है, जो आप बच्चे जो पेंसिल लिखते हैं ना, वो पेंसिल की नोक और कागज के बीच घर्षण के कारण लिखना संभव होता है।
1: अच्छा?
0: और रबड़ से लिखी हुई जो लिखी हुई चीजें होती है ना, वो रबड़ से मिटाने में भी घर्षण होता है। और रबड़ और कागज के बीच जो घर्षण होता है ना, वो ग्रेफाइट के कट होता है उससे।
1: अच्छा, और दीदी बातों ही बातों में हमें पता ही नहीं चला कि कब समय गुजर गया, और घड़ी पे नज़र पड़ी तो देखा कि बच्चों को टाटा बाय बाय करने का समय आ चुका है। तो अगले नन्ही दुनिया कार्यक्रम में हम बच्चों से फिर मिलेंगे और करेंगे ढेर सारी बातें और सुनवाएंगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे गीत, लेकिन ये होगा अगले नन्ही दुनिया कार्यक्रम में। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।

0: अभी नन्हे मुन्ने सुन रहे थे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
5: हमारा हिंदुस्तान जहान में सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां है अच्छे लोग, अच्छा सिस्टम और देशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए UP 112 की अच्छी सेवाएं।
4: पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा, साइबर क्राइम, महिला व बाल अपराध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें।
6: UP 112 की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम प्रतिक्रिया के लिए कॉल UP 112, नंबर 1, सेवाएं अनेक।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो प्रयागराज, कैसे हैं आप सब? 100.3 एफएम पर आपने ट्यून कर लिया है आपका यूथफुल एंड एनर्जेटिक प्रोग्राम युववाणी विद मी योर होस्ट आरजे साक्षी
1: एंड आरजे उन्नति के साथ. सो हाउ वाज योर डे टुडे? आई होप इट वाज फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट. और होना भी चाहिए, बिकॉज वी आर यूथ एंड यूथ इज दी अनदर नेम ऑफ एनर्जी.
0: तो दोस्तों, जब हम हर सुबह एक अलार्म से जागते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 86% यूथ प्रोफेशनल्स मॉर्निंग से नफरत करते हैं, मंडे मॉर्निंग से नफरत करते हैं. तो इसलिए आज के प्रोग्राम में हम लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट अनलॉक कर रहे हैं, दैट इज़ पैशन वर्सेस पेचेक.
1: जैसा कि किसी ने कहा है, चूज अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ. लेकिन क्या सिर्फ पैशन घर का रेंट और बिजली का बिल चुका सकता है? ये एक सवाल आपके लिए हमने छोड़ा है. लेकिन साक्षी, मेरे ओपिनियन में ना, कोई ऐसा काम जो हमें लंबे समय तक या लॉन्ग टर्म तक करना है, कोई ऐसा काम जो जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है, वो चीज़ हमारे इंटरेस्ट से भी जुड़ी रहनी चाहिए.
0: तो ये क्वेश्चन आपके लिए है. हम आपसे ब्रेक के बाद मिलेंगे, लेकिन उन्नति का यही कहना है और हम आगे प्रोग्राम में यही बात करेंगे कि आप करियर को ऐसे चूज़ करिए अपने जहाँ पर आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकें,
1: बिल्कुल,
0: और साथ में आपको पेमेंट भी अच्छी मिले.
1: बिल्कुल,
0: यानी दोनों चीज़ एक साथ मिले,
1: इनकम और पैशन का बैलेंस बना रहे.
0: बिल्कुल.

0: दोस्तों, हम बात कर रहे थे पैशन वर्सेस पेचेक पर। आपको बता दें कि डेलॉयट ग्लोबल जेंजी सर्वे का एक चौंकाने वाला डेटा कहता है कि इंडिया के लगभग 46% युवा गलत करियर चॉइस की वजह से स्ट्रेस में हैं। यानी मोटी सैलरी का पैकेज शुरुआत में बहुत कूल लगता है, पर अगर काम में इंटरेस्ट ना हो तो लाइफ में बहुत जल्दी करियर बर्नआउट आ सकता है।
1: बिल्कुल, लेकिन नैसकॉम की रीसेंट रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिना मार्केट डिमांड के सिर्फ पैशन के पीछे भागने से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। असली सीक्रेट और समझदारी इसी में है कि आप वो स्वीट स्पॉट ढूंढें जहां आपका टैलेंट और एक अच्छी इनकम दोनों आकर मिल जाए।
0: और अगर आप भी अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो प्लीज़ करियर को चुनने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, एक्सट्रीम पर मत जाइए। ना सिर्फ पैसों के पीछे भागिए और ना ही सिर्फ ख्याली पुलाव पकाइए। एक प्रैक्टिकल बैलेंस बनाइए। पहले अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स को पहचानिए, फिर देखिए कि मार्केट में किस फील्ड का स्कोप है और क्या आप उस काम को बिना बोर हुए कई साल तक कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। अब सवाल उठता है कि इस कन्फ्यूजन को दूर कैसे करें, यानी हाउ टू चूज द राइट करियर। सिंपल एंड सॉलिड फॉर्मूला है इसके लिए, जिसे दुनिया इकिगाई कॉन्सेप्ट कहती है। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर कोर स्ट्रेंथ्स। एक डायरी उठाइए और लिखिए कि आप किस काम में बेस्ट हैं। ऐसा क्या है जो आप बिना थके घंटों तक कर सकते हैं, चाहे वो कोडिंग हो, राइटिंग हो, या फिर लोगों से बात करना हो।
0: और दूसरा स्टेप है मार्केट रिसर्च एंड स्किल मैपिंग। सिर्फ इच्छा होने से काम नहीं चलेगा, आपको देखना होगा कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। लिंक्डइन या नैसकॉम की रिपोर्ट्स चेक कीजिए कि आने वाले 5 सालों में कौन सी जॉब्स सबसे ज़्यादा पैसा देने वाली हैं।
1: तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है टेक कैलकुलेटेड रिस्क विद इंटर्नशिप्स। किसी भी फील्ड में परमानेंट घुसने से पहले 2-3 महीने की इंटर्नशिप या फिर फ्रीलांसिंग करके देखिए। इससे आपको ग्राउंड रियलिटी का पता चल जाएगा कि वो काम आपके लिए बना भी है या नहीं।
0: और आखिरी बात याद रखिए दोस्तों, योर करियर इज़ अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। शुरुआत में छोटी सैलरी मिले पर सीखने को बहुत कुछ हो तो वो चॉइस आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बेस्ट साबित होगी।
1: बिल्कुल साक्षी, और ये सारी जो टिप्स हमने अपने लिसनर्स को बताई ना, ये सारी सुनने में भी काफ़ी सिंपल टिप्स हैं, ये सारी अप्लाई करने में भी काफ़ी सिंपल टिप्स हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ये लॉन्ग टर्म में बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को ये सारी टिप्स के बारे में समझ में आया होगा और वो अपनी पूरी रिसर्च और पूरी जानकारी के साथ ही अपने करियर का जो चॉइस है वो अच्छे से करेंगे।
0: हाँ, और उन्नति, इस पे एक एक टर्म मुझे याद आता है, लोग कहते हैं एप्टीट्यूड, है ना। सबका अपना एक एप्टीट्यूड होता है,
1: बिल्कुल।
0: तो आपको उसको पहचानना चाहिए, है ना। और उसी को कहते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ किस में है या फिर आपका इंटरेस्ट किस में है।
1: बिल्कुल।
0: उसको पहचान कर और उसको निखारिए आप। तब जब आप उस फील्ड में काम करेंगे तो आप उस फील्ड में बहुत खुश भी रहेंगे और साथ में अच्छा अचीव भी करेंगे।
1: बिल्कुल। और सिर्फ जैसे कि तुमने स्ट्रेंथ्स की बात की ना, तो स्ट्रेंथ्स के साथ हमें अपनी जो वीकनेसेस हैं उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी क्या क्या कमजोरी है। और अगर कोई स्किल, कोई फील्ड या फिर कोई करियर अगर हमारी उस वीकनेस की डिमांड कर रहा है, तो हम उसे कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और फिर कैसे उस करियर को हम इम्प्लाई कर सकते हैं
0: और
1: अपनी लाइफ
0: वीकनेस
1: में।
0: से एक बात और आती है उन्नति, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने फील्ड को बहुत जल्दी चेंज करते रहते हैं ना। कि उन्होंने एक चीज़ उठाई, इसको उन्होंने सीखना शुरू किया, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, वो उनको सीखने में प्रॉब्लम होने लगी, उसको क्विट किया और दूसरा उन्होंने चूज़ कर लिया।
1: तो
0: तो
1: मतलब
0: अगर
1: वो
0: ऐसा
1: इंटरेस्ट
0: करेंगे,
1: स्विच
0: हाँ
1: करते हैं बहुत
0: हाँ बिल्कुल,
1: जल्दी।
0: और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और आप ऐसे किसी भी फील्ड में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपके आपके पास किसी भी फील्ड में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा।
1: बिल्कुल। प्रॉब्लम्स उसी में आती है जब हम कुछ नया सीखना शुरू करते हैं। जब भी हम कुछ नया उठाएंगे, कोई नई स्किल उठाएंगे, कोई नया नए करियर के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ही बारे में हम बात करें, तो उसमें जैसे कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसकी तैयारी अगर हम जब करना शुरू करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन हर बार करियर स्विच कर देना ये सही चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बातचीत से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी सारी टिप्स भी मिली होंगी जिससे कि आप सही डिसीजंस लेंगे अपने लाइफ में, और हम अपने कार्यक्रम में भी अलग अलग सेगमेंट्स के थ्रू आपको सारी चीज़ें बताते ही रहते हैं, जानकारी भी देते हैं। और हमारा एक खास सेगमेंट भी है आपके लिए आज के प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले हमारी आइए आपको सुनवा देते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: सोचिए दोस्तों, आपकी उम्र कितनी है? 18, 19, 20। अब इमेजिन कीजिए, इसी उम्र में अगर किसी युवा को अपने देश के लिए एक फैसला लेना पड़े जिसके बाद उसकी जिंदगी सिर्फ कुछ महीनों तक ही रह जाए, कल्पना करना ही कठिन होगा, है ना? लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे युवा थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी।
1: और आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही युवा की है, एक ऐसा नाम जो

0: शायद आज की जनरेशन में बहुत कम लोग जानते हैं। इस क्रांतिकारी का नाम इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा, अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, एक मराठी क्रांतिकारी युवा जिनका नाम रत्नागिरी के एक कोंकणी परिवार में हुआ था जन्म, और उनकी शिक्षा का एक हिस्सा निजामाबाद और औरंगाबाद में हुआ।
1: औरंगाबाद में रहते हुए उनका संपर्क उन युवाओं से हुआ जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ रेवोल्यूशनरी आइडिया से प्रभावित थे, और यही से उनके जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया। वो अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े, यानी उस समय का एक ऐसा युवा जो अपनी पढ़ाई और सामान्य जीवन के बजाय देश की गुलामी और आज़ादी के सवालों के बारे में सोच रहा था।
0: लेकिन किसी भी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी को समझने के लिए उसके समय को समझना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल।
0: और उस समय भारत ब्रिटिश रूल के अधीन था। 1908 में लोकमान्य तिलक को राजद्रोह के आरोप में जेल की सज़ा हुई, और महाराष्ट्र में पॉलिटिकल रिप्रेशन का माहौल बढ़ गया। इस माहौल में कई युवा मानने लगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिर्फ पिटीशंस और स्पीचेस से नहीं हटाया जा सकता, और कुछ युवाओं ने रिवॉल्यूशनरी और आर्म्ड रेजिस्टेंस का रास्ता चुना।
1: और अनंत कन्हेरे भी इसी विचारधारा से प्रभावित हुए, और यही से कहानी आगे जाती है नासिक। उस समय नासिक के डीएम थे AMT जैक्सन। वो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज पर नजर रखते थे। रिवॉल्यूशनरी युवाओं में जैक्सन के खिलाफ काफी आक्रोश था, और फिर आया 21 दिसंबर 1909, नासिक का विजयनंद थिएटर, मराठी नाटक संगीत शारदा, और जैक्सन वहाँ एक फेयरवेल समारोह में मौजूद थे।
0: वहीं मौजूद थे कन्हेरे, और इसी दौरान उन्होंने जैक्सन पर गोली चला दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, और घटना के तुरंत बाद अनंत को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनमें शामिल थे कृष्णा जी गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे, और इस पूरे मामले को इतिहास में नासिक कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है।
1: और इस इन्वेस्टिगेशन से अभिनव भारत के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और उससे जुड़े लोगों के बारे में भी ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को जानकारी मिली। इसी के साथ आगे चलकर उन पर मुकदमा चला, और 29 मार्च 1910 को उन्हें डेथ सेंटेंस सुनाया गया। और फिर आया 19 अप्रैल 1910, ठाणे जेल, और वहीं अनंत लक्ष्मण कन्हेरे को फांसी दे दी गई। लेकिन साथ में कृष्णाजी कर्वे और विनायक देश पांडे को भी मृत्यु दंड दे दिया गया।
0: दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीख और नाम याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। इतिहास हमें बताती है कि हमारे देश और समाज ने किन परिस्थितियों से होकर आज का रूप पाया है।
1: बिल्कुल साक्षी, और कन्हेरे जी की कहानी हमें सुनकर यही पता चलता है कि उनके जीवन में उनमें जो साहस था, वो साहस अगर हम में आ जाए तो हम भी कितना बड़ा चेंज, कितना बड़ा बदलाव अपने देश में ला सकते हैं।
0: और इसीलिए हम अपने प्रेरणापूर्ण सेगमेंट में ऐसे पर्सनालिटीज को लाते हैं ताकि उनके योगदान को देखकर, उनके बारे में पढ़कर हमें भी प्रेरणा मिले और हम भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें, जो हम अपने लिए भी कुछ कर सकें और हमारे देश हमारे समाज के लिए भी कुछ योगदान कर सकें।
1: बिल्कुल, और हमें उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को हमारा ये सेगमेंट और हमारा कार्यक्रम भी पसंद आ रहा होगा, उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, उन्हें काफ़ी कुछ प्रेरणादायक लगा होगा। और हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक और गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: कभी कभी एक खिलाड़ी के सामने ओपोनेंट सिर्फ सामने वाला खिलाड़ी नहीं होता, बल्कि एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। लोग कहते हैं, अरे ये तो इतने बड़े चैंपियन की बेटी है, और तब असली चैलेंज होता है अपनी पहचान बनाना। आज की हमारी कहानी भी ऐसी ही है, हमारे बहुत ही स्पेशल सेगमेंट

0: वुमेन खेल जगत में, एक यंग इंडियन एथलीट की, एक ऐसी खिलाड़ी जिसने बैडमिंटन के बड़े नाम की बेटी होने के बावजूद अपने खेल से अपना नाम बनाया।
1: जी हाँ दोस्तों, आज के खेल जगत में हम बात करेंगे गायत्री गोपीचंद पुलेला की। उनका जन्म 4 मार्च 2003 को हैदराबाद में हुआ था और उनका फैमिली बैकग्राउंड तो बैडमिंटन लवर्स के लिए बहुत ही फेमिलियर है। उनके पिता हैं भारत के महान बैडमिंटन प्लेयर और कोच पुलेला गोपीचंद और उनकी माँ पीवीवी लक्ष्मी भी फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर और ओलंपियन हैं। लेकिन दोस्तों एक बात इम्पॉर्टेंट है, चैम्पियन फैमिली में जन्म लेना और खुद चैम्पियन बनना दोनों अलग चीज़ें हैं। टैलेंट को रिजल्ट्स में बदलने के लिए मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए।
0: गायत्री ने कम उम्र में ही बैडमिंटन में अपनी प्रतिभा दिखाई और इतनी कम उम्र में कि 15 साल तक वो इंडिया की अंडर 17 कैटेगरी में नंबर 1 रैंक तक पहुंच चुकी थी। वो शुरुआत में सिंगल्स प्लेयर थी लेकिन 2021 में उन्होंने विमेंस डबल्स ट्राई करने का फैसला किया और उनकी पार्टनर बनी ट्रीसा जॉली और ये पार्टनरशिप काफ़ी शानदार साबित हुई।
1: बिल्कुल, दोनों की प्लेइंग स्टाइल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती थी। और अब बात करते हैं उस अचीवमेंट की जिसने इस यंग पेयर को एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाया। बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, गायत्री और ट्रीसा ने वुमेन्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और गायत्री इंडियन मिक्स टीम का भी हिस्सा थी जिसने सिल्वर मेडल जीता। यानी एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बड़े मेडल्स, नॉट बैड एट ऑल।
0: और यही उनके इंटरनेशनल करियर के लिए एक बड़ा बूस्ट था। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से अपनी पहचान बनाई और यही बात हम यूथ्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी फेमस फैमिली से हों या बिल्कुल ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से हो, आपकी पहचान अल्टीमेटली आपके खुद के काम से बनती है।
1: बिल्कुल, और दोस्तों उनकी जर्नी अभी रुकी नहीं है। हाल ही में गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली को 2026 अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये रिकॉग्निशन बताता है कि उनकी मेहनत और अचीवमेंट्स को नेशनल लेवल पर कितना सम्मान मिला है। और सबसे अच्छी बात, वो अभी भी यंग है और उनके सामने उनका करियर बहुत लंबा है। सो डोंट बी अफ्रेड टू रीइन्वेंट योरसेल्फ।

0: वेलकम बैक दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि बहुत खास है और वो सेगमेंट है प्रश्न मंच। जैसा कि आप जानते हैं, इस सेगमेंट में हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। हमारा कल का प्रश्न था, भारत में स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर है कि भारत में स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत, आधिकारिक शुरुआत इसकी 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में की गई थी और इसकी घोषणा सबसे पहले 15 अगस्त 2015 को स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। जो इसका मेन एम है वो है देश के युवाओं को जॉब सीकर्स के बजाय जॉब क्रिएटर्स बनाना और नई सोच यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना। ये आता है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। और आपको बता दें कि इसीलिए हर साल 16 जनवरी को देश में राष्ट्रीय स्टार्टअप डे यानी नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो आज का प्रश्न है वो ये है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाता है? सवाल एक बार फिर से सुने, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाता है? आप अपना उत्तर हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है yuvvaniald@gmail.com, और मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 8004926250 पर। हमें आपके उत्तर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो साक्षी, इसी के साथ मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को चलते चलते एक और गीत सुना देना चाहिए।

0: साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम एनर्जेटिक, इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी एंटरटेनमेंट वाला लगा होगा। आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा हमारे कार्यक्रम से। और आप हमारे ईमेल पर और हमारे व्हाट्सएप पर हमसे जुड़े रहिए। हमारा ईमेल है
1: qvani@gmail.com और आप हमें अपना फीडबैक भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। साथ ही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपका कोई सजेशन हो वो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं
0: हमारे नंबर पर, जो कि है 8004926250 पर। इसी के साथ मुझे यानी उन्नति
1: और मुझे यानी साक्षी पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। 6 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

0: प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सचिव ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, सूचना और संचार, विनिर्माण, औषधि डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नजर। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कहकशां कार्यक्रम। रात 10 सुनिएगा नाटक दाढ़ी वाला हाथी, लेखक कलीम उर्फी। रात 10:30 पर उस्ताद बिस्मिल्ला खां की पुण्यतिथि पर सुनिएगा शहनाई वादन राग रागेश्वरी। इसी क्रम में रात 8 सुविख्यात शहनाई सम्राट भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां से नर्मदेश्वर उपाध्याय की भेंटवार्ता होगी। अक्षयवट कार्यक्रम में रात 8:30 सुरेंद्र मोहन का काव्य पाठ होगा। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी की वार्ता होगी संस्कृत साहित्यस्य वैश्विक प्रभाव। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर कीर्ति चौधरी के स्वर में भजन होंगे। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। और अब एक नज़र कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल रात 9:30 पर विज्ञान भारती कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रयागराज केंद्र की प्रस्तुति आप सुनेंगे। रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में रमेश कुमार शुक्ल की वार्ता होगी गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य में लोक चेतना। कल प्रातः 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में नीरज पांडे से बातचीत होगी वृक्षों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर ऋचा पांडे की वार्ता सुनिएगा PCOS जानकारियां एवं सावधानियां। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर पंडित DK दातार का वायलिन वादन होगा। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर प्रीति मिश्रा के गायक गीत होंगे और शाम 7:45 पर कौशिका राय के स्वर में गीत और भजन। लोक माधुरी कार्यक्रम में 10:05 पर कल आप सुनेंगे लोकगीत, कलाकार होंगे भरत लाल और साथी रीता देवी और उनकी सखियां। 10:30 पर हमारे संग्रहालय से वरिष्ठ लेखक व पत्रकार लक्ष्मीकांत वर्मा से दूधना सिंह की भेंट वार्ता होगी। 11 सुनिएगा फिल्म संगीत एक ही कलाकार। 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विदुषी जया विश्वास का सितार वादन होगा। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी कामिनी श्रीवास्तव के गाए लोकगीत के अलावा रसोई घर से। दिन में 2:30 लोकगीत होंगे, कलाकार होंगे राम प्रसाद और उनके साथी, राम बाबू यादव और साथी और पंचम लाल और उनके साथी। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बरम दिन और साथियों के गाए लोकगीत होंगे। यूवाड़ी कार्यक्रम में आज की शाम आपके नाम में आप सुनेंगे अभिनेत्री राखी पर केंद्रित कार्यक्रम और ज्ञान प्रकाश की वार्ता होगी खेल जगत के खेल में भारत के बढ़ते कदम। पर पंचायत घर कार्यक्रम में रघुराज यादव और साथियों के गाए लोकगीत के अलावा परिवार कल्याण की बात होगी। ये थी जानकारी कल के कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए देशभक्ति गीत।

0: स्वतंत्रता प्यारी के कारण निकल पड़े रजदूर,
1: स्वतंत्रता प्यारी के कारण निकल पड़े रजदूर।
0: झांसी वाली रानी भी और बांध कमर मजबूत।

0: प्रसाराणि अकुरुताम्। सामाजिक प्रसार माध्यमे दूरसंचार विभागः अवदत् यत् एषा सन्धिः डिजिटल नवान्वेषणस्य प्रगत्या सह डिजिटल आधारिक संरचनायाः सुदृढीकरणञ्च करिष्यतीति। उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनां सहकारञ्च वर्धयिष्यत्यपि। पुणे नगरे आयोजितस्य द्वादश ब्रिक्स संप्रेषण मन्त्रिणां सभां निकषा केन्द्रीय संप्रेषण मन्त्रिणा ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया इत्यनेन ब्राजील देशस्य संप्रेषण मन्त्रिणा फेडरिको डी सिक्विरा फिल्हो वर्येण च सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि। आयोजनस्यास्य अध्यक्षः केन्द्रीय संप्रेषण मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वस्य प्रारंभिक भाषणे भारतस्य भविष्यस्य विषये दृढं दृष्टिं निरूपयन् उक्तवान् यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्यस्य डिजिटल इंडिया इत्यभियानं प्रति प्रतिबद्धतया मार्गदर्शितं स्थितिस्थापकं विश्वसनीयं नवान्वेषिणं सशक्तिभूतं सर्वसमावेशयुतं च भवतीति भारतस्य दृष्टिकोणं अधोरेखितवान्।
1: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
2: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ईरान देशस्य विदेशमंत्री श्री अब्बास अरागची इत्येषः स्वदेशं विरुध्य दत्तान् आर्थिक प्रतिबंधान् निराकुर्वन् उक्तवान् यत् एतादृश्यः विफल नीतयः ईरान जनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्तीति, अधिकां विफलताम् अपि आनयिष्यन्तीति च। अरागची इत्यस्य इमां टिप्पणीं ट्रम्पेन ईरान विरुद्धं कठोर आर्थिक पदक्षेपोत्थापन रूपेण स्वीकृतम्। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य स्वस्य 25-2000 मे मासिक निर्णये परिवर्तनं कृत्वा प्रवेशस्तरीय न्यायिक सेवा परीक्षासु भागं ग्रहीतुं विधिस्नातकानां कृते पूर्वतनस्य अनिवार्य त्रिवर्षीय विधि अभ्यासस्य आवश्यकतां एकवर्षं यावत् न्यूनीकृतमस्ति। झारखंड उच्च न्यायालयेन JSSCCGL अथ CDPO परीक्षाभ्यः नियुक्ति निरसनस्य राज्य सर्वकारस्य आदेशस्य विषये अंतरिम स्थगनम् अस्थापितमस्ति। याचिकाः न्यायालयस्य पुरतः तर्कं कृतवन्तः यत् विज्ञापनानि नियुक्तयश्च आकस्मिकरूपेण निरसनात्मक सर्वकारस्य निर्णयः विहित नियमानाम् अनुरूपः नासीदिति। औषध विभाग सचिव मनोज जोशी अद्य चिकित्सा उपकरण उद्यम आग्रहत यत् भारतस्य विनियामक संरचनायाः निर्माणे बृहत्तरं निवेशं प्रदातव्यमिति। नवदेहल्यां CII ग्लोबल मेडटेक इत्याख्यं शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्री जोशी वर्यः अवदत् यत् विनियामक चर्चासु उद्योगस्य सहभागिता सम्प्रति परिमिता अस्ति इति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः सिंगापुर देशेन सह समग्र एशिया खंडेन सह आर्थिक सहयोगं प्रगाढीकर्तुं व्यवसाय स्तरे परस्पर सहयोगं दृढीकर्तुं च भारत देशस्य प्रतिबद्धतायाः विषये बलं दत्तवान्। तेन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महोदयस्य नेतृत्वे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इति व्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय सर्वकारस्य प्रयत्नाः च प्रकाशिताः। भारत ऋतुविज्ञान विभागः अद्य पूर्व मध्य प्रदेशे अत्यधिक वर्षायै नारंगवर्णीयां संचेतनां प्रख्यापितवान्। अन्ते क्रीडावार्तासु, भारतस्य काचल ढोचक नाम्नि द्वंद्व युद्ध क्रीडिका क्रमशः द्वितीय बारं अन्तः 20-वर्षीयाणां महिलानां विश्व द्वंद्व युद्ध स्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवती। सा निर्णायक द्वंदे चीन देशीयां जिंगरु सन नामनी क्रीडिकां 7-0 पराजितवती इति वार्ताः।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम का हो सूर्य मन भैया।
1: हाल चाल बात खेती किसानी के तो ठीक है ठाक बा भैया। मुल्ला भैया देखा टेम जौन है दायु राजा, देखा खूब है झमाझम बारिश भाई, और देखो बाबू जौन है काली घटा घिरी बा
0: जी जी।
1: तो किसान भैया बहनी हरिन के हम तो समझे थे कि जौन धान की फसल बा वो बढ़िया बा, और चारी वो किसान भैया बहनी हरिन भैया देखा खूब है खुशहाल बा हो।
0: देखा सूर्यमन, खेती और वृक्षारोपण और वर्षा
1: हाँ
0: तीनों का ऐसा सामंजस्य बा कि वर्षा ऋतु में जो उन खेती हो थी, अगर वर्षा ना हो तो खेती नहीं हो सकत,
1: कही गया।
0: और वृक्षारोपण भी अगर बरसात न भय
1: हाँ
0: तो वृक्षारोपण उतना सफल नहीं हो जितना कि बरसात होत रहे पे होत।
1: हाँ
0: भाई जोन पेड़ बने लगाए दे और 2 महीना 3 महीना रह दे कि अगर पानी बरसत रह गए
1: हाँ
0: तो भाई ओकर जड़ पकड़ ले, ओमन कल्ला आ जाए, आगे अगर 15-20 महीना में सिंचाई पताई होत रहे निराई गुड़ाई तब वो उनकर खुराक बनी रहे।
1: यानी बढ़िया जोन वर्षा हो रही बा
0: जी जी
1: वर्षा से अपन किसान भैया बहनी इनका जैसे खेती है यह भी बढ़िया बा, और साथे साथ जौन नए पौधन के रोपाई किसान भैया बहनी हरिन बाग बागवानी की करत हुए
0: जी
1: तो वहाँ में जौन है पौधा अपन जौन है सहज से आसानी से जौन है वो अपन जड़ पकड़ लेत है, और साथे साथ पौधा भी जौन है बढ़वार हो जाते लग लग जात बा।
0: भाई देखा धान पान और केरा
1: हाँ
0: ये तीनों पानी के चेहरा,
1: कही गया।
0: तो अगर भाई देखा या मौसम में खरीफ के फसलन में मुख्य फसल धान को होत
1: हाँ
0: भाई कितना सूर्यमन सिंचाई पताई का साधन हो अपने
1: हाँ
0: पहले,
1: हाँ
0: लेकिन जब तक बरसात नहीं हो तब तक धाने के पहल फसल जोन बना खेते में लहलहात नहीं हो,
1: कही गया हो।
0: सींच पात के मने लगा ले, सींच पात के ओका जियाए रहे,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन जवन उनका वो ताकत मिलत है वर्षा के पानी से
1: हाँ हाँ
0: गांसा गांसा पानी चला जाता है
1: कही गया।
0: और वो उसे जोन उनकर बढ़वार या उनका पैदावार में बढ़ोतरी के स्थिति बनत है
1: हाँ हाँ
0: वो हमरे तोरे सिंचाई से नहीं बनत।
1: ये तो बात बहुत पते की बताया हो,
0: और
1: काहे कि
0: यही
1: देखा
0: लिए
1: जौन वर्षा होत बा उसे अपना जौन है धान के फसल मा ओके देखा एक एक जौन पताई मा साथे साथ देखा एक गल्ले मा जौन है पड़ जात है जौने से कि भरपूर जौन है पानी मिल जात है।
0: बिल्कुल एक अलावा भाई जो नवा पेड़ लगावत हैं भैया हरे
1: हाँ हाँ
0: वह में उनका लाभ होत है, साथे में जो पुरान बाग है
1: हाँ हाँ
0: जहाँ की भैया हरे सिंचाई उचाई करे वे रोज ना पहुँचते
1: कही गया।
0: बहुत ध्यान नहीं देते,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: पुरान पेड़ है वो अपन स्रोत से ले ले
1: हाँ हाँ
0: तो वहाँ बागन के लिए भी ये समझा कि अमृत बरसत।
1: ये तो बात बहुत नीक बात बताया हो, और जौन भी ऐसे पेड़ पौधन जैसे कि जंगलन में और साथे साथ ही देखा जात बा कि ऐसे जौन है ऊंचाई में पेड़ पौधन है जहाँ पर किसान भैया बहनी हरिन जौन है नहीं सींच पात पावत हैं,
0: जी जी
1: तो ऐसे पेड़ पौधन का भी वर्षा से बहुत लाभ मिलत है, और साथे साथ भैया ऐसे का माने जल से जौन सिंचाई बा ऊंचाई पर पंच भैया नहीं कर पावत हैं तो वहाँ पर भी बढ़िया लाभ मिलत है और पेड़ पौधन की जीवन बढ़िया बना रहते हैं।
0: भाई सूर्यमन देखा पहाड़ वहाड़ पे
1: हाँ
0: तमाम औषधि पौधा हैं
1: कही गया।
0: जहाँ की सिंचाई का कोनो साधन ना है,
1: हाँ हाँ
0: जब बरसात होत है तो वो सब पौधा एकदम लहलहा जाते,
1: हाँ
0: यहीं बरसात से पूरे 12 महीना उनका जीवन मिला रहा था,
1: कही गया।
0: यहीं 3 महीना 4 महीना के बरसात में पूरा साल भर वो
1: हाँ
0: जीवित रहा थे और औषधि के काम करे थे, जो भैया जानकार भैया हरे यहाँ ओका इकट्ठा करके बढ़िया औषधि बनावा थे।
1: कही गया। और साथे साथ एक बात और हम पंच भैया बहिन से कहा चाहते हो कि भैया देखा अपन सरकार की ओर से तरह तरह की योजना भी चलत बा,
0: हाँ
1: और यहाँ तक कि भैया देखा अपन माटी में कोनो तरह की कमी है कोनो तत्व के बा कमजोरी बा तो ऐसे माटी के अपन खेती के जो उन्हें जांच पड़ताल बदे अपन ब्लॉक में जाएं अपन जानकारी लें कि भैया देखा अपन माटी के जांच कैसे करे बा कैसे कहाँ होत बा, तो ये सारी बात जानकारी किसान भैया बहनी हरिन ले लें और साथे साथ अपने माटी के बढ़िया जांच करें और साथे साथ अपन माटी की जो स्वास्थ्य बा वो बढ़िया।

0: बनी रहे।
1: भाई एक बात और जाना सुरेमन।
0: हाँ हाँ बतावा।
1: कि भाई देखा, जब तक शरीर का जैसे स्वास्थ्य का देख रेख होत है,
0: हाँ,
1: वैसे माटी को स्वास्थ्य का देख रेख हो जरूरी होत है।
0: हाँ
1: अगर माटी स्वस्थ रहे तो जौन भी फसल उपजावे चाहबे,
0: हाँ हाँ
1: जौने के बुआई करबे, जौने के रोपाई करबे, वो ओकर उत्पादन बढ़िया होए,
0: कही गया।
1: ओमेन मजबूती मिले, कम से कम माटी जनित रोग से तो बचाव होए।
0: हाँ
1: यह लिए भैया समय समय पे माटी का जांच, और अगर माटी में कुछ कमी बेसी बा तो
0: हाँ
1: वो जानकार भैया हरन से सलाह लेके ओके निदान करब जरूरी बा, जिया कि माटी स्वस्थ रहे और फसल भी हमार स्वस्थ होए।
0: और ए हो दिनेश भैया, बात ई बा कि आपन किसान भैया बहनी हरिन ये सोचत विचारत हुई हैं कि भैया देखा आज का पंचायती में पिटारा लाए हैं,
1: जी जी
0: तो आज अपने पंच भैया बहनी हरिन का भैया देखा एठो वार्ता सुनवावा जाई, पर्यावरण संरक्षण हमारी जरूरत,
1: जी जी
0: भैया नवनीत जैन की है, यह सुनवावा जाई। साथ साथ एक बात बत कही बा कि पशुपालन द्वारा किसानों की आय दुगना करने का जौन सरल और उत्तम सुझाव बा, यह भैया डॉक्टर गौरव पांडे से जयकृष्ण नारायण शर्मा की बात बत कही भी सुनवा हो जाई।
1: मुना सुरेमन हमार मानी कहा था पहले कुछ गीत गाने ही सुनवा होता तो फिर बत कही हो।
0: हाँ हो भैया, तो भैया देखा छेदी लाल और संघातिन के गाय विकास गीत बा, तो हम समझे थे कि पहले किसान भैया बहनी है इनका सुनवाई दिया जाए।
1: बिल्कुल सुना दे, सुना दे।
0: हाँ हाँ तो सुने।

0: सुरेमन भैया
1: देखा गीत गौनाई तो हो गई हो।
0: हाँ, छेदी लाल और संघातिन के गाई पंच भैया बहनी हरिन सुने
1: जी जी।
0: अब भाई देखा जौन आपन जौन है बात बतकही के साथ साथ जौन वार्ता वाली बात रही कि पर्यावरण संरक्षण और हमारी जरूरत
1: जी जी
0: नवनीत जैन भैया की है तो हम समझे थे कि किसान भैया बहनी इनका सुनवा दी हल जाए।
1: बिल्कुल सुना दो बिल्कुल।
0: हाँ हाँ तो सुनाए।
2: दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सुबह जब हम खिड़की खोलते हैं तो ताजी हवा की जगह अगर धुआं मिले, या जब प्यास लगे और साफ पानी की जगह मटमैला पानी मिले, यह सोचकर ही डर लगता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि हमारी आने वाली कल की सच्चाई बनती जा रही है। इसलिए आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वह कोई भाषण नहीं बल्कि हमारी और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, पर्यावरण संरक्षण। दोस्तों, पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि यानी हमारे चारों ओर और आवरण यानी हमें घेरे हुए आवरण यानी हवा पानी मिट्टी पेड़ पौधे और जीव जंतु, यह सब मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को सुरक्षित रखना ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सके। यह संरक्षण हमें प्रदूषण को कम करने, जैव विविधता को बनाए रखने और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने में मदद करता है। प्रदूषण के कारण हवा, जल और भूमि की गुणवत्ता खराब हो रही है जिससे न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक होना अति आवश्यक है। आज के समय में पर्यावरण संरक्षण का महत्व अत्यंत बढ़ गया है क्योंकि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। अब सवाल उठता है, पर्यावरण संरक्षण हमारी जरूरत क्यों है? बहुत सीधा सा जवाब है, क्योंकि इसके बिना हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं है। हम खाना खाते हैं, वह मिट्टी से आता है। हम पानी पीते हैं, वह नदियों और बारिश से आता है। हम सांस लेते हैं, वह ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। हम पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रकृति हम पर निर्भर नहीं है। अगर इंसान इस धरती से गायब हो जाए तो प्रकृति खुद को संवार लेगी, लेकिन अगर पर्यावरण तबाह हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? दोस्तों, सांस लेने योग्य हवा के लिए आज शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स आए दिन खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है। अगर जल ही नहीं बचा तो कल नहीं होगा। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा, अब गर्मी में बेतहाशा गर्मी पड़ती है और बिना मौसम बारिश होती है, बाढ़ आती है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आज पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बन चुका है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण और आधुनिक जीवन शैली के कारण प्रकृति को भारी नुकसान पहुंच रहा है। फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु को दूषित करता है। इससे सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। नदियों और तालाबों में कचरा

0: और रसायन डालने से जल प्रदूषित हो रहा है। इससे जल संकट और बीमारियां बढ़ रही हैं। लाउड स्पीकर वाहन और मशीनों की तेज आवाज मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करती हैं। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रदूषण डीजे से फैल रहा है। जैसे डीजे की आवाज से सुनने की क्षमता का कम होना, हृदय रोग, मानसिक तनाव आदि बीमारियां बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक और रासायनिक कचरे से भूमि की उर्वरता कम होती जा रही है। इन सभी से मानव जीवन प्रभावित हो रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हम अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस, घर और गाड़ियां तो छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सांस लेने के लिए साफ हवा और पीने के लिए शुद्ध पानी ही नहीं दे पाए तो वो उस धन दौलत का क्या करेंगे? दोस्तों, समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन समाधान बहुत छोटे छोटे और आसान हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए किसी बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं है, बस हमारी छोटी सी सोच और आदतों में बदलाव की जरूरत है। हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। एक पौधा जरूर लगाएं। अपने जन्मदिन या किसी खास मौके पर एक पौधा जरूर लगाएं, और सिर्फ लगाएं ही नहीं, उसे बड़ा होने तक संभालें भी, क्योंकि पेड़ हवा को साफ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। प्लास्टिक को ना कहें, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करें। घर से जब भी निकलें, कपड़े का थैला साथ रखें। पानी और बिजली की बचत, ब्रश करते समय नल बंद रखें। जरूरत न होने पर पंखे लाइट्स बंद करें। वर्षा जल संचयन जैसे उपाय अपनाने चाहिए। कचरा प्रबंधन, सूखे और गीले कचरे को अलग अलग रखें। तो दोस्तों, बात बहुत साफ है, प्रकृति हमारा पेट भर सकती है, लेकिन हमारा लालच नहीं। पर्यावरण संरक्षण किसी सरकार या संस्था की अकेली जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। सरकार और समाज को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए नियम और कानून बनाए गए हैं, जिनका पालन करना सभी का कर्तव्य है। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बच्चे बचपन से ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने। सामूहिक प्रयासों से ही पर्यावरण को बचा सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। अंत में यही कहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है। यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे, तो भविष्य में हमें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में छोटे-छोटे बदलाव लाकर पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि पृथ्वी एक सुंदर और सुरक्षित स्थान बनी रहे। पर्यावरण संरक्षण से ही हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। दोस्तों, आज से, अभी से संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति से जितना लेंगे, उतना ही उसे लौटाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि धरती बचेगी तभी तो हम बचेंगे। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, पेड़ पौधे हैं जहाँ, खुशहाली है वहाँ। आओ मिलकर कसम खाएं, पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाएं। धन्यवाद।
1: हाँ
0: हाँ
1: सुरेमल,
0: दिनेश भैया,
1: देखा भैया, ये नवनीत जैन साहब
0: हाँ हाँ
1: कितनी बढ़िया बात बताए हो।
0: हाँ
1: हम
0: भैया,
1: कहते कि भाई देखा, अगर पर्यावरण सुरक्षित बा
0: हाँ
1: तो फिर जनजीवन भी सुरक्षित बा।
0: बिल्कुल, बात
1: तू
0: सही कह रहे
1: चाहे
0: हैं।
1: मनुष्य का हो, चाहे जानवर को हो, पर्यावरण अगर प्रदूषित हो भवा
0: हाँ
1: तो ओकर असर सब पे पड़े।
0: कह गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम सब भैया बहनी हन का यह संकल्प लेब जरूरी बा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधन लगाई। पेड़ पौधन लागे से अपने पशु पक्षियन का भी खाए पिए का देखा मिलते बा।
1: बिल्कुल
0: साथे
1: बिल्कुल।
0: साथ हम सब किसान भैया बहनी भी पेड़ पौधन पर आश्रित बा। तो साथे साथ खेती किसानी के साथ साथ पेड़ पौधा लगावें भैया, और ज़्यादा ज़्यादा अपना पर्यावरण सुरक्षित बनावें।
1: भाई एक बार जान लो सुरेमन भैया, ये पहले का जो बड़े बुजुर्ग रहे ना अपन,
0: हाँ
1: उनकर सोच के तनी बढ़िया रही। बिना तब विज्ञान भले इतना तो आगे न रहा हो,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन फिर भी उनके सोच इतना बढ़िया रही कि जगह जगह फलदार वृक्ष के बाग,
0: हाँ
1: चाहे आम हो, अमरूद हो,
0: हाँ हाँ
1: लगावत रहे। उससे एक तो ये फायदा कि पर्यावरण शुद्ध रहत रहा,
0: हाँ
1: भरपूर पेड़ रहे,
0: हाँ
1: दूसरे उसे फल मिले,
0: कह गया।
1: और जरूरत पे सूखी लकड़ी भी मिल जात रही।
0: हाँ ये तो बहुत नेक बात
1: तो
0: रही।
1: हम कहे थे कि यही सोच के देखत भाई, हम ये जाना कि ज़्यादातर अब देखा कहूँ को बड़ी बड़ी बाग जोन रही ज़्यादातर कट गई
0: हाँ
1: या पेड़ गिर गए, तो भैया अरे लगावे के
0: हाँ

0: ज़रूरत नहीं समझें या उतना कह नहीं पाएँ,
1: हाँ
0: लेकिन फिर भी और तमाम आबादी बढ़ी तो तमाम जगह पे घर बन गए, लोगों में रहने वाली समस्या भाई सड़क बन गए,
1: हाँ
0: बड़ी बड़ी सड़क बनी तो जाहिर है सड़क के किनारे जो उन पेड़ रहे उनकर भी कटाई छटाई भाई।
1: हाँ
0: पहले पहले के सोच ये रही जो उन सड़क भी बनत रहा रास्ता भी बनत रहा
1: हाँ हाँ
0: ओके किनारे किनारे पेड़ लगत रहा,
1: हाँ और
0: या
1: एगो
0: बड़े
1: चीज
0: लगत
1: भी
0: रहा सूर्यमन भैया कि एक तो पर्यावरण शुद्ध रहे,
1: कही गया
0: दूसरे ये कि सड़क पे जो चले वाले मनई है तब इतना मोटर गाड़ी के चलन ना रहा
1: हाँ हाँ
0: या साइकिल पैदल चले वाले रहे
1: हाँ
0: एक्का तांगा से, तो जो चले वो रास्ता में चले वाले भैया आ रहे हैं उन्हों के अगर गर्मी के धूप में छहाए को होए तो
1: कही
0: पेड़
1: गया
0: के छाँव में छहाए ले ही।
1: ये तो बहुत नेक बात रही। और पेड़ पौधन जैसे कि ईटीएम किसान भैया बहनी हरिन भी पेड़ पौधन की रुपाई बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। अपने गांव ग्राम में देखल जात बा स्कूलन में भी लड़का गदेला सब मिलजुल करके नए नए पेड़ पौधन लगा रहे हैं। तो हम समझित है कि अपन पर्यावरण बढ़िया बना रही सुरक्षित रही और हम सबके जो मन की ये भावना बा कि पेड़ पौधन से हरा भरा अपन पर्यावरण रहे तो ये सबके संकल्प पूरा होई। और
0: बिल्कुल
1: साथे
0: बिल्कुल
1: साथ हम दिनेश भैया यह कहब हो
0: कहा
1: कि अपन पेड़ पौधन से अपन जौन है किसान भैया बहनी हरिन के तो लाभ मिलते बा, खेती किसानी से लाभ मिलत है। साथे साथ जैसे कि अपन पशुपालन से भी किसान भैया बहनी हरिन अपन एक दोहरा लाभ जौन है प्राप्त करत हवें। तो आज बात बतकही माँ भैया एक बार कि पशुपालन द्वारा किसानों की आय दुगना करने का जो सरल एवं उत्तम सुझाव बा डॉक्टर गौरव पांडे से जयकृष्ण नारायण शर्मा भैया फरियाए की जानकारी लिहिन तो हम समझित किसान भैया बहनी इनका सुनवा दिया जाए हो।
0: बिल्कुल बताओ चाहे बिल्कुल
1: हाँ
0: जाए
1: हाँ तो
0: सबके
1: सुने
0: जाना चाहे।
1: सुने
2: किसान भाई, एक अच्छे किसान के पहचान पशुपालन से भी होता है। जोने किसान के दरवाजे पे बेहतरीन पशु रहते हैं ओके अच्छा किसान मानल जाते हैं प्राचीन समय से। बढ़िया बैल, बढ़िया गाय, बढ़िया भैंस अगर दरवाजे पे हो तो एक तो भाई दुग्ध उत्पादन से घरेलू जौन हो उपयोग बच्चन के लिए अपने उपयोग के लिए दूध घी मिलत है, साथ साथ बाजार में ओकर अच्छी आमदनी हो सकत है। और गोबर और अपशिष्ट पदार्थ जौन होते हैं वो खाद के रूप में खेतन में काम करत है। आज जौन बातचीत का विषय हो पशुपालन द्वारा किसानों की आय दोगुना करने का उत्तम सुझाव या उपाय, जानकारी देव दे विशेषज्ञ के तौर पे हमारे बीच में डॉक्टर गौरव पांडे जी आल बाटे। भैया गौरव पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने पशुपालक भाई या किसान भाई के लिए चाहब कि अपन पशुपालन द्वारा वो कोने ढंग से आमदनी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा ये विषय पे बतावें।
3: हाँ तो किसान भाइयों, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का विशेष महत्व है। सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28 से 30% का योगदान सराहनीय है, जिसमें दुग्ध एक ऐसा उत्पाद है जिसका योगदान सर्वाधिक है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 53% भैंसों से, 43% गायों से एवं 3% लगभग बकरियों से प्राप्त होता है। भारत लगभग 121.8 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन करके विश्व में प्रथम स्थान पर है और यह एक मिसाल पेश करता है जिसमें उत्तर प्रदेश भी अग्रणी है।
2: जी जी जी
3: यह उपलब्धि पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे मवेशियों की नस्ल, पालन पोषण, स्वास्थ्य एवं आवास प्रबंधन इत्यादि पर किए गए अनुसंधान एवं उसमें प्रचार प्रसार का परिणाम है। लेकिन आज भी कुछ अन्य देशों की तुलना में हमारे पशु दुग्ध उत्पादन अत्यंत कम कर रहे हैं। इस दिशा में सुधार की बहुत सी संभावनाएं हैं। छोटे भूमिहीन तथा सीमांत किसान जिनके पास फसल उगाने एवं बड़े पशुओं को पालने के अवसर सीमित हैं, उन्हें छोटे पशुओं जैसे भेड़ बकरियां, सुअर एवं मुर्गी पालन कर रोजी रोटी के साधन व गरीबी से निपटने का एक आधार है। विश्व में हमारा स्थान बकरियों की संख्या में दूसरा एवं कुक्कुट की संख्या में पांचवा है, जो कम खर्चे में और कम स्थान में मेहनत कम मेहनत में और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उपयुक्त है। छोटे पशुओं का इसमें अहम योगदान है। अगर इसमें संबंधित उपलब्ध नवीन तकनीकियों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तो निसंदेह ये छोटे पशु गरीबों के लिए आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देश की लगभग 70% आबादी कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। छोटे एवं सीमांत किसानों के पास कुल कृषि भूमि का लगभग 30% जोत है, जिसमें से 70% कृषक पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनके पास कुल पशुधन का 80% भाग मौजूद है। स्पष्ट है कि देश का अधिकांश पशुधन

0: आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के पास है।
1: जी जी पांडे जी, आप बहुत अच्छी जानकारी देना। अब सबसे बड़ी चीज हो कि चाहे वो फसल हो चाहे पशुपालन हो, प्रजाति का बड़ा महत्व है। फसल में भी प्रजाति का महत्व होता है, और आजकल अब वो जमाना नहीं भाई कि भैया देसी गाय पालत बाटा तीन पाव दूध होता तो उसे काम चली। तो आज गायन के कौन कौन से अपने यहाँ प्रजाति है, और अब बहुत तरह तरह के प्रजाति आ गल बाटी,
0: जी जी
1: तो ओके बताओ कौन कौन प्रजाति का यहाँ पालन करे
0: तो
1: मैं ठीक हूँ।
0: भारत में गाय की लगभग 41 नस्ल रजिस्टर्ड हैं एनबीएजीआर द्वारा,
1: जी
0: जिसमें गाय की प्रमुख नस्लें हैं गिर है, रेड सिंधी है, साहिवाल है, हरियाणा, थारपाकर, कांकरेज, मालवी, मेवाती, राठी एवं नागौरी है। तो कांकरेज, नागौरी और हरियाणा की जो ब्रीड है उसके जो बैल हैं वो खेती के लिए उत्तम होते हैं।
1: जी जी
0: गिर नस्ल के अपने अर्धचंद्राकार जो सींग होती है
1: हाँ हाँ
0: उसकी वजह से पहचानी जाती है, और इस नस्ल में बीमारियों की प्रतिरोधक क्षमता भी थोड़ी ज्यादा होती है। और साधारणतः गिर नस्लें जो है गायें प्रति ब्याद लगभग 1200 से 1800 लीटर दूध देती हैं, और साहिवाल गाय जो होती है वो एक उसकी देसी नस्ल है जो प्रति ब्याद लगभग 1400 से 2500 लीटर दूध देती है, और जो थारपाकर नस्ल होती है वो उसके बैल जो है वो खेती में उपयोग आ सकते हैं, और जो गाय होती है वो अत्यंत दुधारू होती है, वो एक ब्याद में लगभग 1800 से 2600 लीटर दूध देती है। और जो इसमें अपने यहाँ कुछ विदेशी नस्लें भी हैं, तो जैसे उसमें विदेशी नस्लों में हॉलैंड की होल्स्टीन फ्रिजियन, इंग्लैंड की जर्सी और स्विट्जरलैंड की ब्राउन स्विस को अपने यहाँ भारत में मान्यता मिली है, तो इन गायों की दूध उत्पत्ति क्षमता अधिक है, और इन नस्लों को देसी नस्लों के साथ मिलाकर जैसे जर्सिन और करन स्विस और करन फेज की नस्लें एनडीआरआई करनाल द्वारा विकसित की गई हैं।
1: हाँ हाँ
0: और इस संकर किस्मों का दूध की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है, और ये स्थानीय वातावरण के अनुसार भी अनुकूल होती है। तो सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहेंगे कि एक डेयरी फार्म यदि खोलना है तो उसमें सबसे पहले किसान भाइयों को प्रशिक्षण बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल
0: उनका जो है प्रशिक्षण पहले कहीं ना कहीं किसी जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है या कृषि विज्ञान केंद्र है या जो है किसान मेला होता है, ऑर्गेनाइज होता है कई जिलों में अलग अलग जगहों पे, तो उसमें जो है वो जाएं और उसका प्रशिक्षण लें, उसका अनुभव प्राप्त करें। उसके बाद सबसे पहले जब चुनाव करें तो डेयरी फार्म की लोकेशन देखें,
1: हाँ
0: जैसे
1: हाँ
0: कहाँ पे है ये है, मतलब वहां पे हरा चारा उपलब्ध रहेगा या
1: बिल्कुल
0: नहीं रहेगा,
1: हाँ
0: जो है मार्केट के नजदीक है या दूर है वहां
1: हाँ
0: से,
1: दूध
0: क्योंकि
1: पहुंचाने में
0: जब दूध
1: सुविधा
0: बेचना है तो
1: जी
0: दूध के जो आपको भूसा चारा हरा चारा लाना पड़ेगा, राशन लाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद दूध बेचने ले जाना है या लोग आएंगे खरीदने के लिए, तो मार्केट के नजदीक होना चाहिए।
1: कुशल
0: पानी
1: प्रबंधन जी
0: जी कुछ और पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो गाय पीते हैं अदरवाइज बीमार पड़ेंगे सब पशु।
1: बिल्कुल हाँ
0: और रोड की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए जहां पे चुनाव कर रहे हैं। और जमीन, तो जमीन का जो है वो पर्याप्त जमीन होना चाहिए। जैसे आपने सोचा है कि हाँ हमें 100 गायें पालनी है, तो
1: हाथ
0: उसके
1: गए उनके
0: हिसाब
1: सुते बैठे बैठे
0: जी
1: पर्याप्त जगह चाहिए, भगदड़
0: जी
1: वाली स्थिति न
0: हाँ
1: रहे।
0: मतलब
1: हाँ
0: पर्याप्त जगह रहे,
1: हाँ
0: तभी वो
1: हाँ
0: मतलब अपने प्रतिकूल वातावरण अनुकूल वातावरण में रहेंगे,
1: जी
0: और ऊंचाई पर हो, ढलान पे ना हो, मतलब
1: हाँ
0: सीलन
1: पानी न
0: वगैरह
1: लगे,
0: नमी ना
1: कोनो
0: रहे
1: कीड़ा
0: वहां पे।
1: मकोड़ा न रहे।
0: और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि देखिए कोई भी चीज चलती है अर्थ से, तो किसान भाइयों को ये एक अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमारे पास कितना अर्थ है, हम कितना पशुपालन कर सकते हैं,
1: जी
0: क्योंकि शुरू करना आसान है, उसे चला पाना कठिन है, कि मतलब बाद में ऐसी दिक्कतें ना आए उनको। तो पहले वो अपना बजट डिसाइड कर लें कि
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ
0: कितना मतलब हम कर सकते हैं, उसी हिसाब से वो अपना काम करें। और उसके बाद बहुत सी संस्थाएं हैं, जैसे एनडीडीबी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, और एनबीआरडी है, नाबार्ड है, और नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। ये जो है फंड बहुत से देते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं आपको कि अपना काम करिए। आईसीआर है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, केजीके हैं, केवीके हैं, और किसान मेला ऑर्गेनाइज होता है। तो ये
1: जी
0: आपको बहुत सारे जो है फंड देते हैं कि आप अपना जो है कैसे कैसे जो है, बहुत से प्रोजेक्ट आते हैं गौ पालन पे, पशु उस पे, मुर्गी पालन पे, मछली पालन पे, तो आप अच्छी अपनी आमदनी कर सकते हैं।
1: हाँ भैया, दिखा कौन चीज हो पशुपालन में सबसे महत्वपूर्ण आहार होता है, लेकिन अगर संतुलित आहार न मिली
0: जी
1: तो बेहतर पशुपालन हो ना सकत, तो आहार के बारे में थोड़ा बताओ।
0: जी तो दुधारू गायों को आहार उसके दूध उत्पादन क्षमता और उसके वजन के अनुसार देना चाहिए, और सूखा व हरा चारा नियमित आधा आधा मिलाकर देना चाहिए। प्रति 2 लीटर दूध के उत्पादन पर 1 किलो राशन देना चाहिए। तो गायों को जो है प्रति 2 लीटर दूध पर 1 किलो दाना जो है जरूर देना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी
0: और नमक उसको, जैसे गायों गायों में देखते हैं आप ही कभी कभी वो दीवाल चाटने लगती हैं, तो उनको जो है नमक देना चाहिए, एग्रीमिन फोर्ड देना चाहिए, ताकि उनकी मिनरल मिक्सचर रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती रहे। उसके बाद दूध देने वाली नस्लों को गर्भधारण के 2 महीने बाद

0: सिर्फ ब्याने के 15-20 दिन पहले तक धीरे धीरे राशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जो कि लगभग 4 से 5 किलो तक जाने के बाद फिर धीरे धीरे उसी पे कांस्टेंट रख के फिर बंद करना चाहिए। और बछियों को भी, जो गाय की जो बछिया होती हैं, तो बछियों को भी संतुलित आहार देना चाहिए, जिसके मतलब कि क्योंकि उन्हीं से फिर आगे दूध का प्रोडक्शन होना है,
1: बिल्कुल,
0: तो उनको भी मतलब अच्छा खान पान रखना चाहिए। और वर्ष भर क्या होता है कि हमें हरे चारे नहीं मिल पाते हैं,
1: जी, जी।
0: तो हमें जो है जैसे साइलेज बनाना है तो साइलेज बना के थोड़ा सा डेयरी पर रख लिया और हे बना लिया, तो वो क्या करते हैं उससे जो है आप वर्ष भर हरा चारा जो है गायों को उपलब्ध करा सकते हैं।
1: भैया आवास बहुत जरूरी है, लिए कि अब पहले जैसा ये सब जो महंगी नस्ल के गाय हैं या भैंस हैं, इनके लिए उत्तम आवास की व्यवस्था होएक चाहिए, तो क्या होएक चाहिए?
0: तो गायों का आवास की उचित व्यवस्था होना बहुत ही जरूरी है, जैसा कि आपने कहा, तो जिसमें पशु के लिए पर्याप्त जगह और उसके साथ पानी आहार का पूरा प्रबंध होता है। साधारणतः एक पशु के लिए लगभग 8 से 6 वर्ग फीट का स्थान पर्याप्त माना जाता है, और पशुओं की संख्या के हिसाब से पशुशाला का निर्माण होना चाहिए, और पशुओं को बाहर लूज, जैसे या तो लूज हाउसिंग सिस्टम में या कन्वेंशनल बार में रखते हैं, तो उसमें या तो खुले बाड़े में रख सकते हैं या बांध के रखते हैं। तो जो बांध के रखते हैं उसमें कन्वेंशनल बार, उसमें दो टाइप की हाउसिंग होती है, एक जो है हेड टू हेड, जिसमें सर जिसमें बीच में मांद होती है, मतलब क्या नाम कहते हैं, नांद होती है, और उसमें दो दोनों तरफ से सामने से खाते हैं,
1: जी एक उधर एक
0: जी उधर सामने सामने से, और एक होता है टेल टू टेल सिस्टम, जिसमें दोनों जो है उनकी जो पूंछ वाला सिरा होता है वो पीछे होता है, दोनों जो है खाने वाला अलग होता है। और इनकी जो छत की हाइट होनी चाहिए वो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में 175 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट,
1: छत की
0: हाइट, और जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में 220 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए।
1: अब और, रोग और बीमारी से बचाई बहुत जरूरी है, तो ओकर टीकाकरण कैसे करें, ओकर रोकथाम कैसे करें, कौन कौन रोग लगते हैं इनके?
0: जी जी, तो गायों की महामारी, गायों में जो है जनरली महामारी, खुरपका, मुंहपका, माता, रेबीज, ये सब विषाणु जनित जो है रोग हैं। और गायों में जहरी बुखार, गला घोंटू, जहरवाद, सूखा रोग, निमोनिया, क्षय रोग, थनैला, ये सब जीवाणु रहित जनित हैं। और इनके रोकथाम के लिए पशुशाला में अच्छी साफ सफाई रखनी चाहिए, एवं समय पर सभी पशुओं का टीकाकरण करवाना चाहिए, अधिकतर टीकाकरण बरसात के पहले,
1: समय समय पर पशु चिकित्सक से भी संपर्क रखना
0: चाहिए, लेना चाहिए। तो परजीवियों के रोग में जैसे लाल पेशाब, लीवर फ्लू एवं दुधारू गायों में देखा गया है, तो दुधारू पशुओं में कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो सड़ा गला खाने से हो जाते हैं।
1: जी, अब ये प्रजनन और नवजात बछड़न का देखभाल के बारे में बताओ थोड़ा।
0: जी, तो गाय लगभग 2 साल की उम्र में प्रजनन योग हो जाती है, तो दुधारू गायों को गर्भित करवाने के लिए 2 विधियां यहाँ प्रचलित हैं, एक तो प्राकृतिक विधियां, और जिसमें हम सांड द्वारा जो है इंसेमिनेट कराते हैं और गाय जो है फलित किया जाता है, और दूसरा कृत्रिम गर्भाधान, जिसमें अच्छी नस्ल के सांडों का सीमेन जो होता है उसे जो है AI गन द्वारा गायों को फलित किया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से गर्भित करने वाले गाय जो होती है वो बछियां जो होती है वो उसी सांड वाली प्राप्त होती है,
1: बिल्कुल,
0: पर उसमें जो है जो AI गन द्वारा होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से उसमें जो है अच्छा हम प्राप्त कर सकते हैं क्रॉस इंसेमिनेशन।
1: अब नवजात बछड़न का देखभाल कैसे करें थोड़ा एक बताओ।
0: जी, बछड़े जो होते हैं, देखिए जब होते हैं तो जब नए नए पैदा होते हैं तो बहुत ही कमजोर होते हैं, तो उनका देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है। तो नवजात उसमें क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले जब वो पैदा हो तो उनके नाक और मुंह में जो है म्यूकस लगा होता है, तो उसको उंगली डाल के और उसे थोड़ा पैरा से उसको थोड़ा साफ करना चाहिए, और थोड़ा सा उन्हें ब्लड सर्कुलेशन के लिए उसे जो है थोड़ा सा रगड़ना चाहिए, उनकी पीठ थपथपाना चाहिए,
1: जी जी,
0: और उसके बाद उनके अम्ब्लाइकल कॉर्ड बांध के काटना चाहिए, फिर जो उनका वीनिंग की जाती है मां से हटाया जाता है उसमें काफ स्टार्टर और रिप्लेसर देना चाहिए दोनों।
1: भैया गौरव पांडे जी, पशुपालन द्वारा किसानन के आय दोगुना करे का उत्तम सुझाव आप देने, आपके जानकारी देव दे बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ सुरेमन
3: भैया, देखा पशुपालन द्वारा किसानों की आय दुगना करने का सरल एवं उत्तम सुझाव, इस विषय पर बहुत नीक जानकारी डॉक्टर गौरव पांडे से भैया जय कृष्ण नारायण शर्मा लिहिन, और किसान भैया बहनी सुनिन और गुनाए और साथे साथ अपन पशुपालन करें और 4 पैसा की आमदनी बढ़िया लें।
2: एक बात और समझा सुरेमन भैया,
3: हाँ हाँ,
2: जो किसान खेती से जुड़ा है,
3: हाँ हाँ,
2: और खेती किसानी में देखा 2400 घंटा या महीना में हर दिन काम नहीं ना
3: कह गया,
2: ये कहा जाता था कि 13 कार्तिक 3 आषाढ़,
3: हाँ हाँ,
2: तो कार्तिक के महीना में और आषाढ़ के महीना में कुछ काम ज़्यादा भले हो जाए,
3: हाँ हाँ,
2: बाकी तो देख रेख और सब काम बना रहा था,
3: कह गया।

0: ऐसे में अगर वो पशुपालन भी कैले थी
1: हाँ
0: हाँ, तो साथे साथे में उनका एक अतिरिक्त आमदनी हो जाए
1: हाँ
0: हाँ, और उनकर व्यस्तता भी बनी रहे, उनका इन्हें लागे कि हम खाली हो गए।
1: कह गया। तो साथे साथ अपन किसान भैया बहनी हरिन पशुपालन जरूर करें, जौन भैया देखा जाए पशु की जरूरत हो उतने पालें,
0: हाँ
1: अपन
0: हाँ
1: 4 पैसा के आमदनी अतिरिक्त होत रहे और दुधारू पशु पालन करें ताकि दूध की पैदावार भी बढ़िया हो।
0: जी।
1: और साथे साथ बात बत कही तो और चली हो दिनेश भैया, मुला हम तो यह कहब अपने किसान भैया बहनी हरिन का, ये जौन बा देखा सावन का महीना बा
0: हाँ
1: और देखा कजरी का जौन है गीत का बड़ा महत्व बा, तो आज किसान भैया बहनी हरिन का शोभा लाल और संघातिन की गाई कजरी बा और आपन जौन है इनका पहले सुनवाई दिया जाए हो।
0: बिल्कुल सुना दो, बिल्कुल सुना दो।
1: हाँ हाँ तो सुने।

0: हाँ हो दिनेश भैया, देखा लोकगीत कजरी मजोन है श्री शोभा लाल उस संघातिन के, बहुत नीक गायन और अपन किसान भैया बहनी हरिन सुनिन और आनंद लिहिन।
1: हम
0: और
1: कही तो सूर्यमन भैया एक चीज जान ले ना
0: हाँ हाँ
1: कि मौसम मौसम का असर हर चीज पर होता हो।
0: कह गया।
1: अगर सावन में कजरी न होए
0: हाँ
1: तो समझा कि कोनो भी सभा कोनो भी सोसाइटी धन्य नहीं होते।
0: कहेगा।
1: और फागुन में अगर होली न होए
0: हाँ
1: तो हम कही थे कि कजरी तो बहुत बढ़िया सुनवाए। एक बात और भैया हरन से कहे थे
0: हाँ हाँ बता
1: पंचन से कि भाई देखा कार्यक्रम में हम सब किसान भैया हरन के नई नई जानकारी, नई नई खेती करे के, पशुपालन करे के, बाग बगीचा लगावे के,
0: हाँ
1: नई विधि नई तकनीक के जानकारी देत रहे थे।
0: हाँ
1: फिर भी ये हो सकता है कि जो उनके अपेक्षा हो वह हिसाब से जानकारी उनका न मिल पावत हो।
0: हाँ
1: तो हम कहे थे कि यह कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से
0: हाँ
1: वो और कौन जानकारी चाहत ही या जो जानकारी दी जात बा उसे उनका कौन कितना लाभ भवा
0: कहिएगा।
1: और यह जानकारी में उनका कोनो दुविधा तो ना
0: हाँ
1: ये सब जाने के लिए अपन प्रतिक्रिया दे के लिए
0: हाँ
1: वो एक मोबाइल नंबर बा
0: हाँ हाँ
1: भैया अरे ओका लिख ले
0: हाँ
1: तो
0: बताओ।
1: कि 800
0: हाँ
1: 4926250।
0: हाँ हाँ
1: हम कही थे कि ई नंबर पे अगर फोन कर के अपन प्रतिक्रिया दे ही
0: हाँ
1: और जौन और जानकारी चाहत हुई ही
0: कहेगा।
1: अगर ओह जानकारी के लिए बताई ही तो पूरा प्रयास रहे कि उनके जानकारी के हिसाब से अपने कार्यक्रम में शामिल करके उनका पूरी पूरी जानकारी खेती के संबंध में, पशुपालन के संबंध में,
0: हाँ हाँ
1: वो बागवानी के संबंध में दिया जाए।
0: और साथे साथ भैया जौन भी अपन मन की बात हुए और भैया देखा पंच भैया बहनी हरिन और भी सुना चाहते हैं, जानकारी ले चाहते हैं, तो जौन भैया देखा बताया हो नंबर उस जरिए से अपन किसान भैया बहनी हरिन जानकारी ले सकत हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: साथे साथ इटेम मौसम में जौन इतरा अदलाव बा कि देखा कई दिनन से वर्षा के जौन ऊपर बा कि काली घटा घिरी बा, कहूँ कहूँ तो वर्षा घनघोर हो ले, तो किसान भैया बहनी हरें मौसम से बहुत देखा सावधानो रहें, साथे साथ अपने जौन पशुअन का ऐसे जगह पर बांधें कि ताकि पेड़ पौधन के गिरे से कोनो तरह के खतरा से बचाव भी बना रहे। और साथे साथ अपन किसान भैया बहनी हरें अपन खेत के जौन मेड़बंदी बा वहाँ का ठीक तरीके से बांध लें ताकि जौन वर्षा का जल आए भरपूर लाभ मिले। और
1: बिल्कुल
0: साथे
1: बिल्कुल
0: साथ भैया देखा हम तो कहब कि हरेक काम टेम टेम से नीक लागत है,
1: हाँ हाँ चले
0: अपने
1: के बेला भाई
0: पंचायती से विदा लिहल जाए तो पंचों
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 292

4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 MHz पर। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: chu sabji na nga khak nispe na nga online portal gyote misi se shu gun jang tang jang kang che se las gut shuli nyot ka ne na nga shamil zo
1: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में हुए शामिल जापान की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रदेश का दौरा करेगी जापान की टीम। टूरिज्म एक्सपो जापान 2026 में हिस्सा लेगा उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर किया 1 वर्ष। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक अभी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला।

0: नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान के पास इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस की एक असाधारण विरासत है और उत्तर प्रदेश के पास अपने युवाओं की एक ऊर्जावान पीढ़ी है जो सीखने, सृजन करने और नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के युवा ऐसी स्किल और वर्क कल्चर सीखें जिसकी डिमांड टोक्यो समेत दुनिया भर में हो।
1: हमारी पार्टनरशिप की सफलता केवल बिलियंस ऑफ रुपीज के इन्वेस्टमेंट से नहीं नापी जाएगी, इसकी अगली सफलता मिलियंस ऑफ जॉब्स होगी, न्यू टेक्नोलॉजीज होगी, ग्लोबल प्रोडक्ट्स और आने वाली पीढ़ियों के लिए शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में दिखाई देगी। हमारा लक्ष्य है यूपी में बने प्रोडक्ट जापान सहित पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाएं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट से लगातार आगे बढ़ रहा है।

0: टेक्नोलॉजीज होगी, ग्लोबल प्रोडक्ट्स और आने वाली पीढ़ियों के लिए शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में दिखाई देगी। हमारा लक्ष्य है यूपी में बने प्रोडक्ट जापान सहित पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाएं।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट से लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। उन्होंने जापान की कंपनियों को यहां निवेश करने और बिजनेस स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। श्री योगी ने बताया कि इन्वेस्ट यूपी में एक डेडिकेटेड यामानाशी डेस्क स्थापित की जाएगी, जो यामानाशी सरकार और वहां के उद्योगों और निवेशकों के साथ निरंतर समन्वय करेगी। इससे पहले यूपी जापान हेल्थ केयर एंड केयर इकोनॉमी पार्टनरशिप के सेक्टोरल सेशन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जापान और भारत की क्षमताओं को जोड़कर हेल्थ केयर और केयर इकोनॉमी में बड़ा मॉडल तैयार किया जा सकता है। वहीं आज यामानाशी प्रीफेक्चरल असेंबली ऑफ जापान और उत्तर प्रदेश विधानसभा के बीच मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान के लिए एमओयू हुआ। एमओयू के तहत दोनों विधानसभाओं के बीच म्यूचुअल विजिट्स, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज और एक्सचेंज एक्टिविटीज को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही दोनों अपनी कार्यप्रणाली, प्रक्रियाओं और अनुभवों को साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान जापान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सेमीकंडक्टर कमेटी की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के शामिल होने की संभावना पर भी चर्चा हुई। जापान की ओर से सेमीकंडक्टर सेक्टर में मौकों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक टीम भेजने की इच्छा जताई गई। श्री योगी ने कहा कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के इस अहम क्षेत्र में जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और राज्य की औद्योगिक क्षमताओं के बीच सहयोग की काफी संभावना है। साथ ही जापान के अनुरोध पर सितंबर में होने वाले टूरिज्म एक्सपो जापान 2026 में उत्तर प्रदेश के शामिल होने पर भी सहमति बनी। इससे पहले आज मुख्यमंत्री आवास पर विशेष कार्यक्रम अ डायलॉग विद द फ्यूचर आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी की मौजूदगी में जापान के यामानाशी प्रांत से आए 13 विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्यों ने लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल विद्यार्थियों का मिलन नहीं बल्कि दो संस्कृतियों, परंपराओं और देशों की युवा पीढ़ियों का मिलन है। उत्तर प्रदेश जापान निवेश बैठक के सिलसिले में इस समय जापान के उद्योग जगत के 200 से अधिक प्रतिनिधियों का दल उत्तर प्रदेश की यात्रा पर है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। एक रिपोर्ट।
2: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष, दीपेंद्र कुमार।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने आज लखनऊ में सशस्त्र सीमा बल की चतुर्थ वाहिनी मोहनलालगंज में जवान बैरक, अधीनस्थ अधिकारी मेस और आवासीय भवनों का शिलान्यास किया। उन्होंने क्षेत्रीय मुख्यालय, प्रशिक्षण केंद्र, संयुक्त चिकित्सालय गोरखपुर और 22वीं वाहिनी महाराजगंज के विभिन्न भवनों का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम के दौरान गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार के लिए कार्मिक कल्याण और राष्ट्र की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक हैं।
3: हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सभी केंद्र अर्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण और नई तकनीकी शिक्षण के साथ साथ सैनिकों के परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सैनिकों के परिवार के उचित स्वास्थ्य, आधुनिक आवास, होमेस और उनके बच्चों को

0: अच्छी शिक्षा के लिए मॉडल स्कूल तथा खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया है कि मंदिर परिसर में तय किए गए करीब 70 निर्माण कार्यों में से लगभग 60 काम पूरे हो चुके हैं और उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में सावन में अब तक 53,69,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि हर सोमवार औसतन 5 से 5.5 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्होंने अनुमान जताया कि सावन समाप्त होने तक ये संख्या करीब 80 लाख तक पहुँच सकती है।
2: 5.5 लाख का एवरेज हमारे पास सोमवार का है। उस 19 दिनों में 53,69,634 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अभी जो बचे हुए हमारे 9 दिन और हैं उनको मिलाकर आंकड़ा लगभग 80 लाख के आसपास पहुंचेगा, ऐसा हमारा आकलन है और यही आकलन शुरू में व्यक्त भी किया गया था। श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो मानक संचालन प्रक्रिया है SOP जो हमारा बनाया गया है उसी के अंतर्गत एंड टू एंड बैरिकेडिंग, खोया पाया केंद्र, मेडिकल हेल्प काउंटर इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं।
1: राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में हो रही तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। वहीं बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्ती पार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं फरुखाबाद में गंगा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी भी उफान पर है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि जिन रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है वहाँ राहत और बचाव कार्य में PAC की मदद ली जा रही है। उन्होंने आम जन से सतर्कता बरतने की अपील की है।
3: विभिन्न जगह हमारी सभी तहसील प्रशासन, मेडिकल टीम, सिंचाई टीम सभी एक्टिव हैं और सभी को ये एहतियातन बार बार बताया जा रहा है कि अभी थोड़ा नदियों नालों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें।
1: मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पश्चिमी जनपदों में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में हुए शामिल। जापान की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रदेश का दौरा करेगी जापान की टीम। टूरिज्म एक्सपो जापान 2026 में हिस्सा लेगा उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर किया 1 वर्ष। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक अभी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी की वार्ता संस्कृत साहित्यस्य वैश्विक प्रभाव।
1: संस्कृतं केवलं भारतवर्षस्य प्राचीनभाषा नास्ति, अपि तु सा विश्वस्य प्राचीनतमा समृद्धतमा वैज्ञानिकतमा च भाषासु अन्यतमा अस्ति। संस्कृतवाङ्मयं मानवजीवनस्य प्रायः सर्वान् पक्षान् स्पृशति। अस्मिन् धर्मः, दर्शनं, नीतिः, काव्यं, नाट्यं, व्याकरणं, आयुर्वेदः, गणितं, ज्योतिषं, राजनीतिशास्त्रं, अर्थशास्त्रं, कामशास्त्रं, योगः, अध्यात्मं च समाहितम् अस्ति। संस्कृतसाहित्यस्य वैश्विकप्रभावः केवलं तस्य प्राचीनत्वे निहितः, अपि तु तस्य सार्वभौममानवीयदृष्टौ निहितः अस्ति। संस्कृतवाङ्मयस्य मूलचिन्तनं मनुष्यं केवलं स्वकीयकल्याणाय न प्रेरयति, अपि तु समग्रविश्वस्य कल्याणं चिन्तयितुं प्रेरयति। ऋग्वेदे उद्घोषितं

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कीर्ति चौधरी की आवाज़ में भक्ति रचनाएं। लीजिए अब इन्हीं के स्वर में सुनिए मीरा बाई की यह रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कीर्ति चौधरी के स्वर में भक्ति रचनाएं। अब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, आज सुविख्यात शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह साहब की पुण्यतिथि है। हम पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें शत शत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारतीय संगीत को शहनाई वाद्य यंत्र के माध्यम से विश्व पटल पर गौरवान्वित करने में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। आज श्रद्धांजलि स्वरूप आकाशवाणी प्रयागराज के संग्रहालय से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पुण्यतिथि पर प्रस्तुत कर रहे हैं एक भेंट वार्ता, जिसे उनके जीवन काल में उनके वाराणसी स्थित निवास स्थान पर रिकॉर्ड किया गया था। उनसे बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक नर्मदेश्वर उपाध्याय।
1: खान साहब
2: जी,
1: मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मेरी खुशकिस्मती है कि इस बनारस की उस सरजमी पर मैं आपसे मुलाकात करने का मौका पा रहा हूँ जो आपकी अपनी जन्मभूमि है
2: जी,
1: और जहाँ रह करके आपने

0: जिंदगी और अपने फन की इतनी बड़ी साधना की है,
1: बेशक,
0: तो ये सचमुच बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए और हमारे रेडियो स्टेशन के लिए और हमारे सुनने वालों के लिए कि उनको आपके बारे में, आपके जिस ज़माने को आपने देखा है उसके बारे में, आपका जो माहौल रहा है यहाँ घर का, परिवार का, मोहल्ले का और सारे देश का, सारी दुनिया का, जहाँ से आपको होकर गुजरने का मौका मिला है, थोड़े में बताएं कैसा वक्त था वो जब आपके बचपन के दिन थे
1: जी,
0: और बड़े बुजुर्गों की देखरेख में आपकी ज़िंदगी शुरू हुई थी इसी बनारस शहर में
1: जी,
0: और खाक भी जिस जमीन का पारस है, शहर मशहूर वो बनारस है, तो उस बनारस शहर की इस ज़मीन की खाक को आपने अपने माथे लगाया और यहाँ का प्रसाद और उसकी महक और उसकी सारी गमक आपने सारे मुल्क को अपनी शहनाई के ज़रिए दिया, सारी दुनिया में आवाज़ फैली, तो थोड़े में बताएं कि कैसा वो वक्त था जब आपने अपनी इस साधना को, इस फन की साधना को शुरू किया था।
1: हमारा वक्त क्या है थोड़े से मैं बयान करना है आपके सामने, वो ये कि बचपन में हमारा यही मकान है कि इसके अंदर हमारे मामू, बड़े मामू और हमारे मझले मामू, हमारे छोटे मामू अली बख्श खां, इस सब के सब अपने अपने कमरे में अपनी अपनी जगह बैठे, कोई गा रहा है, कोई शहनाई बजा रहा है।
0: ये नाना जी का मकान था?
1: हाँ, हमारे नाना का मकान था ये, और उस वक्त ऐसा नहीं था, बिल्कुल मामूली सा मकान था और छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और हमारे मामू लोग अपने अपने कमरे में बैठे हैं, कभी आपस में बात भी कर रहे हैं बैठे हुए, कभी गाना बजाना कर रहे हैं। हमारा काम ये था कि हम छोटे थे और घर में इधर उधर घूम रहे हैं और उनकी शहनाई सुन रहे हैं, उनका गाना सुन रहे हैं। नतीजे के तौर पर ही होता था कि वो सुनते सुनते कान में जैसे रिकॉर्ड बस गया था, हमको कुछ मालूम नहीं था लेकिन फिर भी हम कुछ टूटा फूटा गाना शुरू कर दिया, हम भी गा रहे हैं। और उसके बाद मामू का साज रखा हुआ है तो कभी घूम के आए तो छिपे चोरी उनका भी साज उठा के फूंक रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं बिगड़ना है क्योंकि तो हमारा साज बजा रहे हो, क्या कर रहे हो, ख़राब कर दोगे। तो हम कहा कि नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, हमारे बड़े मामू ने कहा कि नहीं, इसको छोटा सा साज बना के दे दो, अपना खेलता रहेगा।
0: अच्छा, बचपन में किस नाम से बुलाते थे आपको?
1: हमको बचिया कह के पुकारते थे, बाबू करके पुकारते थे। हाँ, और उसके बाद हमको हमारी खुशी के लिए हमको कहते थे कि भाई एक काम करो, ये गाना है इसको गाओ, कभी भी कोई राग शुरू किया जरा से ऐसे गाओ, हम भी अपना अंडरस्टैंड उसी में अपना किसी से। तो बड़े खुश हो गए कि भाई एक पैसा तुमको इनाम देंगे, ये लो। तो मैं एक पैसा लेके बड़ा खुश हो जाता था, इसलिए कि एक पैसे में उस ज़माने में बहुत सी चीज़ें मिल जाती थी। अधेले की लैया ले लिया तो अधेले का कुछ वो पापड़ वापड़ बिक रहा है, यही खा लिया, एक पैसे में बड़ा मज़ा आता था। तो हमारे दिल में ये लग रहता था कि अगर हम थोड़ा सा गाएंगे तो मामू खुश होकर हमको एक पैसे के बजाय दो पैसा भी दे देंगे। ये सब चीज़ें चलती रहती थी और नतीजे के तौर पर ये हुआ कि वो सुनते सुनते सुनते 6-7 साल की उम्र में हमारी तबीयत इस मेल की हो गई कि जैसे कोई भी गाना हो तो उसको हम ज़्यादा ख़राब करके नहीं मुँह से निकालते थे बल्कि कुछ सुर में होता था। तो मामू ने हमारे समझा कि इसकी तबीयत जो है तो ज़्यादातर संगीत में है, तो उन्होंने हमको शुरू भी करा दिया ऐसे ही घर में बैठे बैठे। कभी कभी सरगम कहलवा रहे हैं, कभी किसी राग की अस्थाई अंतरा कहलवा रहे हैं, और उसमें 1-2 महीने 3 महीना जाते जाते नतीजा ये हुआ कि हमको याद होने लगा। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि पूरी अस्थाई याद कर लिया, और बड़े मामू से कहा कि भैया ज़रा देखना, ये तो अस्थाई याद कर लिया इसने। तो मामू भी सुनते थे, बड़े खुश होते, तो 2 पैसा उन्होंने इनाम दिया और उसके बाद 2 पैसा लेके मैं बड़ा खुश हुआ। ये करते करते कुछ ज़माने के बाद जबकि हम 8-10 साल के आए तो हमारे मामू ने एक बड़ा साज जो बड़े लोग बजाते हैं वैसा बना के दिया, और हमारे ख्याल में साल ही भर जाते जाते उसमें हमारी दम अच्छे किस्म की पड़ने लगी। और नतीजा ये हुआ कि 12 साल की उम्र में जाते जाते हम अच्छे खासे शहनाई बजाने में आ गए, लेकिन अभी हमको जानता नहीं था। तो नतीजा ये हुआ कि 1937 में इलाहाबाद की कॉन्फ्रेंस में हमारे मामू, हम यहाँ से जब गए तो हमको भी लेके गए, तो हमको केदारे की गत चढ़ा दिया था। वो केदारे की गत और एक दो अपनी

0: बनारसी धुने छोटी मोटी कुछ उसे चढ़ा दिया था। वहाँ हम गए जब तो मामू के दरमियान बैठ के और जैसे उस प्रोग्राम को हमने किया है और जब लोगों ने सुना कि भाई इतना बड़ा बच्चा, उस वक्त हमारी उम्र ज़्यादा में ज़्यादा 13-14 साल की थी, तो जब लोगों ने सुना तो फैसला किया कि भाई तमगा था एक हमारे मामू को देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तमगे का हकदार ये लड़का है। तो हमारे मामू बड़े पसंद हुए, बहुत खुश हुए कि आपने बड़ा अच्छा इंसाफ किया और हम ये चाहते भी थे कि अगर इस लायक ये है तो उसको मिलना चाहिए। तो बड़ी तालियां बनी
1: उसी लड़के ने बाद में चलकर न सिर्फ उस खानदान का बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन किया।
0: फिर तो ऐसा हुआ कि अब धीरे धीरे करके ये चर्चा होने लगी कि भाई उनका भांजा जो है बड़ा अच्छा है, उनका भांजा जो बड़ा अच्छा है। कहीं कहीं पर ऐसा हुआ कि राज दरबार के काम आते थे उस जमाने में स्टेट के, तो स्टेट से लिख के आता था कि खान साहब अगर आप नहीं आ सके तो उस बच्चे को भेज दीजिए।
1: महाराज के यहाँ भी तो बहुत बड़ा संबंध था आप लोगों का।
0: डुमराव महाराज के यहाँ तो हमारे दादा परदादा सब वहीं परवेश पाए, वहीं मुलाजिम थे, बल्कि हमारी पैदाइश जो असल में डुमराव की। हाँ, और हम वहीं के पैदा हैं। और महाराज साहब केशव प्रसाद के ज़माने में हम बिहारी जी के मंदिर में अक्सर जाते थे, तो वहाँ पूजा जब होती थी तो वहाँ वो प्रसाद बढ़ता था, तो हम भी खड़े रहते थे वहाँ, सब दुनिया प्रसाद देती थी, हम भी प्रसाद देते थे। तो महाराज का आर्डर ये हुआ कि नहीं एक लड्डू इसको रोज़ दे दिया जाया करे। तो वो लड्डू कितने का होता था, 1.25 शेर का होता था बिहारी जी का। वो एक लड्डू हम लेके आते थे तो उसमें हम भी खाएं, हमारे भाई भी खाएं, हमारी माता, हमारे पिता, हमारे दादा सभी खाते थे और रोज़ मिलता था। अरे महाराज अब क्या बताएं, वो सब टाइम हमारे लिए ऐसा था कि यकीन मान लीजिए अब तो ख्वाब में भी नज़र नहीं आता। यानी दो पैसा हमको मिल जाए तो हम ये अपने आप को सोचते थे कि हमारे पास बहुत पैसा हो गया, और उसमें कई चीज़ें लेके खा लेते थे।
1: और उस वक्त दो पैसे की बहुत बड़ी कीमत थी।
0: कीमत भी थी बिल्कुल।
1: तो आगे ये फिर सिलसिला चलता रहा।
0: आगे चलता रहा, फिर नतीजा ये हुआ कि फिर कॉन्फ्रेंसें शुरू हो गई और फिर हम कलकत्ते गए कॉन्फ्रेंस में 1937 में। उस ज़माने में ये था कि शहनाई की कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा राज दरबार में था। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस में शुरू किया हमारे मामू थे, तो उस वक्त ऐसा प्रोग्राम हुआ है कि प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद 2-3 घंटे तक तो यह मालूम होता है कि सबके कान में शहनाई बज रही है, और जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें ज़रा कमी मालूम हो कि शहनाई बोल रही है। ये करते करते नतीजा ये हुआ कि 3-4 साल के बाद तो कलकत्ते में ये हो गया कि हमको लास्ट प्रोग्राम देने लगे कि नहीं पहले शहनाई नहीं बजेगी, और अगर पहले शहनाई बज गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, शहनाई गुजती रहे। तो फिर लास्ट में होने लगा। और आज मालिक की मेहरबानी से कि तमाम यूरोप, तमाम अमरीका, तमाम हिंदुस्तान कोई तरफ बाकी नहीं है, हर जगह जाते हैं। और 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम करना, और वो 1-1.5 घंटे में लोग कहते हैं खासा मालूम था कि 10 ही मिनट तो प्रोग्राम हुआ। हम कहा प्रोग्राम का मतलब तो यही है कि 4 घंटा भी सुनते जाइए लेकिन आपको ये मालूम हो कि बहुत कम टाइम लगा है।
1: न सिर्फ संगीत की बल्कि पूरे शहनाई की, और बहुत बड़ी इज्जत आपने उसको दी और उसको बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया है। इसमें मतलब हर आदमी इस बात को माथा झुका मानता है। एक बात हमें बताएं कि इसके लिए रियाज का सिलसिला आपका कैसा रहा, बचपन से कितना वक्त आप दे पाते थे, और घर गृहस्थी की भी जिम्मेवारी रहती रही होगी, दुख सुख भी चलता रहता रहा होगा ज़िंदगी में, तो घर परिवार और सारी परेशानियां और सुख दुख सब झेलते हुए भी इसको कैसे संजो करके रखा आपने, इसकी लौ कैसे जगाई रखी, ये बताएं।
0: इसका देखिए आपको मैं बतला दूँ, ये एक बहुत ज़माने के परंपरा की चीज़ है, बुज़ुर्गों का कहा हुआ है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हाँ, ये हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है। इसके अंदर बड़ा बड़ा समुंदर है, इसको सोचना पड़ेगा। जब हम एक काम को किसी हद तक पहुंचा लेंगे तो हम हर काम को उसी तरीके से लेके जाएंगे, वरना हम थोड़ा सा पढ़ लिया और थोड़ा सा संगीत सीख लिया और थोड़ा सा हमने इंजीनियरिंग सीख लिया तो किसी में भी हम आए नहीं। तो इसीलिए बुज़ुर्गों ने कहा कि एक कार्य एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए। तो हमने
1: हर फन हर बात नहीं बनती है।
0: तो हमने बचपन से सिर्फ संगीत लिया, स्कूल में पढ़ाने बैठे वहाँ जाते थे, और रास्ते में अगर कहीं कोई अच्छे सरोद बजाने वाले मिल गए या कोई उनका प्रोग्राम हो रहा तो स्कूल नहीं गए, वहीं खड़े खड़े सुन रहे हैं। स्कूल टाइम ख़त्म हो गया, वहाँ से जब आते थे मामू ने पूछा कि पढ़ाए, उनका जी हाँ पढ़ाए। जब स्कूल से रिपोर्ट जाती थी कि नहीं लड़का नहीं आया तो हमारे मामू बिगड़ते थे। आखिर में हमारे मामू ने हमको ये सोच लिया कि ये पढ़े वढ़े का नहीं, इसको खाली संगीत की लगन है, और संगीत हम अपना करते रह गए।
1: बनारस में तो मोहल्ले के मोहल्ले साज और संगीत से घूमते
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत

0: से लोग, हाँ सब लोग आके बैठते थे, सुनते थे, यार अच्छे किस्म के लोग थे।
1: कंठ महाराज और रसूल भाई का भी यही,
0: हाँ हाँ हाँ, क्या कहना है, वो जमाना तो ऐसा, ओहो वो जमाना तो ऐसा था कि हमारे कंठे महाराज जी हैं, हमारे ये रामदास जी थे, बड़े रामदास जी, छोटे रामदास जी, और ये अपने विद्याधरी जी, ये सब हमारा बचपन था। लेकिन इन लोगों का ऐसा था कि वो ज़माने में इन लोगों का जो रियाज होता था, कभी कभी जाते थे ये लोग चमकार के बैठाते थे और सुना देते थे कि बच्चा है ज़रा सुन रहा है, इसको सुनाओ, और बड़े खुश रहते थे। वो ज़माना हम लोगों का इस किस्म का था कि हम सही मानों में पूछे तो हमको कोई फिक्र नहीं थी घर में क्या पकेगा, क्या खाएंगे, कुछ भी नहीं, खाली संगीत है। और बस रियाज का कायदा ये था कि सुबह उठते थे और सुबह उठने के बाद मुँह हाथ धोने के बाद पहले साज लेके बैठते थे और घंटा भर साज बजाने के बाद वो भैरव बजाते थे, सिर्फ एक राग भैरव, दूसरा कोई नहीं, सुबह हर रोज़ भैरव। और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर नाश्ता पानी होता था, नाश्ता पानी के बाद फिर हम जाते थे गंगा जी और वहाँ हम नहाते थे। नहाने के बाद तब फिर हम 12:30 बजे अपने बालाजी मंदिर में जाते थे। बालाजी मंदिर में हमारे मामू हमारे नाना मुलाजिम थे, महाराज ग्वालियर के थे, तो वहाँ पर वो आरती उरती होती थी, वहाँ पर अपना बजता था, तो वो डेली वहाँ जाना पड़ता था। हम वहाँ जाके फिर एक घंटा पर वहाँ रियाज कर रहे हैं, फिर शाम को 7 बजे से हम बैठते थे 11 बजे रात तक। तो ये पहले की तमाम चीज़, हमारे मामू वहाँ 18 बरस तक रियाज किया था बालाजी मंदिर में, 18 साल तक हटे नहीं वहाँ से। और वहाँ बजाने के बाद उन्होंने क्या क्या भावनाएँ देखी हैं वो सब हमें बताया उन्होंने, और हमने उसको ऐसा किया कि उसको लिए हुए थे और उसी रियाज करते थे। लेकिन हमारे मामू ने कहा कि अगर कोई बात देखना तो कहना मत। लेकिन बचपन का आलम था, हमने मामू से बता दिया कि मामू ऐसा ऐसा हुआ, एक साधु बाबा आ गए हमारे सामने बजाते बजाते और उन्होंने कहा कि बजा बेटा, तुम्हें तो डर गया 11 बजे रात को। आखिर नतीजा ये हुआ कि वो हंसते हुए चले गए, बेटा ज़रा मज़ा करेगा। अब जो मैं दौड़ के जाता हूँ कि बाबा हैं कि कौन है फ़कीर, इनसे दुआ लेना चाहिए, वो गायब हो गई। तो हमारे मामू को जो बतलाया तो दूसरे दिन उन्होंने हमको बहुत डांटा, अब देखना तो मत कहना, कतई मत कहना किसी से भी। तो उसके बाद महाराज मैं आपके हाथ बताऊं कि 2 वाक़ा और है लेकिन हमने बताया नहीं, आज तक कहीं किसी से नहीं बताया, वो उन लोगों के आशीर्वाद हैं। हाँ ये ज़रूर है कि हमारे बनारस का जो ढंग है रियाज करने का वो एक दूसरे ढंग का है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि रियाज करते वक्त ज़रा कुछ नशा लेते हैं और ज़रा ये करते हैं, होता है जिसका भी जैसा, लेकिन हमारे यहाँ का कायदा ये है, हमारे और भी बुजुर्ग बनारस के बहुत से लोग, ये लोग नशा उशा नहीं करते। अगर बहुत कुछ नशा किया तो थोड़ा सा भांग बूटी ज़रा सा ले लिया हल्का सा, और उसको करने के बाद ये बैठते थे रियाज करने, और किसी नशे में नहीं। तो वो हम लोग हमेशा करते आए, आज मालिक की मेहरबानी से कि वो 7 बजे शाम का रियाज और 11 बजे रात तक का रोज़ का रियाज और बरसा बरस हमने किया, जिसका नतीजा ये है आज देखिए कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती और मालिक की मेहरबानी से तमाम दुनिया घूमते हैं। हाँ एक एहसान ज़रूर है कि अगर रेडियो में हम लोग प्रोग्राम न किया होता तो दुनिया न जानती, ये इतना ज़रूर है कि रेडियो के ज़रिए से ये ज़रूर हो गया कि जो नहीं जानते थे, हिंदुस्तान के लोग बहुत से नहीं जानते थे कि शहनाई क्या है। वो तो जब हमने पहले यहाँ लखनऊ में 1938 में प्रोग्राम किया है, यानी 16 और 18 अप्रैल 1938 यहाँ से शुरू किया हमने, तो उस वक्त जो बम्बई के लोगों ने सुना तो वो अशश करने लगे कि भाई ये शहनाई में क्या है, इसमें तो गायकी भी मालूम हो रही है, इसमें तो तंत्र भी मालूम हो रहा है, इसमें तो हर चीज़ मालूम हो रही है।
1: और आज तो हुजूर उत्तर भारत के सभी रेडियो स्टेशन का आगाज़ ही आपकी आवाज़ से होता है,
0: ये तो एक बड़े खुशकिस्मती हम अपने को कहेंगे। लेकिन एक और भी साथ साथ ये कि आज से नहीं, ज़माने कदीम से ही ऐसा है कि जब कोई खुशी का काम हुआ है तो बनारस के अंदर क्या हिंदुस्तान भर में शहनाई पहले बजी है, कोई दूसरा साज नहीं आया है। ये इसको एक फजीलत, बड़ी बहुत बड़ी फजीलत है कि और किसी साज को ऐसा नहीं है, बल्कि शहनाई कोई भी खुशी, गरीब से गरीब आदमी है उसके यहाँ छोटी सी शादी है तो भी मामूली से शहनाई बुला लिया उसने, अपने दरवाजे पर शहनाई भजवा दिया उसने,
1: शादी है, बधाई है, गंगा की पूजा है, शहनाई जरूर बजे। अच्छा ये शंकर जी का शहर रहा है
0: जी,
1: विश्वनाथ जी का,
0: हाँ,
1: और भैरवनाथ यहाँ के दरोगा हैं, गंगा मैया की कृपा है पूरे शहर पर, तो इस पर भी कुछ मन में आपके लौ पैदा होती है कि इनका भी प्रसाद आपके साथ रहा होगा?
0: अरे बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है, इसको तो दिल गवारा करता है, ईमान जो है उस पर ये है, इसलिए कि ये सब अब के ज़माने में तो हम नहीं कह सकते भाई लोगों का ख्याल दूसरे किस्म का हो रहा है, लेकिन पहले के लोग ये जानते थे कि हमारे देवताओं के पास बैठने से, वहाँ पूजा करने से, वहाँ कोई रियाज करने से ज़रूर कुछ मिलता है। और हमारे घराने के लोग जितने भी थे वो हमेशा यही करते

0: थे। अभी हमने आपको बताया था, इसके पहले मंगला गौरी मंदिर में हमारे मामू का रियाज होता था, और बिहारी जी के मंदिर में हमने खुद रियाज किया है डुमराव में। तो ये सब परंपरा से चली आ रही है ये चीज़ें, और करते चले आए। आज भी इस वक्त हालत है हम लोगों की, जब कभी से बाहर से घूम के आते हैं, जैसे फर्ज कीजिए अमरीका निकल गए, फ्रांस है, जर्मनी है, और वहाँ से आए, तो कभी कभी दिल चाहता है कि मंदिर पर जाके किसी को सुना के नहीं, अकेले, हाँ अकेले 10 मिनट जाके वहाँ हाजिर दिया और हाजिर देकर चले, और बड़ा प्रसन्न हुए और बड़ी तबीयत खुश हो गई कि हाँ आज हमने कुछ काम किया।
1: और कभी किसी ऐसी यात्रा पर जाने लगे तो उनका आशीर्वाद भी लेते हैं।
0: बिल्कुल, वो तो होता है जाने से पहले, यानी यहाँ से जा रहे हैं उस वक्त, जाते वक्त सुमिरना पड़ता है और कुछ नहीं, वहाँ कुछ चढ़ाना नहीं पड़ता कि कुछ दो रुपया पैसा, ऐसा कुछ नहीं, वो तो दिल की बात है। अब गए वहाँ, हाथ जोड़ के अपने आँख बंद किया और धीरे से कह दिया कि बाबा हम यहाँ से जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, फला जगह जा रहे हैं, बड़ी दूर जा रहे हैं, बस वहाँ से हम आए हंसी खुशी के साथ। और
1: तो उनका आशीर्वाद भी साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और खान साहब, मेरा ख्याल है कि अलाउद्दीन खान साहब भी कहा करते थे,
0: हाँ,
1: कि संगीत ही ये जो हमारा फन है, यही हमारा मजहब है, यही हमारी इबादत है, यही हमारी पूजा है, सब कुछ वही मानते थे। तो संगीत जो है आपका, वो भी एक इबादत तो ही है।
0: ऐसी वैसी इबादत नहीं है, अब हमसे सुनिए। जहाँ तक मैंने सोचा है, दुनिया का हर मजहब अपने अपने ढंग पर है, वो सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा संगीत का मजहब एक मजहब है, और उसका सबूत ये है। आज हम कहते हैं कि साहब हम मुसलमान हैं, यो फलां हैं, वो फलां हैं, लेकिन हम कहते हैं कि साहब सात सुर है, खरज रिखब गंधार मध्यम पंचम देवत निखार। तो दुनिया का कोई आदमी तो कहे कि 8 भी है या 9 है, या कोई कहे कि 6 है, सभी 7 मानेंगे। हम कहते हैं 5 ही कोमल उसमें हैं, तो दुनिया के लोग यही कहेंगे। तो कितना अच्छा संगीत ये है कि अगर 43 शुरू हो गया तो 16 मात्रे का, तो दुनिया 16 मात्रे मान रही है। 7 सुर मानते हैं तो तमाम दुनिया वाले 7 सुर मान रहे हैं। 12 सुर मानते हैं तो तमाम दुनिया वाले 12 सुर मान रहे हैं। कितना अच्छा मजहब ये है, ये हमारा एक मजहब है।
1: इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह 7 सुर जो है सारी दुनिया में बांधे हुए हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल,
1: चाहे दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत,
0: कहीं भी हो, ये हमारे खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं, मैं पूरे दुनिया को चैलेंज
1: करता हूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी में है सब। अब रहा ये कि अपनी अपनी स्टाइल है, जैसे हमारी बोली है। अब हम हमारे बनारस के बोले कहा भैया, कहाँ से आवत हुआ, कहाँ जात हुआ, यहाँ एक जगह ऐसे बोलते कहिए जनाब कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं, कहाँ जाएंगे। तो इसी तरीके से दुनिया की बोली अलग अलग है, लेकिन ये कहिए कि जो हमारे सुर हैं वो अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है, सुर तो एक ही है।
1: और सुर में आदमी को रहना चाहिए,
0: रहना चाहिए। वो बकौल शख्स से किसी ने खूब कहा है, बड़ा मज़ा लेता हूँ, कि भाई अगर तुम हमको 1000 गाली दो तो सुनने के लिए तैयार, लेकिन सुर में क्या अच्छी बात कही है, सुर में दो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन बेसुरी बात भी कहोगे तो नहीं सुनते, कुछ ऐसा है,
1: कोई नहीं सुनेगा। तो आप कैसा महसूस करते हो कि आपने जो वक्त देखा
0: जी,
1: वो बहुत शानदार वक्त था।
0: बड़ा अच्छा वक्त था महाराज, मैं आपसे क्या बताऊं कि वो ऐसी चीज़ थी कि फिकर नहीं रहती थी। महंगाई ज़रूर, वो पैसे नहीं थे इतने, लेकिन किसी जगह भी ऐसा नहीं था। खाने पीने का बड़ा ऐश आराम, और असली चीज़ खाते थे, बढ़िया बढ़िया घी खा रहे हैं, असली दूध खा रहे हैं, बालाई खा रहे हैं, और कोई मेहमान आ गया तो बड़ी खुशी हो जाती थी कि अगर आ गए हैं भाई तो चलो बैठ जाएँ, ज़रा कुछ खाना वाना पकवा के खिला दें। और रियाज करने का तो इतना अच्छा टाइम मिलता था, कोई फिक्र ही नहीं थी, कहीं जाना ही नहीं था, घर में बैठे हैं। और जब कभी राज दरबार में कोई काम वाम पड़ता था तो हमारे मामू जाते थे, ये दरबार गए, वहाँ गए, वहाँ गए, और जो यहाँ अपना बैठे हैं, महाराज के यहाँ से तनख्वाह मिल रही है, वो हो रहा है। और अब हालत ये हो गई है कि बात तो सब वही है, लेकिन अब ज़रा भाग दौड़ करनी पड़ती है प्रोग्रामों के लिए, जल्दी जल्दी भाई प्रोग्राम करो, बाल बच्चों का साथ है। और सिखाने का जहाँ तक ताल्लुक है, अब उस वक्त हमारे मामू लोग आज़ाद थे, बैठे थे, हमको दौड़ के बाहर जाना पड़ता। हम गए 2 महीने का टूर किया, 2.5 महीने का टूर किया, 15 दिन का गए, तो बीच में हो जाता है गैप।
1: नहीं तो आप ये सोचते नहीं हैं कि मामू की दी हुई चीज़ और बिस्मिल्लाह खान साहब ने जिसको इतने तक सजो कर रखा है
0: जी,
1: उससे आगे के लोग कैसे रखेंगे, उसकी भी कुछ फिक्र कर रहे हैं?
0: उसकी फिक्र हमारे पास रास्ते बता देने के है, पर हम खुद कैसे कर पाएंगे? हम बता देते कि भाई रियाज करना है, इस ढंग से रियाज करो, इसमें जैसे रोज़मर्रा का खाना पीना है कि खाना छूट नहीं सकता, खाना खाना ही पड़ेगा, वैसे इसको भी ले लो कि हमको रोज़ रियाज करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। और रियाज

करने के भी कुछ थोड़े तरीके होते हैं। एक तो ये है खाली राग में याद हो जाए जल्दी जल्दी, और तो राग आप याद कर लीजिए, ताल याद कर लीजिए, उस सुर में तासीर कैसे पैदा हो गई ये ज़रा मुश्किल की बात है। वो फिर वही बात आती है कि एक राग को लेके आज उसका रिकॉर्ड कर लीजिए, बजा लीजिए, और उसके बाद 8 दिन के बाद फिर उसी राग को लेकर चलिए, यानी 8 दिन बराबर चला वो, अब मुकाबला कीजिए, फिर महीने भर के बाद मुकाबला कीजिए, साल भर के बाद, तो यकीन मान लीजिए कि फिर वही चीज़ आई, एक साधे सब सजे सब साधे सब जाए। उसने एक ही राग को साल भर ऐसा किया है कि अब उसके जैसा वो राग करने वाला जरा कम नजर आएगा। ये सब

0: मुकाबला कीजिए साल भर के बाद, तो यकीन मान लीजिए कि फिर वही चीज़ आई, एक साधे सब सजे सब साधे सब जाए। उसने एक ही राग को साल भर ऐसा किया है कि अब उसके जैसा वो राग करने वाला जरा कम नजर आएगा। ये सब रियाज के कायदे हैं हमारे यहाँ।
1: वही तो बात है कि वो केदार वो
0: जी
1: यजवंती वो मार्गों जो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आपके सांस पर चढ़कर आता है वो
0: हमारे बुजुर्गों का कौल था कि अगर उन रागों का एक सुर भी तुम लेके चले हो तो उस सुर पर खाली टिक जाना ये साबित कर दे कि हाँ धर्म का सुर बोल रहा है, इसमें मज़ा आ रहा है। और तुम सुनने वाली ये सोचे कि भाई यही चीज़ बार बार आती रहे तो ज़रा और मज़ा आता रहे, ये वो रियाज का कायदा है। उसमें ये बात पैदा होती कि एक ही सुर ले लिया है, एक सुर से दूसरे सुर बढ़े तो वहाँ चैन मिलता जा रहा है।
1: अच्छा एक बात और बताइए
0: जी
1: कि आप क्लासिकी शास्त्रीय संगीत की चीज़ें तो बजाते ही हैं।
0: जी जी
1: आप जब अपनी लोक धुने
0: जी
1: जब आप शहराई को उतारते हैं
0: जी
1: तब कैसा आपको लगता है?
0: उस वक्त देखिए बात यह है कि ये छोटी चीज़ें जिसको हमारे यहाँ बनारसी धुन कहते हैं, कजरी की धुन कहते हैं, चैती कहते हैं, होली कहते हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि नाम तो है लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि ये एक सुकून पैदा होता है और इसके करने में कोई राग का कैद नहीं है कि इसमें फला राग होने ही चाहिए। इसमें तो मिश्र मेल के जितने भी राग चाहें एक नहीं चार आठ दस राग मिला दें लेकिन खूबसूरत ढंग से आना चाहिए। वो कायदा हमारे बनारस का अभी तक तो बाकी है।
1: तो अपनी खूबी और अपना कर्तव्य जो है उसको दिखाने का भी मौका उसमें
0: बिल्कुल बिल्कुल हमारे बनारस में देखिए ना अभी जैसे गिरजा देवी वगैरह हैं ये लोग अपना जो गाती हैं पुराने ढंग का हमारे बनारस का ढंग का तो अभी भी देखिए वो है तो छोटी चीज़ चैती लेकिन जब कहा आप सुनेंगे तो कैसा सज सजा के उसको गाएंगी कि आपको एक आनंद मिलता जाएगा कि भाई ये भी कोई चीज़ है। हमारे बनारस का ये खास कायदा है। वैसे तो हर जगह होता रहता है।
1: अच्छा मंदिरों में भी पहले लोग गाना बजाने किया करते थे?
0: मंदिरों में तो अपने आप जाके करते थे यानी वहाँ ये नहीं कि हाँ हाँ अपने आप जाते थे खाली इसलिए कि हम जाएंगे वहाँ और बाबा से महाराज से देवता से आशीर्वाद लेंगे और हम अपना जो कुछ भी वहाँ पेश करेंगे 10 ही मिनट प्रोग्राम करेंगे लेकिन हमको वहाँ से कुछ मिलेगा। तो मिलने मिलाने का भी सवाल ऐसा था कि ज़रूर मिलता था लेकिन जैसे देवता लोग आँखी से दिखाई नहीं देते वैसे वो दे भी देते थे और पता नहीं चलता था कि क्या मिल गया इसको। ऐसा होता था हर मंदिर पर प्रोग्राम होता था।
1: अच्छा बाहर भी आपको मुल्क से बाहर भी जाने का मौका मिला?
0: जी हाँ।
1: और हिंदुस्तान के भी कोने कोने में आप बराबर बड़े बड़े शहरों में जाते रहे, कस्बों में जाते रहे, बड़े बड़े परिवारों के साथ भी उठने बैठने और बजाने गाने बजाने का बड़े बड़े संगीतज्ञों के साथ भी मौका मिला।
0: हाँ।
1: तो कैसा अनुभव किया आपने कुल मिलाकर के आज का जो वक्त है और आने वाला जो वक्त है वो कैसा आपको नज़र आता है खासतौर से संगीत की दुनिया?
0: देखिए संगीत की दुनिया में वो एक ऐसी चीज़ थी कि जो उस ज़माने के लोग थे हमारे बचपन के बुज़ुर्ग हमारे बड़े उन लोगों के संगीत में जो बातें पैदा होती थी उसमें ऐसा मालूम होता था कि जैसे फैयाज़ खान साहब गाते थे अब ऐसा जम जमा के गाते थे हमारे ओमकारनाथ जी पंडित जी मरहूम अब्दुल करीम खान साहब गाते थे, अल्लाह दिया खान साहब गाते थे, ये सब जितने भी ऐसे लोग थे उसमें हमने अक्सर ये देखा कि इन लोगों के गाने में घबराहट नहीं थी यानी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी तैयार हो जाए नहीं बड़े इत्मीनान से चलते थे और उसका बड़ा लुत्फ़ लेते थे हम लोग। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि एक एक राग को लोगों तीन तीन चार चार घंटे तक वही गा रहे हैं और मालूम हो रहा है कि अभी अभी शुरू हुआ है बिल्कुल समा बन जाता था
1: मंत्रमुग्ध लोग सुन रहे हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे बड़ा मज़ा आता था महाराज वो कहाँ है। बहरहाल अब भी जो हैं मालिक उनको अच्छा रखे मैं सबके लिए ये दुआ देता हूँ कि अब भी जितने हैं सब अच्छे हैं लेकिन है क्या उस ज़माने में हम लोगों को फिक्र नहीं थी इतनी कि हम अपने बाल बच्चों को कैसे पालने हालांकि पैसा कम था
1: और
0: अब ज़माने में ये है कि जरा सा फिक्र लगी है कि बच्चों को पढ़ाना भी है बच्चों को सिखाना भी है अपने को प्रोग्राम भी करके पैसा भी लाना है।
1: तो ऐसा आप महसूस करते हैं कि जो फन में लगा हुआ आदमी है आर्ट में लगा हुआ आदमी है उसके लिए थोड़ी सी बेफिक्री का भी बात होना चाहिए।
0: मैं तो हम ये कहूँ
1: ऐसा इंतजाम होना चाहिए
0: कि
1: थोड़ी बेफिक्री हो और वो लग करके अपना काम करें
0: बस बस।
1: और मुल्कों में समझता हूँ इसके लिए काफ़ी कुछ है
0: बहुत है और दूसरे मुल्कों में तो ऐसा है साहब कि वो कलाकारों के लिए इतनी फैसिलिटी उनको दे दी है कि वो अपना खाएं अपने मोड अपने बनाएं रियाज करें और दूसरों को रियाज कराएं। ये चीज़ अगर हो जाए थोड़ी सी भी हमारे यहाँ तो उससे हम कहते हैं हज़ार नहीं अगर उसमें से दो चार भी निकल गए तो वो दो चार हज़ार को बता सकते हैं और उसको
1: वो
0: ज़रूरी है और कुछ खर्च नहीं है सिर्फ एक ख़ानदान या दो ख़ानदान जिसमें कि ऐसा है यहाँ ये आदमी इसको लेकर चलेगा उसके लिए थोड़ी सी मदद मिल जाए कि उसको फिक्र ना हो और अपना थोड़ा सा वो गाना बजाना संगीत शुरू करा दे कि भाई ये चलो, उसको ये फिक्र नहीं कि हमको रोज़ खाने के लिए बाजार से सामान लाना है, ये करना वो करना पकवाना है।

0: संगीत के विद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, सब चलते रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन ये भी जरूरी है कि आर्टिस्ट जो है
1: जी जी,
0: उसको भी थोड़ी
1: होना चाहिए,
0: थोड़ा सुकून उसको मिलना चाहिए, थोड़ी सी बेफिक्री हो,
1: बिल्कुल
0: वो अपना काम करे।
1: ये है एक बहुत बड़ी चीज है, अगर इस पर ध्यान दे दिया जाए थोड़ा सा। ये हम नहीं कहते कि 200 आदमी को करना, अरे भाई 2-4 आदमी को, पूरे हिंदुस्तान में 2-4 आदमी को ऐसा कर लीजिए और उनको छोड़ दीजिए कि भाई आप अपना इस काम को देखिए, आपको कोई फिक्र नहीं है, तो आप देखिए और टाइम लगा दीजिए कि आज साल भर में हम इनको क्या देखा था, साल भर बाद क्या देख रहे हैं, देखिए क्या होता है। और वो उसका सबूत तो ये हो जाएगा कि पहले शुरू करने के पहले जो कुछ थोड़ा सा है उसका रिकॉर्ड कर लीजिए और साल भर बाद फिर रिकॉर्ड मिला लीजिए, पता चल जाएगा क्या हुआ कि नहीं हुआ। और होगा क्यों नहीं, कार्य कसरत करना चाहिए, जो करेगा उसका होगा। लोग कहते हैं कि करता उस्ताद ना करता शागिर्द, यानी जो करेगा वही उस्ताद है असल में, और उस्ताद होकर अगर नहीं करता तो वो शागिर्द हो गया।
0: तो खान साहब, मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ आपने अपने बारे में, अपने ज़माने और अपने माहौल, अपने वक्त के बारे में बहुत कुछ बताया, अपने फ़न के बारे में, और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपके, अपने सुनने वालों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मैं साहब आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग कम से कम ये तो कर रहे हैं कि कलाकारों की जबान को दुनिया को सुना रहे हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रख्यात शहनाई सम्राट भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक नर्मदेश्वर उपाध्याय की भेंट वार्ता। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी आकाशवाणी प्रयागराज की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षयवट। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सुरेंद्र मोहन से उनका काव्य पाठ।
1: कविता का शीर्षक है बहुत हो गया युद्ध धरा पर। इस धरती पर जितने सर हैं उतनी दुनिया है, सब अपनी दुनिया के मालिक, उसमें रमते गुनते मनते प्रतिक्षण स्वप्न नया बुनते हैं। स्वाविवेक बुद्धि के आगे दुनिया को तुच्छ समझते हैं। कुछ लोगों के सिर में पूरी दुनिया बसती है, उनकी भौहें टेढ़ी होते ही देशों की सरहद धुआं उगलने लगती है। इनका मूल मंत्र ही यह है, तुम आपस में लड़ो मरो, उभय पक्ष को हम हथियार सुगमता से देंगे। लड़ते लड़ते जब थक जाना, चुपचाप हमारे पास चले आना, पलक झपकते युद्ध तुम्हारा हम रुकवा देंगे। ऐसे लोगों की कूटनीति से युद्ध सदा चलते ही रहते हैं। युद्ध विभीषिका की ज्वाला से इनको ठंड पहुंचती है। मानवता की रक्षा की बातें सुनकर इनको रातों में नींद नहीं आती। ये विनाश के आयुधों से दो देशों में युद्ध कराकर अपना मूल्यांकन करते हैं। ये हरनिश षड्यंत्रों की शक्लें बुनते अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। इनकी आंखों में एटम के शोले दिखते हैं, क्रुद्ध कपालिक भी इनकी मृदु मुस्कानों से डरते हैं। इनके ही षड्यंत्रों से वातावरण प्रदूषित

होता, नदियां प्रदूषित, समुद्र का जल स्तर उन्नत होता है, आलीशान शहर खदहर बनते हैं, निरीह जनों की लाशों का अंबार दिखाई देता है। इनका प्रयास यही है, बहुत हो गया युद्ध धरा पर, अब स्पेस युद्ध होगा। जो ग्रहों का स्वामी होगा उसकी मुट्ठी में जग होगा, बिना सैन्य बल के वसुधा पर उनका शासन निर्बाध चलेगा। अंतरिक्ष के किसी कक्ष में बैठा कोई अणुविज्ञानी मृत्यु किरण से देशों का संहार करेगा, सैनिक नहीं वरन पूरा राष्ट्र मरेगा। पूरी धरती के विनाश के ठेकेदारों, तुमको है कुछ होश, धरा पर कौन रहेगा? धरती का सौंदर्य झुलस जाएगा, नदियों ताल पोखरों का जल पीते ही पशु पक्षी मानो मर जाएगा। अपने गर्दन के सिर को वैज्ञानिक उड़ान से, अपने गर्दन के सिर की वैज्ञानिक उड़ान से तुम अंतरिक्ष में मानव जीवन को खोजो, धरती पर तो हमको जीवित ही रहने दो। दूसरी कविता का शीर्षक है दुनिया के लोगों को एक नेक सलाह। फरिंदू के महल की दीवार पर लिखा था, ए भाई, दुनिया ने कभी किसी का साथ नहीं दिया, तू दुनिया बनाने वाले के से दिल लगा और संतोष कर। दुनिया की हुकूमतें चंद रोजा हैं, तुम उस पर यकीन मत कर। तू नीचों को सुधारने में अपना वक्त बर्बाद मत कर। उन्हें सुधारने का मतलब गोल गुम्बज पर अखरोट रोकने की कोशिश है। माफ करना एक अच्छी बात है, पर दुनिया को सताने वालों के जख्मों पर मरहम नहीं लगाना चाहिए। जिस शख्स ने कदम कदम पर तुझ पर मेहरबानियां की हों, अगर वह तुझ पर एक जुल्म भी कर दे तो उसे माफ कर देना चाहिए। संसार की सारी चीजें उसी पैदा करने वालों का नाम लेकर शोर मचा रही हैं, सुनता वही है जिसके कान सुन सकते हैं। कयामत के दिन यह पूछा जाएगा कि तूने क्या किया, यह नहीं कि तू किस खानदान का है। जालिम बादशाह हुकूमत नहीं कर सकता, भेड़िए से चरवाहों का काम नहीं लिया जा सकता। मुसीबत के मारे इंसान को रोना चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह खुदा की मेहरबानियां छुपी हैं। तकदीर तख्त शानो शौकत हुक्म रोब और पकड़ धड़क, ये चीज़ें कभी टिकने वाली नहीं, इंसान के ये किसी काम की नहीं। फकीर पीर मुर्शिद हो या शायर, खुदा उसकी पुकार सुनता है। सच्चाई ईमानदारी नेक नियति खुदा को खुश करने का एक जरिया है। खुदा के खुश होते ही पूरी कायनात तुम पर मेहरबान हो जाएगी। कविता का शीर्षक है मेला उत्सव। मेला उत्सव त्यौहार आर सांस्कृतिक, मेला उत्सव त्यौहार आर संस्कृत का आधार, प्रकृति की कल्याणमयी तत्वों में देवत्व का आभास, सामूहिक वैचारिकी में परम सत्ता के विभिन्न रूपों का साधुवाद गुणगान, अभ्यांतरिक और लौकिक आनंद का प्रतीक कुंभ से अमृत बूंदों का उच्छलन, अंतरतम के कलुष के प्राच्छालन का सहज सरल सुअवसर का विधान, तीर्थ क्षेत्रों में कुंभ का स्नान, गंगा में डुबकी, जनमानस की लौक मृग मरीचिका का यथार्थ बोध करा, पारलौकिक आनंद की वर्षा में आप्लावित करा देती है। गंगा जमुना की धारा तो स्पष्ट दिखती है, नर मुंडों में प्रवाहित माँ सरस्वती की अदृश्य धारा जब दोनों धाराओं से आलिंगित होती है, तभी दैन्यहीन से पीड़ित मानव को आत्म तृप्त मिलती है। कविता का शीर्षक है आखिर तुम किस भाषा में बोलते हो। आप किस भाषा में बोलते हैं, किस भाषा में सोचते हैं, किस भाषा में स्वप्न देखते हैं? स्वजनों की याद में आखिर हाथ मलते गहरी गहरी निश्वासें लेते हो। मौत के अंतिम क्षणों में व्यक्ति की आंखों में तैरते भावों को आखिर

0: फिर आप किस भाषा में पढ़ते हैं? क्या आपको यह पता है कि हंसने रोने भाव प्रवण क्षणों की भाषा विश्व में एक सी ही होती है? भावों को व्यक्त करने में जब भी भाषा असमर्थ होती है तो वह आंसुओं की धारा सार बरखा में स्वतः मुख हो जाती है। शारीरिक हाव भाव व्यक्ति की कथा व्यथा को अभिव्यंजित कर देती हैं, पर ऐसी लकीरें खींची हैं तुमने जमीन और आसमानों के दिलों में, पूरे जहान में हर नयन नक्श प्रेम घृणा के व्यामोह में, आक्रोशित भयाक्रांत शालीन प्रवेश में, भावनाओं के अहमवादी उद्देलित क्षणों में, एटमी विस्फोटों से मानवता के विध्वंस में, शांतिवार्ता के आत्मिक मुस्कानों में, राष्ट्रों के खनिज संपदा के विदोहन की कुटिल कूटनीतिक स्वार्थी चालों में, भाषा के परत दर परत मुखौटे अधरों की विषबुझी कुटिल मुस्कानों को आखिर तुम किस भाषा में पढ़ते हो? पैदा तो सभी इंसान ही होते हैं, उन्हें धर्म की बेड़ियां पहनाकर मानवता की क्रूर हत्या करने में, मात्र अपने अहंकार की तुष्ट के लिए धार्मिक उन्माद फैलाकर हस्ती खिलखिलाती बस्तियों को शमशान बनाने में आखिर तुम्हें क्या मिलता है? दूध मुहे बच्चों की छत बिछत लाशें, विधवाओं का करुण आर्तनाद, बूढ़ी माँ की पथराई आंखों की पीड़ा को देख आखिर तुम किस कलेजे से मुस्कुराते हो? सच थोड़ा सा घटे या बढ़े तो सच नहीं रहता, पर झूठ के विस्तार की कोई सीमा ही नहीं होती। आणविक विस्फोटों से मुल्क की सरहदें बिगड़ सकती हैं। ये पृथ्वी, ये सागर, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये प्राकृतिक सुषमा, धरती का श्रृंगार थोड़े दिनों के लिए दूषित प्रदूषित विखंडित हो सकती है। मानव मांस का लोथड़ा बना सड़कों पर ढुलक सकता है, पर वसुधा का फिर भी जीवन क्रम चलता है। पंछियों के कलरों, नदियों के कलकल निनाद, पूजा संखजान फिर व्यक्ति को जीवंतता प्रदान करती हैं। कितने हिटलर मिसोलनी, कितने सिकंदर हलाकू, कितने परमाणु अणुपरमाणु बमों के धमाके जाने कहाँ खो गए। आदमी आज भी बिहस रहा है, महावीरी संदेश आज भी चीख चीख कर कह रहा है, जियो और जीने दो।
1: अक्षय वट कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुरेंद्र मोहन से उनका काव्य पाठ। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी

0: इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
1: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
3: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
1: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
5: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितम्बर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा

0: राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
2: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
3: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं, उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
1: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात

0: 9 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांगशू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister JP Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।

0: ये पॉलिसी थी कि लोगों को महरूम रखा जाए ताकि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी हुकूमत के आगे हाथ फैलाएं। जनाब मोदी ने कहा कि पिछली हुकूमतों को लाइसेंस राज बेरोज़गारी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता था, जबकि उनकी हुकूमत का पैदावार से वाबस्ता तरगीबाती मॉडल मौके तख्लीक करता है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत सिर्फ जाबते ही तब्दील नहीं कर रही है बल्कि वो जाब्तों की पूरी पॉलिसी ही तब्दील कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत हमेशा एक मुश्तरका मुस्तकबिल के जज्बे में यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि यही सबब है कि भारत की G20 की सदारत के दौरान उसका रहनुमा उसूल एक कुर्राए अर्ज एक ख़ानदान एक मुस्तकबिल था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ बरसों में दुनिया ने कई नशेब व फराज देखे हैं और इन तजर्बात ने एक बात को बहुत वाज़ेह कर दिया है कि हर मुल्क का मुस्तकबिल दूसरे मुल्कों के मुस्तकबिल से वाबस्ता है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है, आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है। इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 20 खलाई स्टार्टअप्स के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान CEO और बानियों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खलाई टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करें। जनाब मोदी ने वाज़ेह किया कि मुल्क का खलाई शोबा आलमी सतह के बासलाहियत अफराद कंपनियों और सरमायाकारी को रागिब कर सकता है। उन्होंने तजवीज़ किया कि एक ऐसा इको निज़ाम और माहौल वज़ा करना चाहिए जहां जब भी दुनिया खला के बारे में सोचे तो वो भारत की तरफ देखे। खलाई सनत और दीगर समाजी तरक्याती शोबों के दरमियान वसी तर तआवुन पर जोर देते हुए वजीर आजम ने खला के लिए नौजवान जहनों में जस्तजू और दिलचस्पी पैदा करने की गरज से अटल टिंकरिंग लैब के साथ ज्यादा से ज्यादा शराकत दारी की तरगीब दिलाई। जनाब मोदी ने नए दौर में खलाई शोबे के कायदीन को हौसला दिखाने और क्यादत करने के लिए मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि इस शोबे ने जो एतमाद जाहिर किया है उसने इस विजन को मुस्तहकम किया है जिसके साथ खलाई शोबे को निजी शराकत के लिए खोला गया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के हेडक्वार्टर में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। तकरीब के बाद जवानों से खिताब करते हुए जनाब शाह ने वाजे किया कि साबिक वज़राए आला को SSB की साबिका तकारीब में मदऊ किया गया था लेकिन उन्होंने शिरकत न करने का इंतखाब किया। उन्होंने कहा कि जब से शुभिंदु अधिकारी वजीर आला बने हैं सरहदी तहफ़ के लिए मुकम्मल तआवुन फराहम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम बाकायदा कागजात पहुँचने से कबल ही कामों को फ़ोन का कॉल के ज़रिए हल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाकी मानदा 19 एकड़ मतलूबा आराजी भी सुपुर्द की जा रही है। शाह ने बताया कि मगरबी बंगाल में मामला से मुतक वसी पैमाने पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दरअंदाजी को ख़त्म करने के लिए ममता बनर्जी से की गई बार बार की दरख्वास्तों के बावजूद वादों के मुताबिक ज़मीन फराहम नहीं की गई।
2: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू सिख जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: इस मौके पर SSB के बहुत से कैंपों के लिए संगे बुनियाद भी रखा गया जिनके लिए तकरीबन 179 करोड़ रुपए मालियत के कामों का अहाता किया गया है। वजीर दाखिला ने बताया कि जब से मरकज़ में BJP हुकूमत इख्तदार में आई है सरहदी तहफ़ के लिए जिम्मेदारी अमले की बहबूद को अव्वलिन तरजीह दी जा रही है। उन्होंने वाजे किया कि SSB नेपाल और भूटान जैसे मुल्कों के साथ खुली हुई सरहदों की हिफाजत करने का चैलेंज से पुरकाम अंजाम दे रही है। उन्होंने इसे दुश्वार तरीन फराइज में से एक करार दिया। मजीद बरआ उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत ने खित्ते में निगरानी में इजाफा किया है। जनाब शाह ने यादा

0: किया कि ममता बनर्जी ने वहां सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए मतलूबा आराजी फराहम नहीं की थी, शुभिंदो अधिकारी ने इसे फराहम किया है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि अंदाजे से कम पैदावार के बावजूद घरेलू मांग से निमटने के लिए मुल्क में शकर का खातिरखा ज़खीरा मौजूद है। शकर की कीमत में हालिया इजाफे के तनाजुर में हुकूमत ने कई इकदाम किए हैं ताकि शकर की खातिरखा दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सारिफीन के लिए मुस्तहकम कीमतों को बरकरार रखा जा सके। सारिफीन के उमूर खुराक और अवामी तकसीम की वजारत का कहना है कि वह सूरत हाल पर कली नज़र रख रही है। शकर की कीमत में हालिया कुछ हफ़्तों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माह की 20 तारीख को शकर की कीमत 48 रुपये फ़ी किलोग्राम थी, जो कल बढ़कर तकरीबन 55 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गई। वजारत ने कहा कि शकर की कीमत में हालिया इजाफे की वजह इथेनॉल की पैदावार के लिए शकर की मुंतकली को करार देना मुनासिब नहीं है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: हुकूमत शकर की फराहमी बढ़ाने के लिए ज़खीरा अंदोजी के अमल के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वजारत ने मुशाहदा किया है कि कुछ शुगर मिलों और ताजरों की सट्टेबाजी और ज़खीरा अंदोजी के अमल ने हालिया दिनों

तुम्हें बुरी बात है ये, हर बात पे रूठा ना करो, क्योंकि अब इन गिले शिकवों को दिल से मिटा दीजिए। जो रूठे हैं अपने उन्हें गले से लगा लीजिए। ये जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी उलझनों में, चले आज हर फासला खुद ही मिटा दें। ना नाराजगी रहे बाकी, ना कोई गिला रहे, मोहब्बत के दीप से हर अंधेरा भगा दें।

अभी आप सुन रहे थे निदा फाजली की गजल, आवाज थी जगजीत सिंह की। अब पेश खिदमत है वाजिदा तबस्सुम की ये गजल, आवाज एक बार फिर से जगजीत सिंह की है। मिट मिट के मोहब्बत में तेरी यूं तुझको पुकारे जाते हैं, कट कट कर दरिया की तह में जिस तरह किनारे जाते हैं, न जाने बहारों की क्या क्या वो खुशबू छोड़ जाते हैं, जो लोग मोहब्बत की राहों में खुद को मिटाए जाते हैं। अगर कभी तन्हाई तुम्हें सताए और रात ढलने लगे तो किसी टूटते तारे से हमारी बात कह देना कि हम तो कब के मिट चुके हैं तेरी चाहत की राहों में, बस अब तुम्हारी यादों का सहारा बाकी है सांसों में।

कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हरफे दुआ में हूँ, मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है।

कहकशा कार्यक्रम की अगली पेशकश यानी आखिरी पेशकश है लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत रचना।

इसी गीत के साथ ही कहकशा कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है नाटक दाढ़ी वाला हाथी। लेखक हैं कलीम उर्फी।

0: सौर्यकोटिसमत्प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती, पिता महादेवा। लड्डुन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुन का भोग लगे पंत करे। अरे क्या है उमेश?
1: पिताजी।
0: हुआ क्या बेटा?
1: पिताजी पिताजी, मैं कल रात से बहुत विचलित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत व्याकुल हूँ। दिल उछल रहा है, सीने में दौड़ रहा है।
0: बताओगे हुआ क्या?
1: पिताजी पिताजी, रात 9 बजे जब मैं मंदिर से आ रहा था, एक ज्योतिषी पंडित से टकरा गया। ज्योतिषी पंडित मस्तक रेखा हस्त रेखा पढ़ने में बहुत निपुण है।
0: हुआ क्या?
1: पिताजी, निपुण ज्योतिष पंडित ने बताया बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अष्टक लगा है, मस्तक रेखा और जीवन रेखा पर शनि का प्रभाव है, राहु केतु छिपकर देख रहा है, मंगल अस्त हो चुका है, शुक्र की कृपा दृष्टि तनिक भी नहीं है, गुरु को राहु केतु ने जकड़ लिया है, सूर्य को शनि ने पकड़ लिया है, सूर्य झटपट आ रहा है, अकेला बुद्ध मारा मारा फिर रहा है। ज्योतिषी पंडित ने संकट भगाने के लिए महामृत्युंजय का जाप करवाने के लिए कहा है। 5,000 रुपया खर्चा आएगा, नहीं तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा।
0: अरे अरे अरे, राम न करे, राम न करे, राम की कृपा बनी रहे, राम अपनी छाँव में रखे।
1: पिताजी, राम, राम, राम, राम, पिताजी, रात मैंने एक बहुत बुरा सपना भी देखा।
0: बुरा स्वप्न? क्या देखा बेटा?
1: पिताजी
0: बताओ ना, बुरा स्वप्न बता देना चाहिए बेटा, बताने से बुरे स्वप्न का बुरा प्रभाव नष्ट हो जाता है।
1: पिताजी मैंने देखा।
0: क्या देखा?
1: एक बहुत बड़ा, बड़े पेट का दाढ़ी वाला हाथी।
0: दाढ़ी वाला हाथी? राम राम राम राम।
1: दाढ़ी वाला हाथी घर का जितना भी राशन था साफ खा गया। एक कनस्तर घी पी गया, एक कनस्तर कड़वा तेल पी गया, 10 किलो चाय की पत्ती भाग गया, 1 बोरी चीनी खा गया।
0: राम राम राम राम, हाथी की दाढ़ी तो नहीं होती बेटा।
1: और पिताजी, रात एक उल्लू भी बोल रहा था।
0: राम राम राम राम।
1: रात कुत्ते भी बहुत रो रहे थे।
0: राम राम राम राम।
1: और पिताजी पिताजी, छत पर बिल्ली भी अपने परिवार के साथ रो रही थी।
0: राम राम राम।
1: और तो और, रात 12 बजे से मेरी दोनों आंखें फरफर फरफर फरफर करके भड़क रही हैं।
0: बेटा राम राम, ये दोनों आंखें?
1: हाँ पिताजी। और पिताजी पिताजी, सुबह भोर मुर्गा के स्थान पर काला कौआ बोल रहा था।
0: राम राम राम राम।
1: पिताजी, कार्यालय से एडवांस लेकर महामृत्युंजय का जाप तो अवश्य

0: करवाऊंगा। जब तक आप गायत्री मंत्र का जाप करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, संकट घर में घुसने ना पाए, दाढ़ी वाला हाथी सब राशन खा गया।
1: रेखा,
2: अब महामृत्युंजय का जाप करवाने से कुछ नहीं होगा बेटा। लो, दाढ़ी वाला हाथी आ गया।
0: दाढ़ी वाला हाथी आ गया। घंटी बज रही है। रेखा, रेखा चिल्ला रहा है।
1: रेखा,
0: अरे अरे, ये तो मजले साले जी है, घंटी बजा रहे हैं, रेखा रेखा चिल्ला रहे हैं।
2: देखा नहीं, मजले साले की फ्रेंच कट दाढ़ी है। हाँ। और वही दाढ़ी वाला हाथी है, घर में घुसने वाला है, घंटी बजा रहा है और रेखा रेखा चिल्ला रहा है।
1: रेखा, रेखा।
2: अरे अब दरवाजा खोलो ना बेटा, न खोलोगे तो दाढ़ी वाला हाथी चला छोड़े ही जाएगा।
0: ठीक है पिताजी, खोलता हूँ।
3: नमस्कार चाचा जी, नमस्कार। चरण स्पर्श करता हूँ चाचा जी।
2: चरणजीवी भव।
3: अरे उमेश, तुमने मुझे देखा नहीं, नमस्कार नहीं किया।
0: नमस्कार।
4: कौन आया है? अब मैं नहा रही थी, कोई चिल्ला रहा था रेखा रेखा। अरे मजले भैया आप, अरे आप कब आए?
0: अभी आए हैं तुम्हारे मजले भैया।
4: नमस्ते मजले भैया।
3: नमस्ते, नमस्ते बहना, नमस्ते।
4: बहुत दिनों के बाद आए, न कोई फोन किया न पत्र आया, कहाँ थे मजले भैया आप?
3: अरे कहाँ रहूंगा रेखा, सीमा रीता अनीता के यहाँ था।
4: सब दीदी लोग कैसी हैं?
3: सब अच्छी हैं रेखा, सब अच्छी हैं, अपने बाल बच्चों के साथ सब कुशल मंगल से हैं।
4: अरे बच्चों कहाँ हो, तुम्हारे मजले मामा जी आए हैं। हाँ छुट्टी है ना, ना जाने बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, ऊपर होंगे, देखकर बहुत प्रसन्न होंगे।
3: देखो पापा, बच्चों के लिए मैं 5 किलो देशी घी की मिठाई।
4: अरे मजले भैया, 5 किलो देशी घी की मिठाई लाने की क्या आवश्यकता थी, बच्चे खाकर बीमार हो जाएंगे।
3: अब क्या बताऊं रेखा बहन, लेकर मैं आ रहा था, ट्रेन में डिब्बा ही छूट गया। पिस्ता बादाम की 500 रुपए किलो वाली मिठाइयाँ थी।
2: विजय बेटे जी, तुम्हारा 2500 रुपए का शुद्ध घाटा हो गया।
0: हाँ चाचा जी,
3: यहाँ स्टेशन के पास हरे लाल की दुकान से शुद्ध देशी घी की बनी 5 किलो नमकीन ला रहा था, 200 रुपए किलो वाली, अब वो रिक्शे पर ही छूट गया।
2: विजय बेटे, अरे तुम्हारा फिर 1000 रुपए का शुद्ध घाटा हो गया है।
4: भैया किसका मुँह देख कर चले थे, मिठाई भी छूट गई, नमकीन भी छूट गया।
2: अरे भाई, चलते समय शीशे में अपना ही चेहरा तो देखकर हर कोई चलता है। राम राम राम राम। आज नहीं, कई बार से ऐसा हो रहा है, कभी ट्रेन में मिठाई का डिब्बा छूट जाता है, कभी नमकीन कुली लेकर भाग जाता है, कभी फल रिक्शे से गिर जाता है, कभी कपड़ा कोई चुरा ले जाता है। देखो विजय बेटे, शीशे में अपना चेहरा देख कर ना चला करो, समझे, तुम्हारा बड़ा घाटा होता है और बच्चों को भी कुछ नहीं मिलता, केवल मुँह देखते रहते हैं बेचारे।
4: पिताजी, जब से मछले भैया 15 लाख रुपया लेकर अपने से रिटायर हो गए हैं ना, बहुत भूलने लगे हैं।
2: हाँ बहू, जब आते हैं 2-3 हजार की मिठाई नमकीन खिलौना कपड़ा ये सब ट्रेन में रह जाता है।
3: अब हाँ चाचा जी, अब ऐसी ही बुद्धि हो गई है, अब बच्चों की मिठाई नमकीन भी भूल जाता हूँ।
2: विजय बेटे
3: जी,
2: देखो भैया तुम ना लाया करो, अरे बार बार भूल जाते हो, पैसा देकर मुझसे मंगवा लिया करो, मैं ला दूंगा।
3: हाँ चाचा जी, अच्छी बात है, आपसे ही मंगा लूंगा।
2: देखो देखो, अभी बच्चे खेल रहे हैं, आकर मामा जी को खाली हाथ देखेंगे, वो क्या समझेंगे, जब तक बच्चे खेल कर आएंगे मैं लाए देता हूँ। 5 किलो क्या करोगे, 1-1 किलो मंगवा लिया करो, कल फिर ताजी ले आऊंगा।
3: हाँ चाचा जी, लेकिन वो ऐसा है कि मेरे पास तो वो 1000 रुपए का नोट है।
2: हुआ, बड़ी दुकान से मिठाई नमकीन लाऊंगा, 1000 का नोट टूट जाएगा।
3: स्नान करने के बाद मैं ही चलता हूँ।
2: देखो बेटे, 1000 का नोट लेकर मैं भाग नहीं जाऊंगा।
3: अरे नहीं चाचा जी, कैसी बातें करते हैं, अब आप कहाँ कष्ट करिएगा, मैं स्वयं जाऊंगा चाचा जी।
2: अच्छा बेटे, तुम ही ले आना।
4: मछले भैया, नाश्ते में क्या लेंगे आप?
3: अरे जो तुम खिलाओगी, अब छोटी बहन हो, बड़े भाई को तो अच्छा ही लगेगा।
4: अच्छा मछले भैया, पराठा और आलू पनीर की सब्जी बनाए देती हूँ, दही भी जमी हुई है।
3: रेखा, वो देशी घी का हलवा भी बना देना।
4: वो तो बनाऊंगी ही।
3: रेखा, पराठा भी तरह वो देशी घी में बनाना।

0: स्वादिष्ट होता है।
1: हाँ मजले भैया, पराठा देशी घी का ही बनाऊंगी। कल ही एक कनस्तर देशी घी आया है।
2: एक कनस्तर?
1: मुझे पता है आपको देशी घी का पराठा बहुत पसंद,
2: बहुत पसंद है।
1: अब आप स्नान पूजा अर्चना कर लीजिए। हाँ
0: अब स्नान पूजा अर्चना बाद में करूंगा रेखा, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। अब पेट में चूहे कूद रहे हैं। कल सुबह 8 बजे अनीता के यहाँ से खा कर ट्रेन में बैठा था। रास्ते में खाने के लिए जो अनीता ने दिया था वो मैं रिक्शे पर ही बैठ कर खा गया। अब 24 घंटे से भूखा हूँ।
1: अच्छा भैया मैं पराठा सेकती हूँ, तब तक तुम पिताजी से बात करो। बड़ा अच्छा लग रहा है सच, घर भरा भरा लग रहा है। अभी मैं आपको जाने ना दूंगी भैया।
0: अरे मैं अभी ना आता, मैंने सोचा सब मुझको याद कर रहे होंगे, देर से जाऊंगा तो चाचा जी बहुत क्रोधित होंगे और कई महीने तक जाने भी नहीं देंगे। क्यों चाचा जी?
2: हाँ बेटे हाँ, अरे कई साल ना जाने देता तुमको।
3: वाह बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना है भाई, वाह। ना देशी घी की बात ही कुछ और है, वाह।
1: भैया और लीजिए ना, शुद्ध देशी घी का है। पिताजी क्रीम से निकलवा कर एक कनस्टर देशी घी लाए हैं, लीजिए ना और खाइए।
3: लगता है शुद्ध देशी घी है।
1: मछली भैया और लीजिए ना, आप तो बड़ा हाथ रोक कर खा रहे हैं।
0: लेता हूँ। अब
2: विजय बेटे देखो खाते जाओ, 25 घंटे से भूखे हो ना, इस कारण भोजन में अधिक स्वाद लग रहा होगा। खाते जाओ
1: और लीजिए भैया, अब संकोच क्यों कर रहे हैं, लीजिए ना।
3: लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है ये देशी घी जो चाचा जी लाए हैं क्रीम वाला, इसकी तो बात ही कुछ और है। शुद्ध देशी घी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। वाह बहुत सुंदर रेखा, बड़ी प्रसन्नता की बात है तुम्हारे यहाँ शुद्ध देशी घी का भोजन बनने लगा। लगता है उमेश का महंगाई भत्ता बढ़ गया है और चाचा जी की पेंशन भी बढ़ गई है भाई। वाह
2: अरे विजय बेटा, न उमेश का महंगाई भत्ता बढ़ा है और न मेरी पेंशन बढ़ी है। हमारे यहाँ रोज देसी घी का भोजन नहीं बनता, ये तुम्हारे लिए बहू ने बनाया है, हमें भी स्वाद मिल रहा है।
1: मजले भैया दो एक रोटी और लीजिए ना।
3: दो एक क्या रेखा, अभी 8-10 रोटी और लूंगा, बस घी चुपड़ चुपड़ कर देती जाना। मैं मूर्ख थोड़े हूँ, सदा अपने पास चूरन भारी भोजन हजम रखता हूँ। ये देखो बहुत स्वादिष्ट भोजन, वाह वाह रेखा वाह।
1: दही और लीजिए मजले भैया, दही।
3: दही बहुत स्वादिष्ट है, दही भी बहुत स्वादिष्ट है।
2: अरे विजय बेटे खाते जाओ, बहू बड़ी सयानी है, पेट देख कर भोजन बनाती है, किंतु मुझे आज विश्वास है कम पड़ जाएगा बहू।
3: कम पड़ जाएगा?
0: अब तुम लोग जाने नहीं दे रहे हो, आज 10 दिन हो गए, अब एक दिन के लिए आया था।
4: मजले भैया 10 दिन हो गए, कितने काम पड़े होंगे।
0: नहीं नहीं नहीं, कोई काम नहीं, सेवा निवृत्त।
2: अरे भैया विजय का क्या, न जोरू न जाता भगवान से नाता, जिसने मुंह चीरा है वो भोजन दे रहा है, भाग्य में जहाँ का भोजन होता है विजय वहाँ पहुँच जाता है। हाँ
1: मछले भैया, पनीर का पकौड़ा आपको बहुत पसंद है ना, गर्म गर्म बनाकर लाई हूँ आपके लिए, लीजिए खाइए।
0: अरे बहुत नहीं रेखा, बहुत बहुत पसंद है। वाह बहुत स्वादिष्ट है,
3: शुद्ध कड़वा तेल, वाह वाह बहुत स्वादिष्ट बना।
2: हे विजय बेटे जरा धीरे धीरे खाओ, मुंह जल जाएगा।
3: अपने अपने
2: तोड़ तोड़ के खाओ ना, नहीं गले में फंस जाएगा।
3: वाह अरे चाचा जी अपने अपने आप भी स्वाद लीजिए ना। अरे उमेश तुम भी तो लो पकौड़ा, बड़ा स्वादिष्ट बना है भाई।
4: है कहाँ जो लूँ,
3: क्या पनीर पकौड़ा था, बहुत स्वादिष्ट बनाया है रेखा, बहुत स्वादिष्ट। रेखा और है क्या?
1: अब नहीं है मछले भैया, कल फिर बना दूंगी भैया, कल फिर बना दूंगी।
4: 500 ग्राम पनीर लाया था।
0: अरे उमेश इतने मुंह में केवल 500 ग्राम पनीर, अरे 1000 ग्राम से कम न लाया करो भाई।
4: अरे मछले भैया मित्रों से उधार लेकर घर चला रहा हूँ, तब किचन से देशी घी की सुगंध आती है, उधार ना लूं तो घासी घी की सुगंध भी ना आए। 1 महीने का नहीं कई महीने का बजट बिगड़ गया है, 1 महीने का राशन 10 दिन में साफ हो गया।
1: कैसी बात कर रहे हैं, 10 दिन में राशन साफ होने का भैया से क्या संबंध?
3: क्या संबंध?
0: रेखा रेखा

0: देखो रेखा।
1: जी भैया।
0: आज भोजन में क्या क्या बना रही हो?
1: भिंडी अरवी की सूखी सब्जी, भरवा परवल करेला और हींग आलू।
0: देखो रेखा, मेरे लिए रोटी न बनाना।
1: क्यों मजले भैया, आज आप भोजन नहीं करेंगे?
0: नहीं नहीं, नहीं, नहीं मेरे लिए रोटी नहीं, पराठा सेक दो, देशी घी का पराठा बहुत स्वादिष्ट होता
1: है। घी का पराठा?
0: घी तो अभी होगा ना?
1: हाँ मजरे भैया, अभी आधा कनस्टर है।
0: आधा कनस्टर है, फिर तो सूजी या गाजर का हलवा भी बना देना। खाने के बाद मीठा खाते बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा स्वाद मिलता है।
1: अच्छा भैया बना दूंगी।
0: दही तो होगा ना?
1: नहीं भैया, आज दही नहीं जमी, दूध नहीं बचा ना, आपने रात में दूध पी लिया था ना। अभी 250 ग्राम ताजी दही मंगवाती हूँ।
0: अब 250 ग्राम से क्या होगा, इतने मुंह, अब 1000 ग्राम से कम दही न मंगाया करो उमेश, अब 1000 ग्राम से कम दही न लाया करो भाई।
2: उमेश बेटा।
3: जी पिताजी।
2: 1000 ग्राम मीठी दही ले आओ और विजय से 1000 का नोट ले लो। बच्चों के लिए ताजी मिठाई भी लेते आना, 20 दिन से मिठाई आजकल पर तर रही है।
3: जी पिताजी। जी मजले भैया, बच्चों के लिए कितनी मिठाई लाऊं?
0: देखो अभी रहने दो उमेश, वो दही कल ले आना, आज बहुत सी चीजें बनी है ना, रेखा ने सब बना दिया है। अब देखो बच्चों का मिठाई खाने का मन भी नहीं है, आज सुबह से तो एक बार भी नहीं कहा उन्होंने।
4: पिताजी मजले भैया तो जाने का नाम ही नहीं लेते,
3: 25 दिन हो गए, एक बूंद भी आंखों में लाज का पानी नहीं, छोटी बहन के यहाँ मांग मांग कर खाते हैं।
2: हाँ उमेश, ये तो महासंकट है, राम कृपा करें, स्वप्न में तो दिखाई दिया था एक दाढ़ी वाला हाथी घर में घुस आया।
4: हाँ पिताजी।
2: क्या किया जाए उमेश, कैसे ये संकट टले?
3: पिताजी यदि महामृत्युंजय का जाप कराया जाए तो क्या ये संकट टल जाएगा? यदि ऐसा हो सकता हो तो आज ही मैं अपने कार्यालय से एडवांस ले लेता हूँ।
2: धीरज रखो बेटा, कोई उपाय अवश्य निकलेगा। मैं रात भर एक पल नहीं सोया, जागता रहा, विचार करता रहा, क्या किया जाए जो दाढ़ी वाला हाथी चला जाए।
4: हाँ पिताजी, मगर निर्लज्ज कहीं ना गया तो क्या होगा? रेखा समझती नहीं और खिलाया जा रही है और निर्लज्ज खाए जा रहा है। पिताजी पिताजी मुझे ऐसा लगता है दाढ़ी वाला हाथी जाएगा नहीं।
2: राम न करे, राम न करे। अरे ऐसा बुरा मुंह से ना निकालो उमेश।
3: निर्लज्ज छोटी बहनों के यहाँ खा रहा है, खाता ही जा रहा है।
2: रेखा ने देसी घी का भोजन खिला दिया है ना, मुझे भय है साल भर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा।
4: अरे पिताजी पिताजी आप मुझे मना करते हैं और अपने मुंह से अशुभ निकाल रहे हैं, साल भर ना जाएगा। राम न करे, राम न करे, राम न करे।
0: रेखा वो आलू गोभी वाली सब्जी जरा।
1: जी जी दिया भैया, ये लीजिए।
0: वो उसमें बूंदी का रायता है क्या?
1: हाँ जी, हाँ वो लेंगे। हाँ ये लीजिए, ये
0: ये पालक पनीर वाली सब्जी थोड़ा।
1: हाँ, ये लीजिए लीजिए।
0: एक पूड़ी
1: लीजिए, दो पूड़ी ले लीजिए।
0: एक तो क्या देती हो, दिया करो तो थोड़ा। रेखा बस, अरे और लीजिए करके तुमने बहुत खिला दिया।
3: अब बस कर रहे हैं भैया, किसी के लिए एक पूड़ी एक चूर सब्जी भी नहीं बची।
1: मुंह ना बनाओ, अभी आटा गूंथ कर पूरी बनाए दे रही हूँ, अचार के साथ खा लेना।
3: हाँ हाँ खा लूंगा, अरे कुछ मिले भी तो।
0: वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना था भाई, दो गिलास पानी पी चुका, हाथ धो चुका, किंतु मुंह से अभी तक देशी घी का स्वाद जा ही नहीं रहा है और हाथ में देशी घी की सुगंध आ रही है। मन करता है हाथ सूंघता रहूं, सूंघता रहूं।
3: अरे तो सूंघते रहिए ना, मना किसने किया है?
1: मछले भैया, आप कई दिन से कह रहे हैं ना आज कचौड़ी बनाने जा रही हूँ।
0: अरे वाह, देशी घी की कचौड़ियाँ, वाह वाह वाह, देशी घी की तो बात ही कुछ और है।
3: मछले भैया, देशी घी की बात और क्यों ना हो, 180 रुपए किलो पड़ता है, पिताजी अपने सामने क्रीम से निकलवा कर लाते हैं।
2: अरे विजय बेटे।
0: जी चाचा जी।
2: कब जा रहे हो बेटा?
0: बस चाचा।

0: जी आप नहीं रुकूंगा, आप लोग के कहने से बहुत रुक चुका, आप एकदम नहीं रुकूंगा।
1: विजय बेटे जब का टिकट कहो उमेश ला देगा।
2: हाँ बिल्कुल ला दूंगा, हाँ मछली भैया मैं ला दूंगा, चाहे उस दिन कार्यालय ना जाना।
1: देखो बेटे आज 10 तारीख है, 20-21 का ला दो।
2: हाँ हाँ बिल्कुल, अरे 20 का ला दूंगा, 20 का ना मिला तो 19 का ला दूंगा, 19 का ना मिला तो 18 का ला दूंगा, 18 का नहीं तो 17 का ला दूंगा, 17 को नहीं तो 16 का ला दूंगा, 16 को।
1: अरे उमेश बेटे, उमेश बेटे टिकट लाने इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो भाई, केवल बनियाइन पहने हो, अरे चप्पल तो पहन लो ना। बहुत देर में आए उमेश, कहाँ थे?
2: मझले भैया को ट्रेन में बैठाकर मंदिर चला गया था।
1: राम की कृपा से संकट टल गया।
2: हाँ पिताजी, मझले भैया के जाने की खुशी में मंदिर वाली मिठाई की दुकान से 1 किलो मोतीचूर का लड्डू लाया हूँ।
1: अच्छा किया, अच्छा किया, अरे भगवान की कृपा से संकट तो टल गया ना।
2: बिल्कुल पिताजी।
1: देखो तो ये कौन आया?
2: देखता हूँ।
3: नमस्कार चाचा जी, नमस्कार, साधन चरण स्पर्श चाचा जी, साधन चरण स्पर्श।
1: विजय तुम तो ट्रेन में बैठ गए थे।
3: चाचा जी मैं अगले स्टेशन पर उतर गया, टेम्पो पर बैठकर वापस चला आया, बच्चों के लिए 5 किलो देसी घी की मिठाई और 5 किलो देसी घी का नमकीन ला रहा था, लेकिन वो टेम्पो में ही छूट गया चाचा जी।
1: क्यों उतर गए, क्यों वापस आ गए भाई?
3: अब चाचा जी आपके प्राण की सौगंध, एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ऐसा लगा आपका मन नहीं था कि मैं जाऊं, अब आपने मन न होते हुए भी भारी मन से मुझे जाने की आज्ञा दे दी थी। चाचा जी यदि मैं चला जाता तो कितना पाप लगता, और उमेश भी मन से नहीं चाहता था कि मैं जाऊं।
2: मैं भी मन से नहीं चाहता था कि आप जाएं, अरे तभी तो मैं मंदिर गया था कि आप वापस लौट आएं।
3: मुझे पता है उमेश, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, रेखा से भी अधिक मुझसे प्रेम करते हो।
2: हाँ, हाँ, रेखा से भी अधिक प्रेम करता हूँ, और पिताजी, पिताजी तो आपको आंख का तिल समझते हैं।
3: पता है, पता है, पता। अरे ये मिठाई का डिब्बा कहाँ से आया, देखो देखो कौन सी मिठाई है, अरे वाह बिल्कुल ताजी है, वाह वाह वाह वाह, बड़ा स्वादिष्ट मोतीचूर का लड्डू, शुद्ध देशी घी का बना है, वाह वाह, अरे वाह, मुंह में रखते एकदम घोलता जा रहा है भाई।
4: अरे मछले भैया आप,
3: देखो चाचा जी का मन नहीं था इस कारण मैं वापस लौट आया, अब जाते समय चाचा जी बहुत खिन्न हो गए थे ना।
4: बहुत अच्छा किया मझले भैया, बहुत अच्छा किया, घर बड़ा सूना सूना लगने लगा था। देखो बच्चों, मझले मामा जी तुम्हारे लिए मोतीचूर का लड्डू लाए हैं।
3: मैं हाँ।
4: पता नहीं बच्चे कहाँ खेलते रहते हैं। मैं आपके लिए देशी घी का नमकीन बनाती हूँ, अभी कनस्तर में कुछ देशी घी पड़ा है।
3: पड़ा है, देशी घी का नमकीन बड़ा ही स्वादिष्ट होता है।
4: मझले भैया मैंने आपको ट्रेन में खाने के लिए जो देशी घी का पकवान बांधा था, क्या ट्रेन में छूट गया?
2: ट्रेन में ना छूटा होगा, पेट में चला गया होगा।
4: उमेश तुम मछली भैया से ठट्टा करते हो।
3: अब करने तो रेखा, करने तो, हमारा तो संबंध ही ऐसा है, अब जीजा साले के बीच में हंसी ठट्टा नहीं होगा तो किसके बीच में होगा।
2: पिताजी।
1: हाँ बेटे।
2: पिताजी, पिताजी क्या विचार कर रहे हैं, बहुत गंभीर और खिन्न है।
1: हाँ बेटे, ये दाढ़ी वाला हाथी 3 घंटे बाद लौट कर फिर आ गया, टल ही नहीं रहा है।
2: हाँ पिताजी, मझले भैया तो जाते ही नहीं, जाते हैं तो फिर आ जाते हैं, जाने का 1,000, 2,000, 5,000 ले लें तो मैं मित्रों से उधार ला कर दे दूंगा।
1: उमेश अधिक विचलित न हो बेटे, मैंने तो सोच लिया है, राम ने चाहा तो दाढ़ी वाला हाथी ऐसा जाएगा फिर कभी नहीं आएगा।
2: राम करे मझले भैया जाए तो फिर कभी ना आए।
3: वाह वाह चाचा जी, आपने खाया, रेखा ने देशी घी की जलेबियां बनाई है, वाह वाह, देशी घी की जलेबी की बात ही कुछ और है।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, विजय बेटे, तुम्हारी छोटी बहन ना बड़ी गुणवत्ती है,
3: बहुत।
1: तुम्हारे मुंह में स्वाद है और उसके हाथ
3: में। हाँ, हाँ, चाचा जी है।
1: विजय बेटे
3: जी।
1: बेटे एक समस्या आ गई है,
3: सब सोचा,
1: कठिनाई हो रही है ना, अब तुमसे

0: क्या कहूँ, मान और सम्मान की बात है।
1: आपका कैसी कठिनाई चाचा जी, बताइए।
0: बेटे मुझे 50,000 की आवश्यकता है।
1: 50,000?
0: अरे भाई तुम्हारा 15 लाख तो ब्याज दर ब्याज बढ़कर बैंक में 20-21 लाख हो गया होगा। तुमने तो अभी तक 1 पैसा भी ना निकाला होगा। भाई उसी में से 50,000 दे दो।
1: चाचा जी 50,000?
0: हाँ विजय बेटे 50,000 वचन देता हूँ बेटे, जबान का पक्का हूँ। और फिर बेटे इस आयु में चिता पर लेते हुए झूठ बोलूंगा। अरे जब मेरे पास होगा

0: 50,000 वचन देता हूँ बेटे, जबान का पक्का हूँ। और फिर बेटे इस आयु में चिता पर लेते हुए झूठ बोलूँगा। अरे जब मेरे पास होगा तब दूंगा। और यदि जो बेटा मेरा निधन हो जाए ना, तो 50,000 के लिए क्षमा कर देना है, समझना। तुम्हारे पास 50,000 नहीं था।
1: 50,000 नहीं था, क्षमा कर देना।
0: अरे भैया कब दोगे? तुम आज ही चले जाओ ना। अरे 2 दिन में लेकर आ जाना। मान और सम्मान की बात है बेटा, मैं फिर वचन देता हूँ, जब मेरे पास होगा मैं लौटा दूंगा। और यदि मेरा निधन हो गया तो क्षमा कर देना।
1: क्षमा कर देना।
0: आज जा रहे हो ना बेटा, जा टिकट मंगाए दे रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी, अच्छा।

0: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जा की पार्वती पिता महादेवा। लड़वन के भोग करे सेवा, लड़वन के भोग लगे संत करे सेवा, लड़वन के भोग लगे संत करे सेवा।
1: पिताजी पिताजी,
0: अरे क्या है उमेश, पूजा अर्चना में क्यों बाधा डाल रहे हो भाई?
1: पिताजी पिताजी,
0: क्या हुआ?
1: अरे पिताजी, मैं कल रात से बहुत विचलित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत व्याकुल हूँ। पिताजी पिताजी, कल रात 9 बजे जब मैं मंदिर से आ रहा था, फिर वही ज्ञानी विद्वान ज्योतिषी पंडित मिला। मस्तक रेखा देखते ही बोला, बहुत बड़ा महासंकट आने वाला है। और पिताजी, प्रातःकाल मैंने फिर बहुत बुरा सपना देखा। वो दाढ़ी वाला हाथी घर में घुसकर किचन में बैठ गया है। मैंने और आपने मिलकर डंडे से मार मार कर बहुत भगाया, किंतु दाढ़ी वाला हाथी अपने स्थान से हिला भी नहीं।
0: अरे बेटा, चिंता ना करो, अब दाढ़ी वाला हाथी नहीं आएगा।
1: कहीं आ ना जाए पिताजी, बहुत भय लग रहा है। रात उल्लू भी बोल रहा था, कुत्ते बिल्ली भी रो रहे थे, भोर मुर्गा के स्थान पर काला कौआ भी बोल रहा था।
0: चिंता ना करो बेटे, अब दाढ़ी वाला हाथी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा।
1: पिताजी, कौन आया? कहीं कहीं दाढ़ी वाला हाथी ना हो।
0: नहीं नहीं और कोई होगा बेटा, दाढ़ी वाला हाथी अब कभी नहीं आएगा। जाकर देखो।
1: अच्छा, देखता हूँ।
2: अरे
0: क्या हुआ विजय, क्या हुआ बेटा?
3: क्या हुआ मजरे भैया, आपके रोने की आवाज सुनकर मैं भाग कर रही।
2: अरे यार, ट्रेन में डाका पड़ गया बहन, डाका पड़ गया। 40 डाकू थे, 40
0: डाका पड़ गया।
3: डाका पड़ गया भैया?
2: हाँ चाचा जी, डाका पड़ गया। मैं बैंक से 50,000 के स्थान पर अपना पूरा जमा धन 40,22,420.50 निकाल कर ला रहा था। मैंने सोचा चाचा जी आपके नाम से बैंक में रख दूंगा, जब आपको आवश्यकता हो उधार ले लिया करिएगा, और बाद में जब आपके पास रुपए आ जाए तो वापस कर दिया करिएगा। आए आए चाचा जी, सब धन चला गया, अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा। उमेश, जाकर रिक्शे का किराया दे दो भैया।
3: पिछले भैया, पिताजी के उधार मांगने के कारण आपके पास एक पैसा भी ना बचा। आप लखपति से भाट भिखारी हो गए। अब आप कहीं नहीं जाइएगा भैया, कहीं नहीं जाइएगा, यही रहिएगा मेरे पास।
2: कहाँ जाऊंगा बहन, आप तो एक पैसा भी नहीं है, सब डाकू लूट ले गए। अरे बच्चों के लिए आपके मैं 15 किलो देसी घी की मिठाई और 15 किलो नमकीन लेकर आ रहा था, मुन्नी के लिए 300 खिलौने ला रहा था, सब डाकू लूट ले गए। अरे वो दुष्ट स्वाद ले लेकर मिठाई नमकीन खा रहे होंगे, डाकुओं के बच्चे खिलौने खेल रहे होंगे। अरे रेखा, गाजर का हलवा बना रही हो क्या? देशी घी की सुगंध आ रही है। अरे देशी घी की तो बात ही कुछ और है।

अभी आप सुन रहे थे कलीम उर्फी का लिखा नाटक दाढ़ी वाला हाथी। भाग लेने वाले कलाकार थे रामचंद्र गुप्ता, शैलेश कुमार श्रीवास्तव, अभिलाष नारायण और रूपा सहाय। प्रस्तुति थी अभिनय श्रीवास्तव की। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अप्रसिद्ध है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की पुण्यतिथि है। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लीजिए सुनिए, आज इस शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उन्हीं का बजाया हुआ शहनाई पर राग रागेश्वरी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन राग था रागेश्वरी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास

0: और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्जवल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड्स लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की तेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांगशू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड India is being seen as bright spot.